मुरली बालकृष्ण की सबसे प्यारी सखी, जिसे मुरलीधर एक पल भी अपने से अलग नहीं कर पाते। गोपियां और स्वयं राधा भी मुरली से जलन महसूस करती। गोविंद के लिए बावरी हुई हर गोपी का स्वप्न था कि कान्हा उसे बांसुरी बना दे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 मई 2026 सुबह के 5:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। सुबह 6:05 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 से लेकर 9 बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 9 बजे पेश होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार, सुबह 10:05 पर सुनना ना भूलिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर।

0: सुबह 11 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का लुफ्त उठाते हुए सुनिएगा कार्यक्रम प्ले इट कूल। दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम के प्रसारण का समय होगा और दोपहर 2 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरी सी सुबह रविवार की, जी हाँ, दस्तक दे चुकी है। सुप्रभात आप सभी को। प्रोग्राम सुप्रभात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आपके साथ की।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

साथियों, आप सुन रहे प्रोग्राम सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हार न मानने की। एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी होती है जो सब में होती है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। क्या होती है वो क्वालिटी? दैट इज बाउंस बैक। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाए, आप थोड़े से हार गए हो, लेकिन उसको कहते हैं दोबारा उठ के खड़ा होना। और हम सभी में ये क्वालिटी होती है, बस आप इसे जानिए, पहचानिए, और चाहे आपको क्रॉल ही करना पड़े पर आप आगे बढ़ते रहिए। ओवरऑल कहना मैं चाहती हूँ, गिव अप कभी नहीं करना।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: साथियों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात। अब आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
0: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध का तीसरा अध्याय, जहां पर दसवें श्लोक में बहुत सार गर्भित बात कही

है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को कि जो मनीषी होते हैं, जो उदार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, तीव्र बुद्धि जिनकी है, वो चाहे सकाम व्यक्ति हो, चाहे मोक्षकामी हो, या फिर भगवान के भक्त ही क्यों ना हो, वो भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। परम पुरुष यानी जो पूर्ण तत्व है, पूर्ण पुरुष है, उनका ही भजन करते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो ये जो बात है कि वो भगवान का ही भजन करते हैं, कृष्ण चरण में ही उनकी रति रहती है, श्री कृष्ण के चरणों का भजन करते हैं और अपनी कामनाओं को भी पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनको क्यों कहा गया कि भाई वो तो सर्वोत्तम बुद्धि से युक्त हैं। कहा भी गया ना, उदार महती जार सर्वोत्तमा बुद्धि, नाना कामे भजे तबु पाए भक्ति सिद्धि, भक्ति प्रभाव से ही काम छड़ाइया, कृष्ण पदे भक्ति कराए गुणे आकर्षिया। तो विभिन्न कामनाएं हैं, भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगते हैं, उनकी कथा श्रवण करने लगते हैं, उनका नाम कीर्तन करने लगते हैं, तो बेशक किसी भी कामना को लेकर ही क्यों ना भजन प्रारंभ किया हो, तब भी उनकी ये जो भक्ति है वो सिद्धि को प्राप्त करती है, क्योंकि तब ये जो भक्ति है यानी कृष्ण भक्ति है, उनका प्रभाव ही ऐसा है कि वो अन्य कामनाओं को धीरे धीरे धीरे इतना तुच्छ अनुभव करा देती है हृदय में, कि व्यक्ति को हंसी आती है कि अरे मैं तो किस कामना को लेकर भगवान का भजन कर रहा था, नहीं नहीं बचा लिया भगवान ने, भगवान कितने प्यारे हैं, इनकी कथा सुनते सुनते मुझे तो इनसे ही प्रेम हो गया है, अगर पाऊं तो इनके चरण ही पाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। या कोई सोचता है अरे अरे मैं तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहता था, मोक्ष चाहता था, लेकिन देखो भगवान का भजन कितना सुंदर है, अगर मैं मोक्ष ना प्राप्त करके भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करूं, उनकी सेवा को प्राप्त करूं, क्योंकि इतने सुंदर ठाकुर हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में एक ज्योति ही तो है, वहां सुंदरता कहाँ है, वहां लीला कहाँ है, वहां भक्तवत्सलता कहाँ है, वहां भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हों ऐसा ही दृश्य कहाँ है, ये सब तो यहीं पर है भक्ति में, भगवान हमारे कल्याण के लिए इतनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, और ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके मैं अपना सुख चाहता हूँ, ना ना मुझे तो भगवान के सुख में ही सुखी होना अच्छा लगता है। तो अंदर से हृदय से मोक्ष की जो भयानक एक इच्छा है कि मुझे अपना सुख मिले और मैं भगवान की निर्विशेष ज्योति में लीन हो जाऊं, क्योंकि देखिए अगर भगवान की निर्विशेष ज्योति में कोई लीन हो ही गया बिना भक्ति करे तो वो असंभव है, परंतु मान लीजिए संभव हो भी जाए किसी प्रकार से, तब फिर वो कभी भी भगवान के भक्त का संग नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो तो मुक्त ही हो गया, अब तो उसका जो चांस है वो समाप्त हो गया, उसका जो अवसर है वो समाप्त हो गया, अब वो कहाँ वापस आएगा, अब तो उसे मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कर्मी है, जो विभिन्न कर्म करता है, बहुत कर्म करते हैं लोग और सोचते हैं कि इन कर्मों से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि कभी ना कभी उनके पुण्यों की वजह से, सुकृतियों की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से कोई भक्त उनके जीवन में अगर आ जाए तो फिर उनकी दृष्टि भगवान के चरणों पर पड़ जाती है और वो भगवान को चाहने लगते हैं, है ना, किसी जन्म में हो सकता है उनके साथ, लेकिन जो मोक्ष ही प्राप्त कर लेगा उनके साथ क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, तब वो भगवान की कथाओं से भी वंचित हो जाएंगे, कथाएं नहीं मिलेंगी, रस नहीं मिलेगा, साधन नहीं हो पाएगा और सिद्धि की तो बात ही दूर है, यानी वो भगवान के पार्षद बनने के अपने स्वर्णिम मौके को खो देंगे, भगवान का जो दास बनना वो किसी कम भाग्य से नहीं होता है, वो बहुत ऊंचे भाग्य से होता है ना, लक्ष्मी जी भी
भगवान की दासत्व

वो को चाहती हैं। श्री राधिका भी श्याम सुंदर की दासी बनी रहना चाहती हैं, उनका यही अभिमान रहता है। तो भगवान का दास होना या दास अनुदास होना ये बहुत सुखमय स्थिति है, लेकिन इस सुख को वही अनुभव कर सकता है जो भगवान के ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर पाए, है ना। तो भगवान तो शायद फिर भी मिल जाए, पर भगवान के ऐसे भक्तों का यानी सुरसिक भक्तों का संग बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत कृपा होनी चाहिए तब ये संग प्राप्त होता है। तो भगवान के सुंदर गुणावलियों का श्रवण करते करते, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति प्यार उत्पन्न हो जाता है, है ना। जैसे कि ध्रुव जी ने जब अपनी तपस्या आरंभ की थी तो एक कामना को लेकर की थी। उन्होंने कहा था, भाई मुझे तो अपने पिता से भी अच्छा राज्य चाहिए, ऐसा राज्य चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, प्रलय भी हो जाए तो भी समाप्त ना हो। और उस मनोकामना को लेकर के उन्होंने अपना भजन प्रारंभ किया था, लेकिन जब भगवान के दर्शन हो गए तब उन्होंने कहा, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। भगवान ने कहा, वर मांगो वर मांगो। तो वो मांग सकते थे कि मुझे ऐसा ही राज्य मिले, ये मिले वो मिले, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु ये जो तपस्या मैंने प्रारंभ की थी वो तो इसी उम्मीद से की थी कि मुझे ये सब मिलेगा, लेकिन जब आपको प्राप्त कर लिया, देवता आपको प्राप्त नहीं कर सकते, बड़े बड़े मुनीन्द्र आपको प्राप्त नहीं कर सकते, वेदों में भी आप बड़े ही गुह्य तत्व हैं, रहस्यमय तत्व हैं, प्रभु आप ही को जब मैंने प्राप्त कर लिया, आप जैसे दिव्य रत्न को जब मैंने प्राप्त कर लिया, तो मैं कांच लेकर क्या करूंगा, मुझे कांच की आवश्यकता नहीं है। कृतार्थ हो अस्मि वरम न याचे, प्रभु मैं कृतार्थ हो गया, मुझे किसी भी वर की आवश्यकता नहीं है। तो देवताओं की उपासना से भी अधिक श्रेष्ठ है भगवान के प्रति भक्ति योग, यही अभिधेय है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, है ना। भगवान से निरुपाधिक प्रेम हो जाए, वो परम पुरुष, वो पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जो देह और मन के अगम्य है, देह से उन्हें जाना नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, और मन में वो आते नहीं है, मैला मन है, कहां आएंगे ठाकुर जी। तो भगवान जो है मन के अगम्य है, लेकिन मन अगर पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, सरस हो जाए, भगवान के प्रेम में डूब जाए, तो वो फिर मन के गम्य हो जाते हैं, उन्हें जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, पाया जा सकता है, कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो कैसा भजन करना होगा, तीव्र यानी दृढ़, यानी ऐसा भजन जो स्वाभाविक हो जाए, समस्त विघ्नों से अवकाश रहित हो जाए, यानी कि वहां कोई बाधा अपना कार्य ना कर सके। कामना इच्छा चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मगर भजन जो है वो 100% हो, पूरी तरह से हो, बिना बाधा के हो। देखिए श्री महाभारत में कहा गया कि भक्त जब भगवान का स्मरण करते हुए जीवन बिताता है या समय जो बिताता है उसे विष्णु काल कहते हैं, यानी भगवान के स्मरण में है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का रूप ध्यान कर रहा है, तो विष्णु काल है। और अपने घर में विष्णु सेवा करता है, कृष्ण सेवा करता है, वही स्मृति है, वही आचार है, वही आचरण है, सदाचार है। भगवान की सेवा को लेकर रह रहा है, वही सदाचार है, और सदाचार की क्या आवश्यकता है। अगर कोई सदाचार निभाता रहे, खूब साफ सफाई से रहे, सब कुछ करे, लेकिन भगवान का ही भजन ना करे, तो फिर उसका सदाचार किस काम का। ऐसे तो मछलियां भी गंगा जी में रहती हैं, तो क्या उन्हें भगवत चरण मिल जाते हैं, नहीं ना। भजन करना होता है,
भगवान

0: प्रेम करना होता है और अपने भोग का अर्पण ही दान है, यानी भगवान की खुशी के लिए, भगवान के संतोष के लिए अपने भोग का त्याग कर दे, अर्पण कर दिया। और जो हमारी भोग्य वस्तु है, जो हम पहले पा लेते हैं, उसे पहले पाने की जगह पहले ठाकुर जी को अर्पित करके महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया, वही दान है। दान देने कहाँ जाना है ना। तो इनसे जो फल मिलेगा वो इंद्र के लिए भी दुष्प्राप्य है। इंद्र को भी ऐसे फलों की प्राप्ति नहीं हुई। इंद्र भी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे स्वर्ग का राजा बना दिया, अरे भारत देश में मुझे मनुष्य जन्म दे दीजिए ना, क्योंकि यहां तो आपका भजन हो नहीं सकता, ये तो भोग भूमि है स्वर्ग, यहां तो सिर्फ भोग का छड़ा छड़ी है, भोग ही है बस और कुछ नहीं। ऐसी जगह दीजिए भारत देश में जहां मैं आपका भजन कर सकूं, आपके संतों का संग मिल सके, किसी धाम में जगह दे दीजिए, कहीं भी जन्म दे दीजिए। मनुष्य जन्म चाहते हैं, मनुष्य जन्म, कहां देव जन्म, कहां मनुष्य जन्म। मनुष्य सोचता है मैं अगर देव हो सकता, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मनुष्य स्वर्गवासी कहलाना चाहता है, वहां जाना चाहता है, क्योंकि वहां बहुत भोग के साधन है, परंतु वहां से भी गिरना पड़ता है, भगवत प्राप्ति की संभावना वहां नहीं है। इंद्र जी भी भगवान को प्राप्त करके, उनके पार्षद होकर के, उनके धाम में जाकर के उनकी सेवा प्राप्त करें, ये संभव नहीं है, है ना। तो ऐसा फल, यानी भक्ति का जो फल भक्त को मिलता है, ऐसा इंद्र आदि देवताओं को भी मिलना संभव नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी देखे कितने प्यारे हैं, जब कर्दम ऋषि जी ने उनका भजन किया, उनकी उपासना की, तो प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापति कर्दम, मेरी पूजा कभी भी निष्फला नहीं होती, तब मैं ये समझता हूँ फल देते समय कि इसने मेरी शुद्ध भक्ति ही संपादित की है, इसने शुद्ध भक्ति की है, और तब मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। कितनी बड़ी बात है। कर्दम ऋषि जी भजन कर रहे थे, यूं भी वो भगवान से प्रेम करते थे, लेकिन उस समय जो वो भक्ति कर रहे थे, वो कर रहे थे कि एक अच्छी लड़की से उनका ब्याह हो और भगवान ही उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो भगवान प्रकट होकर के यही बोले कि तुम एक काम को लेकर के, कामना को लेकर के मेरा भजन कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने इस कामना को लेकर किसी देवी देवता का भजन नहीं किया, इसलिए जो मेरी पूजा है, मेरा भजन है, वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। तो मोक्ष कामी हो, एकांत भक्तगण हो, या सर्व काम से युक्त हो, एक ही अभिधेय, एक ही रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए, और वो है भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, बस। तो सर्व काम युक्त और निष्काम व्यक्ति और मोक्षकामी सब भगवान का भजन करते भी हैं। हम देखते हैं जब तीर्थों में जाते हैं तो हम देखते हैं कई साधु संत भी हैं जिन्होंने वैराग्य वेश ले रखा है, भजन कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बाल बच्चों के साथ भी हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, आ रहे हैं, बारंबार धाम में आते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। और उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष चाहते हैं, लेकिन ये सब के सब उदार ही हैं, यानी ये सब के सब द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही बुद्धिमान। लेकिन अगर कोई भगवान की शरण ना ले, देवी देवताओं की शरण ले, तो उनका क्या हाल होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग उदारधी ही होते हैं, सुबुद्धिमान होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी हर कामना के लिए, यहाँ तक कि मोक्ष कामना के लिए भी, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी तो बात ही क्या है, सबके सब भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नहीं, मैं तो विभिन्न देवी देवताओं का भजन करूंगा, तो उनका तो भजन होता ही नहीं है, उनकी उपासना होती है, तो चलो मैं वही करूंगा और फिर मुझे जो कुछ मिल जाएगा उससे, मुझे जो लाभ होगा उससे मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो इसके ऊपर एक कहानी आती है, किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। तो एक दिन उसे अचानक एक अठन्नी मिली 50 पैसे। अठन्नी मिलते ही उसे अहंकार हो गया। उसने सोचा, मेरे जैसा धनवान भला कौन है, अब अगर राजा का हाथी पानी पीने आएगा तो मैं उसे बांध कर रख लूंगा, किसी भी कीमत पर उसे अपने इस तालाब का पानी नहीं पीने दूंगा। तो ये सोचकर मेंढक अठन्नी पर बैठ गया। उसी समय राजा का महावत हाथी को लेकर आया और तालाब में उतर गया। बस ये देखकर मेंढक हाथी को बांधने के लिए उस अठन्नी को छोड़कर जल्दी जल्दी तालाब में कूद कर हाथी के पांव के निकट जाकर गिरा और हाथी के पांव के नीचे दबकर मर गया। ऐसे ही इस जगत में जो लोग अपने को कर्मवीर समझकर अहंकार करते हैं, सोचते हैं कि जो है हम ऐसा कर्म करेंगे कि दुनिया हमें याद रखेगी, हम इतनी संपत्ति जुटा लेंगे देवी देवताओं का पूजन करके, अपना कर्म करके, कि हम बलवान रहेंगे, सब हमसे डरेंगे। तो ये जो कर्मी के कर्म का वीरत्व है वो भी तो संसार चक्र में पिस ही जाता है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, यही तो प्रकृति है। अहंकार जो है वो प्रकृति देवी एक क्षण में कभी भी नष्ट कर सकती हैं। आज जो राजा है कल को फकीर हो सकता है, और आज जो फकीर है कल को राजा बन सकता है। इसीलिए तो महत जन कहते हैं, राजार जी राज्य पाठ जैनो नाटवार नाट, देखते देखते किछु नॉय, हैनो माया करे जे परम ईश्वर से ही, तारे मन सदा करो भय। कि जो राजा का राज्य पाठ है ये तो बस एक नाटकबाजी है, देखते ही देखते सब समाप्त हो जाता है। तो ये सब माया जिसकी है वो भगवान है, इसलिए उनसे डरो, डरो अर्थात उनकी इस माया से डरो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका नहीं होगा कुछ गलत। जो कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की ही शरण ले ले कि भगवान आप ही मेरे हैं बस, तो भगवान तो कहते हैं अरे ये विषय विष मांगता है, और मैं जानता हूं कि ये मूर्ख है, और मैं तो मगर समझता हूं ना इसकी मूर्खता को, तो इसे विष मैं इस प्रकार से दूंगा कि ये विष को याद नहीं रखेगा, मैं इसे स्वचरण अमृत पान करा दूंगा, अपनी दिव्य गुणावलियों का वर्णन इसके कान में डालूंगा संतों के माध्यम से, और ये फिर मेरा ही भक्त हो जाएगा, मेरे नामामृत का पान करेगा, मेरे रूपामृत का पान करेगा, मेरी कथामृत का पान करेगा, लीलामृत में डूब जाएगा, तब इसे याद ही नहीं रहेगा कि कौन से विषय को लेकर के ये मेरा भजन प्रारंभ कर रहा था, इस तरह से इसे मेरी ही प्राप्ति करा दूंगा। तो ऐसे तो कृपालु हैं ठाकुर जी, है ना, बहुत ही कृपालु हैं। तो इसलिए जो भगवान का भजन करते हैं श्री कृष्ण का, उनको यहां पर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति बताया गया है ना। और जो ये सोचें कि भगवान के अलावा हम किसी देवी देवता की उपासना करके अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेंगे, तो देवी देवता तो स्वयं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो बेचारे क्या दे पाएंगे, वो तो भगवान को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। आपने सुना कि इंद्र भी चाहता है कि मुझे इस पृथ्वी लोक पर जन्म मिल जाए, मैं भजन करके भगवान आपको प्राप्त कर लूं, क्योंकि ये इंद्र का पद कब तक रहेगा, कब तक ही भोग होगा, एक ना एक दिन तो फिर नीचे गिरना ही होगा, तो प्रभु आपका भजन हो जाए यही चाहता हूं। लेकिन देवी देवताओं को ये

अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन मनुष्य को ये अवसर भगवान प्रदान कर देते हैं। इसलिए मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ योनि है, बहुत ही दुर्लभ है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाती पर हमें प्राप्त है। और अब तो ये धन्य कलयुग है, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का युग है। श्री कृष्ण ही तो राधा भाव और अंग कांति को अंगीकार करके आए और उन्होंने अपना नाम अमृत जगत में बांटा, हरे कृष्ण महामंत्र, और साथ में उन्होंने प्रेमामृत बांटा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेने से हृदय के सारे कलमश मिट जाते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से हृदय के सारे रोग कलमश मलिनता समाप्त हो जाती है, भगवान में मन लगने लगता है और भगवान की उपलब्धि होती है, वही तो पूर्ण उपलब्धि है, इससे बड़ी उपलब्धि भला और क्या हो सकती है। तो जो बद्ध जीव हैं हम जैसे लोग, वो अपने संकीर्णता के आवेश में है, यानी वो तो जानते ही नहीं है भगवान को, वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि जो चीज इंद्रियों को सुख पहुंचा दे बस वही चाहिए। तो उनके विचारों की जो बुद्धि है वो अनुदार है, अनुदार प्रबला है, अर्थात वो यथेच्छाचारी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अपनी मर्जी से जीना है, हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, हम अगर किसी को दुख दें तो कहीं हम तो दुख तो दे ही नहीं रहे हैं, नहीं दुख नहीं दे रहे हैं लेकिन हम स्वयं दुखी हो रहे हैं ये हमें नहीं पता है। इसीलिए यहां पर हमारे सुखदेव गोस्वामी जी हमें समझा रहे हैं कि भाई ये जो भजन है बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो भगवान के चरण शरण में जाता है वो बुद्धिमान है। और 11वें श्लोक में फिर से एक सुंदर बात कह रहे हैं, एतावानेव यजतामिह निःश्रेय सोदय भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगता। कह रहे हैं जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। आहा, देखिए सुखदेव गोस्वामी जी जानते हैं कि जीवन की सफलता, जीवन का आनंद कहां पर है। हर व्यक्ति सामाजिक है, वो किसी ना किसी का संग तो चाहता ही है, लेकिन वो संग किसका करता है ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारे जीवन की दिशा को डिसाइड करती है कि हमारी जीवन की दिशा किस ओर जा रही है, भोग में जा रही है कि योग में जा रही है कि मोक्ष की तरफ जा रही है या फिर भगवान का भजन हमें मिल रहा है। तो इसीलिए कहा कि जितने भी उपासक हैं, आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं या किसी की भी पूजा कर रहे हैं, ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, अपनी ही पूजा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं लेकिन आपका सबसे बड़ा हित इसी में है कि आप भगवान के प्रेमी भक्तों का संग कीजिए और भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हम जिसका संग करते हैं हमें उससे वही रंग प्राप्त होता है ना। किसी दुनियावी व्यक्ति का संग करेंगे तो दुनिया के प्रति आसक्ति जागृत हो जाएगी, किसी कामी का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी काम भाव आ जाएगा, किसी योगी का संग करेंगे हमें भी योग मार्ग अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये सब मार्ग जो कुछ भी क्यों ना है, जो कुछ भी प्राप्त क्यों ना होगा, चाहे अष्ट सिद्धियां ही क्यों ना प्राप्त हो जाएं जिनके लिए योगी इतने प्रयासशील रहते हैं, चाहे नवनिधि ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन तो भी वो सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, आपको बताया। तो करना क्या है फिर, संग किसका करना है, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें जिसके कारण भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त होगा ही। तो संग से ही ये भगवत रंग चढ़ेगा, है ना, संग का प्रभाव रहता है। बड़े बड़े भक्तों ने भक्तों का ही संग किया, मीरा जी ने भक्तों का ही संग किया, रसिक भक्तों का संग किया, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, पृथ्वी जी ने, सबने भक्तों का संग मांगा, यहाँ तक कि

तो इसीलिए यहां पर ये कल्याणप्रद बात कह दी है सुखदेव गोस्वामी जी ने। सबसे बड़ा हित मनुष्य का इसी में है, जिसकी भी पूजा क्यों ना करो, आप श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त कर ले। कैसे हैं ये भक्त? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। ये जो है सिर्फ भगवान में अपने चित्त को लगाए रहते हैं, भगवान की बातें करते हैं और भगवान की लीला कथा का आस्वादन करके, लीलाओं का आस्वादन करके सदा सर्वदा आनंदित रहते हैं, आनंद में विभोर रहते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो इंद्र आदि देवताओं की उपासना करता है वो भी भक्तों का ही संग करे, क्योंकि उसी संग से हमें अचल प्रेम, अचल भाव भक्ति भगवान के प्रति प्राप्त हो सकती है। अचल ये नहीं कि कहीं कोई मुसीबत आए, दुख मिल गए तो हम हिल जाएं। हिल सकते हैं हम, अगर हमने देखा देखी भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया पर भक्तों का संग नहीं किया, हरि नाम कर रहे हैं, हमने एकादशी के महात्म्य के बारे में भी सुन लिया मगर हमने ऐसे भक्तों का संग नहीं किया जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तो आज हम एकादशी कर रहे हैं, कल को हिल भी सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जो भगवान को ही अपना सर्वे सर्वा मान करके जीते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी, जिस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फौलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर

आंगन के बाद लिया गया। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरामानिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटन्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: एब्सोल्युटली और आपकी वाणी आकाशवाणी के साथ हम जुड़ चुके हैं आकाशवाणी 102.6 पर और संडे मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है। 7:05 हो चुके हैं, खिलखिलाती धूप खिल रही है और मौसम में बहुत बदलाव हो रहा है। मतलब जब बादल भी आते हैं ठंडी हवा भी चलती है कभी कभी, लेकिन फिर गर्मी आ जाती है, तो इसलिए बहुत ख्याल रखना है आपको अपना। और खुश रहना है, सबसे बड़ी बात है कि आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि खुश रहने की मतलब आपको रास्ते बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपको खुश रहना है और ऐसे मौके आपको ढूंढने हैं। और बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे फ्यूचर के बारे में अगर ज़्यादा सोचेंगे ना, चिंतन करेंगे, तो बहुत चिंता हो जाएगी आपको, इसलिए उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। बस इसी पल में रहना है और इसी पल को एंजॉय करना है, और हमारे साथ रहेंगे ना तो हमेशा खुश रहेंगे। फिलहाल सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक सूदिंग ट्रैक के साथ शुरू कर रहे हैं आज के शो की, और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे इंतजार कर रही है, और गाने भी एक से बढ़कर एक होंगे। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।

क्या बात है, क्यों ऐसा क्यों उदास हैं? और फिलहाल बस जुड़ गए हमारे साथ तो बस बहुत बहुत एक्साइटिंग हो जाइए, क्योंकि हम आपको आज के टेम्परेचर की बात बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मौसम होने वाला है आज, और बादलों की बिल्कुल आपको दर्शन होने वाले हैं आज। फिलहाल बस कनेक्ट रहिए हमारे साथ। और टेम्परेचर बता दें आप, आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस। और फिलहाल बिल्कुल सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं 5:38 पर, और आज सूर्यास्तों का 6:57 पर। और बस वेदर में बस थोड़ा सा आज आंख में चोली चलती रहेगी बादलों की, और गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी आपको आज, तो इसलिए बस अपना खास ख्याल रखना है। और क्योंकि गर्मी का एहसास आपको साथ साथ हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज में आपको क्या होता है ना कि अक्सर हम खुद को मतलब परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर एसी में रहते हैं और एसी से बाहर निकलते हम बिल्कुल गर्मी में निकल जाते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशंस। और तो इसलिए हमेशा पानी की बॉटल अपने साथ रखिए, और पानी इनटेक अपना रेगुलर रखिए अपने आज इस दौर में, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे। और एक्सरसाइज लगातार करते चले जाइए, क्योंकि वो भी हमारे बिल्कुल जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। फिलहाल और क्या कुछ होना चाहिए आपके साथ, और हमारा साथ होना चाहिए, है ना? हम तो हैं ही आपके साथ। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ, और बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आशुतोष के साथ।

ओहो, बिल्कुल। और हम भी कनेक्ट हैं आपके साथ। और बिल्कुल, आज है 3 मई और आज के दिन क्या कुछ हुआ था वो बिल्कुल आपको बताते चलें, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ इतिहास बनते चले जाते हैं और वो अगर आपको पता लग जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। 1765 की बात करें तो अमेरिका का पहला मेडिकल कॉलेज

फिलाडेल्फिया में खोला गया था आज ही के दिन। और 1837 की बात करें तो यूनान में एथेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आज ही के दिन। और 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित की गई थी। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में बता दें कि वो एक मूक फिल्म थी और इसके निर्माता निर्देशक थे दादा साहब फाल्के जी। और ये भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म थी जिससे भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई थी। तो बहुत अहम दिन है आज के दिन। और 1998 में यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपीय नेताओं का ऐतिहासिक फैसला हुआ था। आज ही के दिन ये डिसाइड किया गया था कि अब यूरो को भी एक्सेप्ट किया जाएगा यूरोप के अंदर। और उसके बाद बिल्कुल आज ही के दिन 2003 में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ टेस्ट क्रिकेट के में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए थे। और बिल्कुल और उसके अलावा साथ ही साथ अभी फिलहाल जो मोस्ट रन है टेस्ट क्रिकेट में वो बिल्कुल हमारे सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ हुआ था आज के दिन, एक और इम्पॉर्टेंट घटना घटी थी आज के दिन। 2008 में टाटा स्टील्स लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ था आज के दिन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन आज का दिन। और फिलहाल बस संडे है तो संडे को कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग वीकेंड था और अब वो आज समाप्ति की ओर, लेकिन वीकेंड हर हफ्ते आता है तो इसलिए तैयारी हर हफ्ते हो सकती है। अगर आप इस बार मिस कर गए हैं कोई बात नहीं, फिलहाल आप बस प्लान कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हमारे साथ इन गानों को एंजॉय कर सकते हैं। और फिलहाल कनेक्ट रहिए और मॉर्निंग को आप बहुत ही हैपनिंग बनाने वाले हैं आपके हम।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

और आइए बात करते हैं उनकी, जिन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार माना और भारत के तीसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन की है जहाँ बात कर रहे हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है और 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद की धरती पर उनका जन्म हुआ था और बिल्कुल उनके जीवन का को असली पहचान मिली उनकी जो सादगी थी, अनुशासन था और शिक्षा के प्रति उनका समर्पण था। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने समझ लिया था कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव शिक्षा से ही रखी जा सकती है और महज 23 साल की उम्र में ही उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के साथ वो जुड़ गए थे और एक ऐसा संस्थान जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और राष्ट्रवादी सोच का प्रतीक बिल्कुल बन गया था। और ज्ञान की तलाश में उन्होंने भारत से जर्मनी तक की यात्रा की और जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की, लेकिन विदेश में शिक्षा पाने के बाद भी उनका दिल भारत के युवाओं और उनके भविष्य के लिए धड़कता रहा लगातार। और वापस लौटकर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला बना दिया था। और साथ ही साथ उनका सफर यही नहीं रुका, वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बने। शिक्षा सुधारों में अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई और देश की कई महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। साथ ही साथ 1957 में वो बिहार के राज्यपाल रहे और 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति और 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना सफर शुरू किया, जो बताता है कि समर्पण और ईमानदारी से कोई भी कहीं नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। और वे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे जिनकी बात करें कि उन्होंने बिल्कुल दिल से सभी ने उनको ये स्वीकार किया और उनका व्यक्तित्व अनुशासन की मिसाल था। एक दिन जब जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र नियमों की अनदेखी कर रहे थे तो उनके जूते गंदे थे और कपड़े बिल्कुल अस्वस्थ थे, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया कि सभी साफ सुथरे होकर विश्वविद्यालय में आएंगे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ उसके बाद आपने बिल्कुल सोचा होगा, उन्होंने ना कोई सजा दी ना कोई गुस्सा किया, बस विश्वविद्यालय के गेट पर बैठ गए और हाथ में ब्रश और पॉलिश लेकर और जो भी छात्र आते उसके जूते वो खुद साफ करने लगे। और ये दृश्य देखकर छात्रों के दिल में बिल्कुल उनके प्रति एक सम्मान पैदा हुआ और अगले ही दिन से पूरा परिसर अनुशासन का उदाहरण बन गया था और उनकी सेवाओं को देश में भी सम्मान दिया गया और 1954 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया और 1963 में भारत रत्न उनको से सम्मानित किया गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था देश के हर नागरिक का विश्वास। और उनके राष्ट्रपति पद के उद्घाटन भाषण में जब उन्होंने कहा कि पूरा भारत मेरा घर है और उनके इसके सभी लोग मेरा परिवार है, बिल्कुल। और आज ही के दिन 3 मई 1969 को देश ने अपने इस महान शिक्षाविद और राष्ट्रनायक को खो दिया।

पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन अपने कार्यकाल के दौरान हुआ, और उनका जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र का भविष्य सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कार और अनुशासन से बनता है। और उनकी कहानी हर शिक्षक और हर विद्यार्थी और हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम भी उनको आज नमन करते हैं और बिल्कुल उनको याद कर रहे हैं। फिलहाल आप भी कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग टेली एनसीआर। वक्त हो चुका है 7:31 और 7 सेकेंड्स।

एग्जैक्टली, और आंखों की जुबान तो बिल्कुल अलग होती है, और हम भी बिल्कुल बिना देखे आपसे बात करते हैं। आप हमें नहीं देख पाते, हम आपको नहीं देख पाते, लेकिन आपको महसूस जरूर कर पाते हैं। और आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। हर साल 3 मई को मनाया जाने वाला ये दिन सिर्फ पत्रकारों का नहीं बल्कि हर उस नागरिक का है जो सच जानना चाहता है और सच बोलना चाहता है, क्योंकि प्रेस सिर्फ खबर नहीं है, वो समाज का आईना होती है। और ये दिन, इस दिन की शुरुआत हुई थी 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से हुई, और 1993 में इसे वैश्विक मान्यता मिली थी। और इस दिन का देश की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, पत्रकारों पर होने वाले हमलों के खिलाफ आवाज, और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि जिन्होंने सच के लिए अपनी जान तक दे दी थी। और सोचिए, अगर अखबार चुप हो जाए, बिल्कुल ना बोलें, अगर आप न्यूज चैनल पर सच देखना बंद कर दें, तो क्या हम जान पाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है? शायद नहीं। इसलिए प्रेस की आजादी किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, और भारत में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19 में स्थान दिया गया है, और 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ, जिससे आम नागरिक को ये ताकत थी कि वो सरकार से सवाल पूछ सके और जवाब मांग सके। और आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में खबरें सेकंडों में दुनिया भर में पहुंच जाती हैं, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है कि आप फेक न्यूज़ कहीं देख तो नहीं रहे, उससे बच के रहिए, और बिल्कुल पक्षपात जैसी न्यूज़ तो नहीं देख रहे हैं, और सच्चाई को दबाने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज ज़रूरत है एक जिम्मेदार मीडिया की और एक जागरूक नागरिक की। और प्रेस की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, निष्पक्ष रहने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और हम उन सभी पत्रकारों को सलाम करते हैं कि जो हर दिन बिल्कुल खतरे उठाकर हम सब तक सच्चाई पहुंचाते हैं। और याद रखिए, अगर प्रेस आजाद है तो हम आजाद हैं, और अगर आवाज जिंदा है तो लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा। और बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपने आप को जिंदा रखें, और हम साथ जब संगीत जुड़ता है ना, तो हम बिल्कुल जिंदा दिल हो जाते हैं, और उसके साथ एक सूदिंग, हमारे साथ एक सूदिंग फीलिंग आ जाती है। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग टेलियन सियार।

आइए चलते हैं उस दौर में जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की गहराइयों तक हमारे दिलों में उतर जाया करता था, और उस दौर की चमकती रोशनी आज भी जिंदा है बिल्कुल हमारी आंखों में सिनेमा के माध्यम से। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं नरगिस जी की, बिल्कुल आज उनकी पुण्यतिथि है और 1 जून 1929 को कलकत्ता पर में उनका जन्म हुआ था। और बिल्कुल और यही कारण था कि बस उनके जो पिता थे बिल्कुल वो भी बिल्कुल जुड़े हुए थे कला के क्षेत्र से, और माँ बिल्कुल प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी और यही कला उनके विरासत में मिली थी उनको। और महज 6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने फिल्म तलाश हक में अपने अभिनय की शुरुआत की थी और 1940 और 50 का दशक हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग, और इस दौर में नरगिस का जादू हर दिल पर छाया हुआ था। आवारा, श्री 420, बरसात, अंदाज, हर फिल्म में उनकी अदाकारी जैसे दिलों की आवाज बन जाती थी। और खास तौर पर राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है। लेकिन अगर नरगिस को अमर बनाया तो वो थी फिल्म मदर इंडिया, और इस फिल्म में राधा का किरदार सिर्फ एक भूमिका नहीं बल्कि भारतीय नागरिक की शक्ति, त्याग और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। और ये फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित हुई और नरगिस दुनिया भर में सराही गई। उनका अभिनय इतना सशक्त था कि हर किरदार दर्शकों के दिलों में बस गया था, और फिल्म रात और दिन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जो उनके अभिनय की ऊंचाइयों को दर्शाता है। और सिनेमा के पर्दे पर से परे भी उनका जीवन उतना ही प्रेरणादायक रहा, और उन्होंने अभिनेता सुनील दत्त से विवाह किया और एक सशक्त परिवार की नींव रखी, और उनके बेटे संजय दत्त बिल्कुल आज तक बिल्कुल एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर रहे हैं। और फिल्म में दूरी बनाने के बाद भी वो समाज सेवा से जुड़े रही, और उनका मिशन यही रहा कि समाज के प्रति उनका दायित्व है उसको उनको निभाना है। और बिल्कुल उन्होंने अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप के माध्यम से सीमाओं पर जाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया, और साथ ही वे सामाजिक संस्थानों से जुड़कर जरूरतमंदों की मदद करती रही। लेकिन जीवन की पटकथा में एक मोड़ ऐसा भी आया जब नरगिस गंभीर बीमारी से जूझने लगी, और 3 मई 1981 को आज ही के दिन ये चमकता सितारा हमेशा के लिए ओझल हो गया हमारी आंखों से। लेकिन उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई ताकि उनका सपना दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनकर जीवित रहे। नरगिस सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक ऐसी कला जो आज भी हर दिल में जिंदा है, और उनकी मुस्कान, उनका अभिनय, उनका योगदान हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। तो आज जोनी के सम्मान में उन्हीं की फिल्म श्री 420 से ये गीत हम निकाल रहे हैं खास आपके लिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे, यानी कि हंसी का जश्न। और बिल्कुल हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाने वाला ये दिन हमें एक बेहद आसान लेकिन अनमोल याद दिलाता है कि बिल्कुल हंसना एक कला है और एक ज़रूरत भी है आज के समय में, क्योंकि इतना प्रेशर हो गया ना आजकल लाइफ में, हर कोई इतना कुछ सोचने लगा है और बेवजह सोचता है। बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं होती, उसके पीछे आगे पीछे कोई भी उसके मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं। क्यों सोचते हैं? बट इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, इसलिए अगर रीज़न के बिना आप सोच सकते हैं तो रीज़न के बिना हंस भी सकते हैं। बिल्कुल इसलिए यह दिन आज मनाया जाता है। और इस खास दिन की शुरुआत हुई थी मदन कटारिया जी ने, जो कि एक फिजिशियन है और बिल्कुल मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और लाफ्टर योगा के जनक माने जाते हैं। और बिल्कुल जरा सोचिए कि जब आप खुलकर हंसते हैं तो तनाव कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और शरीर में ऊर्जा भर जाती है। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हंसी एक प्राकृतिक दवा है और बिना दवा लिए ही आप बिल्कुल हंसी खुशी सेहतमंद हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आज की जो भीड़ भाड़ वाली जिंदगी है ना, इसमें हर कोई बिल्कुल कोई ना कोई उलझन में उलझा रहता है, क्या क्या सोचता रहता है, बट हंसी एक छोटी सी रोशनी बनकर आती है हमारे जीवन में और हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ गंभीर होने का नाम नहीं है, बिल्कुल ये जीने का नाम है। तो इसलिए आप खुलकर जीजिए और हमेशा बिल्कुल एंजॉय कीजिए। और आजकल बस दुनिया भर में लाफ्टर क्लब बन रहे हैं, तो उसके जरिए जहां लोग सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं और बिना वजह हंसते हैं लोग कहते हैं भैया पागल हो गया क्या, बट कोई बात नहीं, इसमें भी बहुत एक अलग ही जलवा होता है। और आप खुश रहिए और बिल्कुल ऐसी खुशी खुशी में जब आप अपने आप को सेहतमंद बनाते हैं ना, तो बिल्कुल हर कोई आपको फॉलो करेगा, पूछेगा कि भाई इतने खुश कैसे रहते हो आप। और पहली बार ये जो सेलिब्रेट किया गया था 10 जनवरी 1998 में सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद बिल्कुल होड़ लग गई सभी में कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है और ऐसी होड़ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल और दोस्तों के साथ समय निकालिए, परिवार के साथ मुस्कुराइए और खुद से कहिए कि मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, है ना। और एक मुस्कान कई परिवार परेशानियों की छोटा कर देती है बिल्कुल, तो उस परेशानी को बिल्कुल एक छोटा सपना दीजिए हैं बिल्कुल, और अपने आप को इतना बड़ा बना दीजिए हंसी खुशी के माध्यम से कि हर कोई बस इंस्पायर हो जाए आपसे। फिलहाल कनेक्ट रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग टेलियंस यार आशुतोष के साथ।

सो जी अब मेरे चलने का वक्त हो चुका है, फिलहाल बस आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, क्योंकि अब गीत गुंजन के साथ ये सफर आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो हमारे साथ श्रोता हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और राजकुमार इस वक्त अकोला महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं, गुड मॉर्निंग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मोनिका पौड़ी गढ़वाल से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सुप्रभात भेज रही हैं, और बिल्कुल हमारे साथ राजेश भल्ला जी भी हैं मेरठ से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और डॉली भी इस वक्त हमारे साथ शो को एंजॉय कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

जी हाँ, शायद संडे मॉर्निंग आप लोगों की भी थोड़ी सी लेजी हो ही जाती होगी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और हम आपको लेजी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पिटारे में बहुत कुछ है आपके लिए। और वैसे आजकल चल क्या रहा है? आजकल सभी लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, एक ही बात कर रहे हैं इस तपतपाती गर्मी की। और हम सभी, मुझे ऐसा लगता है, हाथापाई कर रहे हैं इस दनदनाती धूप और झंझनाती लू से।

और जब इन सब पर पानी की बूंदें पड़ जाए, इस धरती पर, तपती धरती पर पड़ जाए, तो आहा, उस चीज़ को आप इमेजिन करिए कितना मज़ा आता है। तो चलिए हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं, शुरुआत करते हैं इस इमेजिनेशन से। रहना है आपको हमारे साथ।

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ गीत गुंजन और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत कुछ है हमारे पिटारे में जो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो चलिए करिए शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वेदर के बारे में और वेदर अलर्ट क्या कहता है। अगर तापमान की बात करें तो मैक्सिमम 36 और मिनिमम 28 और फोरकास्ट ये कह रही है

कि थोड़ी बहुत बारिश के पूरे चांसेस और धूल भरी आंधी यानी डस्ट वाले स्टॉर्म चलेंगे। और इन्होंने ये कहा है कि अवॉइड गोइंग आउट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, ये बिल्कुल, और डोंट स्टैंड अंडर ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स और वीक स्ट्रक्चर्स, या मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि टूटा फूटा पेड़ है जो गिर सकता है, और इलेक्ट्रिक पोल्स, जी हाँ, बिजली के खंभों से बिल्कुल दूर रहिए। बहुत सही बात कही, और खुद की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए।

प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए झट से मैं आपको बता दूं कौन कौन से इवेंट्स जो आज आप देख सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है गुरुग्राम प्रॉपर्टी एक्सपो, सेक्टर 67 पर है ये गुरुग्राम में, और ख़ास बात यह है कि इसकी एंट्री फ्री है। दूसरा दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026, और ये 4 से 8 मई तक चलेगा, और इसके लिए आपको चाहिए होंगे पासेस। और पासेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से।

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

चलिए साथियों, अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का। तो ये जो कोर्स है ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान का नाम है ये, और ये है नई दिल्ली में विष्णु दिगंबर मार्ग में है। और जो कोर्सेज हैं वो हैं बीपीटी, बीओटी और बीपीओ। इसके अलावा है राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता, इसका एड्रेस है बीटी रोड बोन हुगली कोलकाता। और जो इसके कोर्सेज हैं वो हैं बीपीटी, बीओटी,

ईपीओ और बीएएसएलपी, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका ईमेल आईडी है वो है nild@nic.in। और इसके अलावा कंपोजिट रीजनल सेंटर है सिकंदराबाद, जिसमें मनोविकास नगर, बुवेलपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना। तो इस तरह के और भी जो संस्थान हैं उसमें आप अगर कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी कॉमन वेबसाइट है, जो इसका मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, जिस पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं, वो है pdunipd.nic.in।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन। और ये कैसे हो सकता है कि हम आपको दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज के ट्रैफिक के बारे में ना बताएं। और ये भी आप जानते हैं कि बहुत हद तक जो ट्रैफिक है वो वेदर से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो जो आज की हमारी ट्रैफिक अपडेट है वो थोड़ी सी वेदर रिलेटेड है। स्लोअर ट्रैफिक इन एक्सपेक्टेड वाटर लॉगिंग जहाँ पे रहेगी या जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे ट्रैफिक स्लो रहेगा। दूसरा, आप अवॉइड करें आउटर रिंग रोड NH 48 एंड एरियाज नियर IGI एयरपोर्ट ड्यूरिंग पीक स्टॉर्म आवर्स। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखकर आप बहुत सारी परेशानी को अवॉइड कर सकते हैं।

चलिए हम आपको झट से बता देते हैं बिना देर के अपने इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में कि क्या रहेगी लेटेस्ट न्यूज। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 11 वैकेंसीज हैं, एम्स दिल्ली असिस्टेंट प्रोफेसर और इसकी जो वैकेंसीज है उनके नंबर है 26। इसके अलावा एयर क्वालिटी ग्रैप स्टेज 4 वॉज इम्पोज अर्लियर जब AQI 450 प्लस हो गया था, तो बहुत ज़्यादा AQI अब नॉर्मली दिल्ली का ज़्यादा रहने लगा है, तो इसके लिए अच्छा यही है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा, मॉनसून हिट्स कब? जी हाँ, सबको इंतज़ार है कि कब जो है मॉनसून आएगा, तो इसके 1990% चांसेस है कि 14 से 16 मई तक आ सकता है। और दूसरा, मे बिकम्स हॉटेस्ट, ये भी एक आसार लगाए जा रहे हैं, तो बस हमें प्रिकॉशन रखना और कुछ नहीं।

जी हाँ, हानिकारक मुझे समय भी लग रहा है। देखना, तेजी से भाग रहा है और थोड़ी देर में 9 बज जाएंगे। तो फिर 9 बज जाएंगे तो क्या, पर आपको जाना तो नहीं है यहाँ से। जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़। तो चलिए झट से आपको जल्दी और जो प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं उसके बारे में बता दूँ। अगला प्रोग्राम 9 से 10 आप सुनिएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। फिर 10 से 11 समय रहेगा मैशलेस म्यूजिकार का। 11 से 12 सुना मत भूलिएगा पोस्ट बॉक्स 111 और 12 से 1 प्लेट कूल। तो अब गीत गुंजर को दीजिए इजाजत।

0: तक। रेनबो 102.6 पर।
1: एब्सोल्युटली जी, 9:45 हो चुके हैं और ये वक्त होता है आप ये अपने पसंदीदा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने का, इसमें लेटेस्ट ट्रैक्स की भरमार होती है आपके लिए और उसके बाद हर 15 मिनट में आपको मिलता है रेट्रो का एक अमेजिंग फ्लेवर। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ और बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि लेटेस्ट ट्रैक के साथ शुरू कर रहे हैं धुरंधर द रेवेंज से। ये वाला गीत खास आपके लिए, स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6। मैं हूँ आशुतोष आपके साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: Τα φάω να τρία φίρτε μου τσάκι.
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने FM Rainbow 102.6 पर.

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: एब्सोल्युटली, बस अब मेरे चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन चलने से पहले बता दूं कि कौन से प्रोग्राम्स आप सुन पाएंगे कुछ ही पलों बाद। 10:05 से आप सुन पाएंगे मैचलेस म्यूजिक आवर रेणुका के साथ, और उसके बाद 11 बजे आप सुन पाएंगे पोस्ट बॉक्स 111। और आज का जो विषय है जनगणना 2027, और आज हमारे जो गेस्ट होंगे डॉक्टर श्री अजय गर्ग होंगे, IAS और डायरेक्टर हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली, और डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा और ये हैं डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली के, और

अमेजिंग प्रोग्राम्स और इंतजार कर रहे हैं आपका। अल्फा जैन में आज क्यूज होगी गीतिका के साथ और शाहिद भी जुड़ेंगे सिटी लाइट्स में आपके साथ, कनेक्ट रहिएगा उनके साथ। और फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे जो लिसनर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, राजकुमार अकोला से कनेक्टेड हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही अजय झारखंड से कनेक्टेड हैं, सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हितेंद्र दास, मनस दास, वर्षा दास और शेफाली दास और मधब दास इस वक्त हमारे साथ असम से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिष्टी और डॉली भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अमेजिंगली हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और राजेश भल्ला भी इस वक्त मेरठ से कनेक्टेड हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बस आप ऐसे इंजॉय करते रहिए और कनेक्ट रहिए हमारे साथ। हैप्पी संडे, आप सभी का दिन शुभ हो और आने वाले दिन भी बहुत अच्छे से गुजरें आपके, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, आशुतोष लेते हैं आपसे अनुमति, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फौलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया है कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारी पूरी हो गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा

0: नतीजों का सटीक विश्लेषण
1: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
0: जनादेश 2026। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के आग लगने की घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दमकल विभाग ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 14 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। इस बीच शाहदरा पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि घटनास्थल से अब तक 4 शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी की स्थिति का आकलन करने का एक अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा नव मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की थी। ये अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देने और विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी का मूल्यांकन करने का है। ये दिन प्रेस की आजादी और स्वायत्ता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सरकारों को प्रेस की आजादी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को राहत मिली। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीला मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख मन की बात में करते हैं, उन विषयों के विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में और उस विषय के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करते हैं उनकी बातों से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया है सेंसस का, जनगणना का, और हमें प्रेरित किया है कि हम इस विषय के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग भी दें। तो इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। मैं स्वागत कर रही हूं सबसे पहले श्री अजय गर्ग जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा का। आप डीडी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: तो आइए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जनगणना का उल्लेख किया है।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा

0: सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: तो सुना आपने किन शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया है कि इस विषय के बारे में हम जानें और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करें। तो अब मैं बहुत सारे सवाल लेकर अपने सभी श्रोताओं के मन में जो सवाल है वो लेकर, अपने साथियों के सवाल लेकर यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और हमारे जो दोनों विशेषज्ञ हैं आज हम इनसे जानेंगे इनके उत्तर। तो मैं शुरुआत करती हूँ अजय जी से। अजय गर्ग जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं जनगणना, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों है देश को?
2: हमारी जो नीतियां बननी है
1: जी,
2: तो हमारे पास पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, गांवों में कितने लोग रह रहे हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तभी आप उसके हिसाब से स्वास्थ्य की, समाज कल्याण की और विभिन्न योजनाओं को आप एक मूर्त रूप दे सकते हैं
1: जी।
2: आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जनगणना भारत में सबसे पहले 1871 में हुई
1: जी,
2: लेकिन वो एक साथ नहीं हुई थी, मतलब हर प्रांत में अलग अलग समय पे हुई थी, उसे नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। 1881 में पहली बार जनगणना सिंक्रोनस हुई, सभी एक साथ हुई। उसके बाद ये हर 10 साल में एक जनगणना होती रही
1: जी।
2: जनगणना ही हमारी सभी नीतियों का डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर जैसे परिसीमन हुआ
1: जी,
2: हमारी जो विधानसभा की सीट्स हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उन सबके जनगणना में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ हम जनगणना में सिर्फ लोगों की संख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने मेल हैं, कितने हमारे वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं, उसके साथ साथ हम जो हैबिटेशन है
1: जी,
2: जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, उसकी भी हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि दीवारें कैसी हैं, छत कैसी बनी हुई है, किस तरीके का ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और पानी की सुविधा किस तरीके की है, 30 तरीके की हम एट्रीब्यूट इकट्ठी करते हैं
1: जी,
2: जिसमें लोग रह रहे हैं। और इसके बाद जिसे हम पॉपुलेशन इनुमरेशन कहते हैं, जिसमें लोगों की हम संख्या की गणना कर रहे हैं, उसमें लोगों की जो हर व्यक्ति की करीब 25 से 30 हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि कितना पड़ा हुआ है, किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में है वो, उसका जो व्यवसाय का जगह है कितना दूर है उससे, कितना उसे चलना पड़ता है
1: जी,
2: कौन से धर्म का है वो, इस बार हम जाति का भी उनसे डिटेल लेंगे
1: जी,
2: तो इस तरीके से कौन सी भाषा बोलता है वो, तो हमारे पास बहुत रिच डेटाबेस है जिसके आधार पे हम लोग, तो ये मोटा मोटा सा जनगणना का
1: जी। मेरा इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल था, अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि जब जनगणना की बात है तो सिर्फ ये जान लेना काफी होना चाहिए कि इस घर में 5 व्यक्ति हैं और इस घर में 7 व्यक्ति हैं, यानी हम एक नंबर हैं और कुल संख्या आपको पता चल गई। इतने विस्तार में क्यों जानना है कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे घर में रह रहे हैं? लेकिन अभी आपकी बातों से ही ये जवाब मिला कि आगे जो नीतियां बनेंगी जिस तरह के बेनिफिट्स दिए जाने हैं लोगों को, उनके लिए भी ये डेटा जो है काम आएगा बाद में।
2: जी
1: तो एक सवाल मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, जनगणना होनी है ये सबको पता है, लोग तो तैयार भी हैं।

0: बारे में बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले पूरा विभाग जो है, पूरा मंत्रालय जो है, वो किस तरह की तैयारियों में लगा है? आजकल काम का कितना दबाव है वो बताएं।
1: देखिए, काम का दबाव तो बहुत है अभी जी। जब आप मंत्रालय का जो तैयारी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, ये लगभग अभी एक साल पहले ये शुरू हो गई थी
0: जी।
1: और ये जनगणना जो होती है ये एक सेंसस एक्ट के तहत होती है, ये 1948। तो पहले हमारे जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वो पहले अपना इंटेंशन पहले वो दर्ज करते हैं गेजेट में। तो ये आई थी आपके जून महीने में आई थी, 2025 जून महीने में आई थी
0: जी।
1: उसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित जो अंचल है वो भी अपने मतलब गेजेट में उसको फिर से रीनोटिफाई करते हैं कि हमारे भी स्टेट में, यूनियन टेरिटोरी में भी सेंसस करानी है
0: जी।
1: तो इस तरीके का एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको रीनोटिफाई किया था जुलाई में, जुलाई 2025 साल में। तो 2025 जुलाई महीने से लेकर आज तक हर दिन हम तैयारी में जुड़े हैं और अभी सेंसस भी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब बिना प्री प्लान करते हुए ये होती है सेंसस जैसे काम में, कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है और लगभग लगभग इसमें अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 50-55 हजार से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं अभी काम में
0: जी।
1: जी
0: तो अजय जी, अगले सवाल से पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर पूछना चाहूंगी और उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है।
2: जी जी जी, तो मुसाफिर हूँ यारों
0: जी।
2: हाँ,
0: ये गाना पसंद है आपको? ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

बहुत ही प्यारा सा गाना। गाने में तो भले ही जो कलाकार है और जो हमारे सिंगर है उन्होंने कह दिया ना घर है ना ठिकाना, लेकिन हमें अपने घर ठिकाने का पूरा पूरा और सही सही पता जरूर बताना है सेंसेस के लिए। तो अब मैं अजय जी ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जनगणना की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी डिटेल इस समय हम जो है वो ले रहे हैं, लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे में और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी ओर से भी जो जनता है वो उसमें सहयोग करेगी, शुरुआत करेगी, तो संख्या बल जो है दुनिया में वो हमारी एक ताकत है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो यही काम बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है। तो ऐसे में ये बताएं कि आपने किस तरह का जो पूरा एक तंत्र है वो खड़ा किया है, किन लोगों

0: शामिल किया है इसमें और वो कितने रिलायबल हैं, हम कितना भरोसा करते हैं उन लोगों पर जो घरों में आएंगे और हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे।
1: जी, इसमें क्या होता है कि जो घर में जाते हैं, हर घर में विजिट करते हैं, उनको हम इनोमरेटर कहते हैं
0: जी।
1: उसमें हमने क्या किया है कि दिल्ली को करीब हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक में करीब 200 के आसपास घर हैं
0: जी।
1: तो एक ब्लॉक को एक इनोमरेटर का काम दे दिया जाता है और इस तरीके से 6 इनोमरेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। तो करीब हम लोगों ने 46,000 इनोमरेटर लगाए हैं, तो करीब 8-9,000 सुपरवाइजर लगाए हैं
0: जी।
1: फिर उनके ऊपर होते हैं चार्ज ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर के ऊपर होते हैं डीएम, एडीएम और एसडीएम अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जो इनोमरेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहां पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनोमरेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम हैं या डीएम हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबोरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि कर लें, कोई आता है आपको विजिट करने आता है तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है
0: जी।
1: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहाँ पर
0: जी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम है और जो लोग आएंगे उनके पास अपना
1: आई कार्ड
0: भी होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं। और ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रही हैं,
1: सरकारी कर्मचारी हैं
0: तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा सकता है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा,
1: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा
0: जी।
1: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनोमरेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है
0: जी। तो जितेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया, क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
2: देखिए, हमारे जनगणना में हम एक चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डी फैक्टो मेथड, मतलब जो जहाँ पे है नॉर्मली जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ पे उनको गिनेंगे
0: जी।
2: तो जैसे आप अभी दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक तो जो रेंट में रहने वाले लोग और जो एक स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज्यादा है दिल्ली जैसे जगह में। अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं और सेंसस के दौरान अगर उनको यहीं पे अगर पाया जाता है, जो भी एनिमल उनके घर में जाएंगे तो उनकी गिनती यहीं होनी चाहिए
0: जी।
2: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं
0: जी।
2: कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर होती है ये। तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है
0: जी।
2: तो जो भी एनुमरेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को पूछेंगे और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे
0: जी।
2: और ज्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे कि हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है
0: जी।
2: और इस बार हम काफी इस चीज के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए
0: जी।
2: और इसके पीछे का खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे
0: जी।
2: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक एमिनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज कर रहे हैं। तो अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले, बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए
0: जी।
2: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो तो उनको भी जरूर गिनती कराए जनगणना में।
0: और दिल्ली

0: हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारतवर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही प्रथा
1: जी जी जी। ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी ये पूरे भारत के लिए लागू है।
0: जी अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी, उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम न बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग न लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
2: हाँ, जरूरी है। सेंसस जो कानून है 1948 का, वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है कि वो सही जानकारी दे
0: जी,
2: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए
0: जी। और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है, ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
2: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहाँ पर नॉर्मली रहता है वहीं पे काउंट होगा
0: जी।
2: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा
0: जी, जो जहाँ रह रहा है उसकी
2: नॉर्मली जहाँ पे
0: पर होनी चाहिए।
2: हाँ, सामान्यतः जहाँ पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए
0: जी। जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं। ऐसे में अगर जनगणना में किराएदारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है? उन्हें डरना चाहिए क्या इस बात से?
2: नहीं, जो आपने जनगणना में इन्फॉर्मेशन दी है
0: जी,
2: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है
0: जी। यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते,
2: उसके आधार पर नहीं कर सकते,
0: उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं जी। मैं अब जितेंद्र जी आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को।
1: मेरा पसंद का एक गाना आप चला सकते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता
0: जी, तो आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की और हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हैं श्री अजय गर्ग। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं, और साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में, और हमारे दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं हमारी जानकारी बढ़ा रहे हैं जनगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो अजय जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है, आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, और दो चरण इसके आमतौर पर होंगे। तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
1: हाँ, इस बार जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहते हैं, स्वगणना, उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम एमसीडी एरिया का ले लें, तो एमसीडी एरिया में 1 मई से लेकर 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना व सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
0: जी,
1: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
0: जी।
1: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
0: जी,
1: जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी बोलते हैं। तो इन्यूमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी ऐसी आईडी दे देंगे, तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
0: जी,
1: तो वो उसके हिसाब से आगे। तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
0: जी।
1: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इन्यूमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक एमसीडी वाले एरिया में
0: जी,
1: हमारा फील्ड ऑपरेशन, मतलब इन्यूमरेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की, सेल्फ इन्यूमरेशन वालों की सिर्फ ऐसी आईडी ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
0: जी,
1: इस तरीके
0: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
1: जल्दी
0: कम लगेगा,
1: बहुत जल्दी हो जाएगी
0: जी। हाँ। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर अधिकारी आए हैं, उन्हें डिटेल देनी है, ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई विदेशी नागरिक किसी परिवार में रुके हुए हैं, या कोई ट्रैवलर हैं वो रुके हैं किसी वजह से, आजकल बीएनबी सिस्टम भी है, तो घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्या उनकी डिटेल भी देनी जरूरी है?
1: देखिए, व्यक्ति की जो डिटेल है वो तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वाला, उसमें ली जाती है। अभी तो बेसिकली घरों का सूचीकरण हो रहा है
0: जी,
1: एक तरीके से हम जो हाउसेज हैं उनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, बस ये जरूर पता कर रहे हैं कि भाई कितने वो, मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
0: जी,
1: कि भाई हमारे इसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं
0: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है, अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
1: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई भी, जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर, बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो,
0: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, और वो परिवार की जानकारी
1: दे रहा है
0: जी। तो इस तरह के कन्फ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
1: नहीं, और नहीं, वो व्यक्ति वो नहीं
0: जी।
1: बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
0: जी,
1: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर की एट्रीब्यूट्स हैं, वो
0: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है
1: जी,
0: तो जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं, झुग्गी बस्ती
1: जी,
0: जो है
1: जी,
0: जैसे एक परिवार वहां रह रहा है, वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है
1: जी,
0: तो ऐसे में वो क्या करें
2: जी? देखिए, जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बना है कि नहीं बना, ये हमें नहीं देखना है
0: जी।
2: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों

0: ब्लॉक्स बनाए हैं। तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे
1: जी,
0: जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है
1: जी,
0: ये हम कभी नहीं पूछते हैं। और हम सेंसस में हम सभी जगह, चाहे वो ऑथराइज हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो झुग्गी जो आप बता रहे थे, हम सभी जगह हम उसको जाके सेंसस कराएंगे
1: जी।
0: हाँ, और इसमें कोई लीगलिटी देखने का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। अगर हमारे जो शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे जिसमें हम 33 क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी
1: जी
0: पहला चरण में, तो यहाँ पे कहीं पे लीगल डॉक्यूमेंट्स का पूछने का कहीं पर भी प्रावधान ही नहीं है
1: जी। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी वजह से गलत सूचना दे दी गई है परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और वो बाद में सही करवानी है, तो क्या ये संभव है? इसका क्या प्रोसेस होगा?
2: क्योंकि इस बार डिजिटल है, ऐप के थ्रू डिटेल इकट्ठी की जाती है
1: जी,
2: तो अगर ऐप में मतलब जो एनुमरेटर है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी, वो
1: फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता,
2: उसमें सुधार नहीं होगा
1: जी। जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस, तो उसमें क्या किया जा सकता
2: है? देखिए, डुप्लीकेशन हो सकता है। जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं
1: जी,
2: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग कुछ लोग इस तरीके का
1: जी। और
2: वैसे तो इन्यूमरेटर उनको जाके समझाता है, भाई इन्यूमरेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
1: जी,
2: है
1: उस समय भी उनको पहले समझाया जाएगा, तब उनसे डिटेल ली जाएगी जी। और जो घर लंबे समय तक बंद मिले उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
2: नहीं, वो तो लॉक लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं
1: जी। ठीक है, तो जितेंद्र जी, अब
0: इसमें मैं थोड़ा सा सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एन्यूमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
1: जी,
0: 3 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
1: जी
0: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में है, तो वो एन्यूमरेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे
1: जी।
0: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे
1: जी,
0: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं उनसे
1: जी।
0: और लॉक्ड वाला सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है, तो ये 30 दिन के अंदर अगर एनुमरेटर फर्स्ट या सेकेंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है, तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकेंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाए
1: जी।
0: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक वो बहुत बिजी होते हैं, तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंट लिखे, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे, मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया विंडो पीरियड। और इसी 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि घर वैकेंट है, लॉक्ड है, तो उनको वही मार्क करनी है, लॉक्ड या वैकेंट
1: जी। यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि सही जानकारी दर्ज हो और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक समय है।
2: इसमें बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार
1: जी प्रयास किया जाएगा,
2: एक दो बार फिर से विजिट किया जाता है
1: जी। यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यावहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
2: तकनीकी तौर पर यह है कि इसमें हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके 4 डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल
1: जी,
2: जहां पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको एंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया।

0: जी
1: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
0: जी
1: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं। मतलब एक ब्लॉक इनोमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है
0: जी।
1: और ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ इनोमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इनोमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे इनोमरेटर जिसमें वो डिटेल लिखते थे, अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं। वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है
0: जी।
1: पहले 20-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है
0: जी। 10 से 15 मिनट। और व्यावहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो और जोड़े गए हैं, लेकिन वो भी इसलिए कि बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
1: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं जोड़े गए 2011 के, उससे
0: जी
1: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है
0: जी,
1: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए
0: जी। जैसे कई बार आम लोग जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पानी की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुंचती है और कई बेहतर सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें चिकित्सा सुविधा भी हुई, कई तरह के सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सब। तो और इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी
2: बहुत
0: है
2: जी,
0: जी। अब जितेंद्र जी ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसस के लिए, तो क्या इससे कोई आर्थिक लाभ भी होगा? कुछ लोगों के मन में ये बात है कि हमें बदले में सरकार से कुछ पैसा मिलेगा क्या, हम अपनी जानकारी दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो।
2: देखिये, सेंसस में कोई डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो सेंसस एकमात्र सोर्स है जो वर्ल्ड लेवल, जो आपके अर्बन एरिया का सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है
0: जी,
2: और रूरल एरिया में जो विलेज है, तो इतने लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डेटा प्रोवाइड करती है। और जैसे हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस दो फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, और सेकेंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में, उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं
0: जी।
2: सिमिलरली विलेज का भी, तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में, मे बी इतने नंबर ऑफ घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, कि लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ के वो सब घर अभी यहाँ के लिए बेनिफिशियरी बन जाएंगे
0: जी।
2: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसस का डेटा एंड अवर गवर्नमेंट के पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आर्थिक जैसे आप बता रहे थे, वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे
0: जी,
2: उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
0: जी।
1: तो जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में
0: जी
1: लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में एलपीजी है, क्या है, हमारे पास डेटा है। तो उसके हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है
0: जी,
1: तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है, तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है इन इन ब्लॉक्स में, वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं, तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है
0: जी,
1: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है। तो जैसे सीवर फैसिलिटी है उसकी भी डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है, तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया जी,
0: जी
1: तो बैंकिंग का हमें मालूम पड़ गया कि साहब इस शहर में, इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट

0: खुले हैं, तो उस हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
1: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है कि जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर पाए। जी, यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए।
0: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है
1: जी,
0: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले सेंसस में हुआ है। और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है
1: जी,
0: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वेकेशन के टाइम पे कर रहे हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है
1: जी,
0: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने
1: जी।
0: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी से
1: जी। तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है जी। तो इसी बात पर अजय जी, कौन सा एक गाना आप अगला हमें सुनवा रहे हैं?
0: साथी हाथ बढ़ाना
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना है, और मुझे लगता है कि हमारे इस काम के लिए सभी साथियों का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। साथी।

0: तो बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की। हमारे साथ कार्यक्रम में श्री अजय गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आप हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में। और हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि हमारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सकें जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी, ये पहला सेंसस है जहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन इंट्रोड्यूस हुआ है।
0: जी,
1: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था। और ये जो जानकारी देने का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप जाके
0: एक बार दोहरा दीजिए।
1: जी, SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन .census.gov.in।
0: जी,
1: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर, घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
0: जी,
1: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है
0: जी,
1: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़ के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो।
0: जी,
1: और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है तो आने वाले सभी सवाल उसको इंग्लिश में ही मिलेगा।
0: जी,
1: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे, क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एनुमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे MCD एरियाज के लिए, 1 मई से लेके 15 मई, 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी ID जनरेट होगी। और इस ID को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब आपके घरों में एन्यूमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये ID दीजिएगा, ताकि इस ID के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं HLO ऐप में। ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरे जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला है।
0: HLO ऐप
1: हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप।
0: जी, और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
1: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन, अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके, अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन है इस लाइन को जो हैंडल करते हैं वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे।
0: जी, उन्हें समझा भी सकते हैं कि कैसे एंटर करनी है डिटेल्स।
1: जी,
0: और अजय जी अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, न घर है न ठिकाना है, होमलेस लोग हैं जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है उसका।
0: जी,
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एनुमरेशन कहते हैं, उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को।
0: जी,
2: तो हमारे जितने एनुमरेटर हैं पूरे जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहां रहने का है और फिर उनका वो डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं।
0: जी,
2: इस तरीके से
0: मतलब पे वो जहां भी जिस
2: जहां पर भी वहीं पर
0: वहीं
2: पे फुटपाथ पे जाते हैं हमारे लोग, पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग।
0: जी,
2: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो फिर 28 तारीख की रात को शाम को वहाँ पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
0: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमने समझा की सेंसस जो है

0: वो कितनी जरूरी चीज है और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो इतना भरोसा जो है वो रखना है। जी जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल, जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है।
0: जी
1: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
0: जी
1: ये क्वेश्चन की सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है और HLO स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो। कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है ये।
0: जी
1: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी होती है और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं।
0: जी
1: और हर एक चीज पब्लिक में ही है, पब्लिक डोमेन में ही है तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि जो एनुमरेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं। तो इसमें कहीं मिस यूज ऑफ उनका जो पावर आप या तो पोजिशन का यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है।
0: जी तो सवाल पहले से हमें पता
1: होता है
0: और उनके सही जवाब देने हैं। घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है या न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में जरूरी है?
1: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे।
0: जी
1: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग चाहे कोई भी एज का हो चाहे कोई भी जेंडर का हो हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं मे बी कुछ दिनों के वो है और या तो दिव्यांग, तो इनको हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनुमरेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है
0: जी,
1: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें
0: जी,
1: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है
0: जी,
1: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं और आप दूसरी भाषा में कैसे वो सबसे मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के
0: जी,
1: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि और कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। तो ये एकमात्र एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है।
0: जी एक आम धारणा रहती है जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं तो मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है,
1: बिल्कुल
0: है
1: ना? अलग है।
0: आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपने आप को काउंट कर सकते हैं। जी
1: जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा
0: जी,
1: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता सभी केसेस में
0: जी।
1: तो अगर कोई टेम्पररी एब्सेंट है चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मैं भी रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो टेम्पररी एब्सेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड तो उनको भी आप इसमें गिनेंगे
0: उनको।
1: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे बी कुछ दिन के लिए आए हैं
0: जी,
1: और मे बी कुछ दिनों के बाद फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहां से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान और या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027 तो उस तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी
0: जी। आपने दिल्ली

0: बात की और जनगणना की जो तारीख है वो भी हमें बताई। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस होस्टिंग ऑपरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सेप्टेम्बर इन महीनों में कोई 30 दिन में आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे एमसीडी एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनिमेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनिमेशन होगी
0: जी,
1: 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे एचएलओ होगी एमसीडी एरियाज में
0: जी।
1: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी, बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेकर 14 मई ये उनका सेल्फ एनिमेशन का पीरियड है
0: जी।
1: और उसके बाद 15 मई से लेकर 13 जून उनका एचएलओ का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेके 21 मई तक उनका सेल्फ एनिमेशन है और 22 मई से लेके 20 जून उनका एचएलओ का पीरियड है
0: जी।
1: हरियाणा का सेल्फ एनिमेशन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल और 1 मई से लेके 30 मई उनका एचएलओ का पीरियड है
0: जी।
1: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ एनिमेशन और एचएलओ का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं
0: जी।
1: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनिमेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है
0: जी।
1: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है, जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए
0: जी।
1: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी फिक्स है
0: जी।
1: और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो
0: जी।
1: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है। तो इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से, मतलब तहे दिल से उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि सेंसस सही ढंग से हो पाए।
2: चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए।
1: जी सर, दिल्ली के लिए अभी जो एमसीडी एरियाज जो है इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के। तो यहाँ पे अभी सेल्फ एनिमेशन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक और उसके बाद ही एचएलओ होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून
0: जी।
1: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ एनिमेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक एचएलओ होगी। उत्तर प्रदेश का जो एससी जो सेल्फ एनिमेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक एचएलओ होगी
0: जी।
1: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनिमेशन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक एचएलओ होगी। तो एचएलओ हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये टाइमलाइन।
2: एचएलओ का मतलब है जहाँ पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे जी।
0: जी जी। तो चलते चलते कौन सा गीत हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को जितेंद्र जी?
1: चलते चलते मेरे गीत याद रखना।
0: वाह, तो कार्यक्रम के समापन पर बहुत अच्छा सा गाना आपने चुना है, चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: हम सभी से कर रहा है। सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूँ। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आभार आप।
0: जी डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है, उसके लिए आपके आभारी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार

निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: You are tuned to Akashwani Radio 102.6 and listening to some cool numbers in our program played Cool with your amigo Renuka. Up next we have Rihanna.

0: सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: Akashwani Rainbow 102.6 and this is Play It Cool with Iramiga Renuka, and today we are talking about the benefits of laughter. We did talk about the physical benefits, now let's talk about the mental benefits of laughter. It lowers stress. Yes, laughter helps by decreasing the stress hormone cortisol and reversing the stress response. Well, yes, we need it, especially in these times when everyone is so stressed about even the smallest of things. It's our responsibility to keep our mental health in line. And for that, all you have to do is just laugh, right? And with that said, let's listen to

0: Well, I told you to laugh because it's laughter day, and I was talking about the mental health of mental benefits of laughter on our health. So it improves depression. Yes, laughing can also alter levels of neurotransmitters in the body, namely dopamine and serotonin, which are the happy hormones, also increasing the release of endorphins. Together, this help improve depression symptoms. So, if you think that someone is low or upset or not feeling okay, please make sure that they are laughing. Okay?
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक

पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। तो दोस्तों, अपनी फरमाइशों के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि आज है रविवार। फिर एक बार मेरा वाला सॉन्ग के साथ मैं राजेश कुमार आप सभी के साथ एक ऐसे शो में जिसमें आपकी पसंद के गीत चलते हैं और आपके संदेशों से सजता है ये पूरा माहौल। तो वो गीत जो आपको अपने लगते हैं, जिनको सुनकर आप गुनगुनाने या फिर थिरकने लगते हैं, तो क्या है वो वजह जो उस गीत को बनाती है आपके लिए बहुत ही खास, ये सब कुछ हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। और आपकी ज्यादा से ज्यादा फरमाइशों को हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्या आपको करना होगा अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचाने के लिए। आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप करना होगा, अपनी बातें लिखकर पहुंचानी होगी, और क्यों वो गाना है आपके लिए खास, ये सब बातें हमें बताना होगा। और कैसे बताना होगा? बताना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9868107070। इस नंबर पर आप हमें अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। और बिल्कुल हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आपकी जो बातें हैं वो हम तक पहुंचने लग जाती हैं, और हम भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं उन गीतों के साथ जो आप सुनना चाहते हैं, उनको निकाल कर सोचते हैं कि पहला ही गीत आपकी पसंद का हम चलाएं और आप तक वो गीत पहुंचाएं। तो आप लोग जब मैसेज करें, तो एक बार अगर आपने मैसेज कर दिया, अपनी बुरी बात कह दी है, तो थोड़ा सा बस धैर्य रखिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपके उन मैसेजेस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और शुरू में ये बताना ज़्यादा ठीक रहता है कि कई बार क्या होता है कि आपका मैसेज पहले आ जाता है और हम उस तक पहुंचने से पहले देखते हैं कि आपने एक बार फिर से कर दिया मैसेज और आपका मैसेज चला जाता है ऊपर, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा और समय लग जाता है। तो उस समय को बचाने की कोशिश में हम आपको पहले ही बता देते हैं कि थोड़ा सा कीजिएगा इंतजार, क्योंकि इस रविवार आपके ज्यादा से ज्यादा फरमाइशों को लेने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, तो मेरा वाला सॉन्ग में आपके लिए ये आपका वाला सॉन्ग बिल्कुल तैयार है। सुनते हैं इसको और वापस आते हैं एक बार फिर से आपके मैसेजेस के साथ। स्वागत है आपका।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और मेरे साथ हैं आपके बहुत सारे मैसेजेस जो आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर कोई फरमाइश आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी, तो बिल्कुल पहुंचाइए। आपकी फरमाइशों को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन फरमाइशें कई बार इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाती समय की वजह से, क्योंकि एक घंटे के प्रोग्राम में लगभग 7 या 8 गाने हम आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन हाँ, आपके मैसेजेस जो आते हैं ना हम तक, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो काम आप कर सकते हैं, और वो करने के लिए तरीका यही है कि 9868107070, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070। और अगर आपने एक बार मैसेज कर दिया है तो थोड़ा सा रखिए, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपके मैसेज तक जरूर पहुंचेंगे। और जब पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम आपका नाम भी लेंगे और कहां से आप हमें मैसेज लिख रहे हैं वो भी बातें बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंची हैं, कहां से। सबसे पहले मैसेज किया हमें पंकज जी ने अमरावती महाराष्ट्र से, और कई गीत इन्होंने हमें सजेस्ट किए कि इनमें से कोई सुनवा दीजिए। तो दोस्त बिल्कुल, हमने कोशिश की है कि आपकी पसंद के इन गीतों में से कोई गीत आपको ज़रूर सुनवाया जाए। इसके अलावा मैसेज हम तक पहुँचा है

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज घोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका घोरवाल का इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। कोलार रोड भोपाल से लगातार सुनते हैं हमारे ये साथी रामबाबू मालवीय, इन्होंने भी कहा है कि एक गाना हमें सुनवा दीजिए। और कुछ जगह ऐसी होती है ना जिनके साथ आपका एक जुड़ाव होता है, जब आप उस जगह के नाम को सुनते हैं, बेशक आप अब रहते नहीं हैं वहाँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रास्ते, वो सब कुछ आपकी यादों में आ जाते हैं। तो जब आप अपने नाम के साथ जगह का नाम लिखकर भेजते हैं तो बहुत से लोगों को हमने ऐसा कहते सुना है कि हम पहले वहाँ रहते थे और उसके बाद जब कोई श्रोता वहाँ से मैसेज करता है तो हमें वहाँ की बातें याद आती हैं। तो होना बहुत ही लाजमी है और ऐसा होता भी है। राहत और गज़ल का मैसेज है नेहटौर बिजनौर उत्तर प्रदेश से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपने जो फरमाइश की थी वो फरमाइश हम निकाल चुके हैं, बस वो फरमाइश आप तक पहुंचाएंगे कुछ और संदेशों के बाद। मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम का जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और फरमाइश आई है हमें कुछ और। आपका मैसेज जो है एक साथ कई हैं। आपका नाम है तेज कुमार गुप्ता, जनता विहार मुकुंदपुर दिल्ली से, इन्होंने भी मैसेज किया और अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई। और इसके अलावा मैसेज किया है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल ने, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। तो दोस्त अब समय हो गया है कि आपकी एक और फरमाइश को आप तक पहुँचाया जाए और उसके बाद आपके मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। तो अगली जो फरमाइश है कौन सी है, ये वाली, आइए सुनते हैं।

आपके जो प्यारे भरे मैसेजेस आते हैं ना, उनके लिए भी हमारा कुछ ऐसा ही मन करता है कहने का, गीत गाने का, जैसा अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और बातें क्या क्या आपकी पहुंची हैं उन तक एक बार फिर से चलने का समय आ गया है। और जो बातें पहुंचाई हम तक, उनका नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग नाम कई बार एकदम बीच में डालकर एक पहेली बना देते हैं कि पहले उसको ढूंढ के दिखाओ उसके बाद कुछ आगे जाओ। तो हमने नाम ढूंढ निकाला है, राजू मल्होत्रा, रानी मल्होत्रा, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर से। इन्होंने मैसेज में कहा है कि एक गाना सुनवा दीजिए। और साथ ही साथ मैसेज किया है अमन विश्वकर्मा ने, लिखा है इन्होंने कि एफएम रेनबो के सभी दोस्तों को सलाम, दोस्ती के नाम एक पैगाम, वक्त की धूल में खो गए जो यार, यादों में आज भी जिंदा हैं वो चार, दिल से निकली ये दुआ हमारी, लौट आए फिर से वो शाम ही प्यारी। और इन्हीं जज्बातों के साथ एक नगमे की इन्होंने फरमाइश की है, और फरमाइश के साथ साथ इन्होंने पूरी तरह से उस गीत में जो भी कलाकार है उन सभी लोगों का नाम लिया है, और ख़ासकर अपने दोस्तों को डेडिकेट करने के लिए ये कहा है अमन विश्वकर्मा ने। बहुत अच्छे से मैसेज लिखा है दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जायद और हुडा का मैसेज आया है गाज़ियाबाद से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। मैसेज भेजने वालों में हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन, शाहनवाज, सरवराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। इसके अलावा मैसेज किया है हमें उपदेश शर्मा ने, किश्तवाड़ से किया है, अच्छा, जम्मू कश्मीर से। और इन्होंने कहा है कि गाना सुनाइए मेरी पसंद का। तो बिल्कुल दोस्त, थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप भी, गाना हो सकता है कि आपकी पसंद का ना चल पाए, लेकिन हाँ, आपका मैसेज तो हमने शामिल कर लिया। और हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। हमारे साथ ही हैं पुराने सौरभ वनेजा, मैसेज कर रहे हैं, लिखते हैं हमेशा की तरह कि मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती है, मैं तो बस शो को इंजॉय करता हूँ। तो इंजॉय करते रहिए आप इस प्रोग्राम को। और मैसेज किया है हमें फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने भी, और इन्होंने भी एक गाना सुनने के लिए हमें कहा है, फरमाइश की है। राजेश कुमार चौहान जालंधर से लिखते हैं कि आज विश्व हास्य दिवस है, और हंसी हमें स्वस्थ रहने के लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे उचित भोजन, हंसी का कोई भी मौका ना जाने दे। तो बिल्कुल, आप भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, हम यही चाहते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी बात आपने कही, साथ में कोई जोक भी सुनाते तो हम सब लोग मिलकर साथ में हंस लेते। गुड्डू धाकड़ जी मध्य प्रदेश उज्जैन ज़िले के बेड़ावन गाँव से लिखते हैं कि मुझे तो पूरा प्रोग्राम अच्छा लगता है, सारे गाने अच्छे लगते हैं और सारे दोस्तों के गाने मुझे पसंद है, किसी भी दोस्त के साथ मेरा नाम ले लीजिए, इसी में मैं खुश हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यार से आपने ये बात कही, और हमें भी अच्छा लगता है कि आप समझते हैं कि कई बार हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है सभी गानों को, सभी फरमाइशों को पूरा कर पाना, आप तक पहुंचा पाना, लेकिन हाँ, आप इस बात को समझते हैं और अपने मैसेज के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाते भी हैं, तो जानकर अच्छा लगता है। ग्राम जसवाई जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से का भी मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, शुभ दोपहर आपको भी, और एक गाना भी इन्होंने सुनने के लिए कहा है। तो दोस्त, आप लोग मैसेज तो इतने अच्छे अच्छे भेज रहे हैं, बहुत सारी बातें लिखकर भेज रहे हैं।

0: बहुत सारे नाम भी भेज रहे हैं, लेकिन इस गाने के साथ कोई जुड़ी बात भी भेजते ना अगर आप हमें, तो हमें और भी अच्छा लगता। अगला जो मैसेज है संजू, अंजू, अथर्व, कबीर, आदित्य और जिया का, मांडवी राजस्थान से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है, मैसेज भेजा है। अगला मैं नवलू वरक मलपड़ गोवा से ये संदेश भेज रहा हूँ और एक गाना सुनना है मुझे, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्त हम कोशिश करेंगे कि इस गाने को ढूंढ कर आप तक पहुँचाएं। प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी दिल्ली से इन्होंने मैसेज भेजा है हम तक। इन्होंने लिखा है सत श्री अकाल, सत श्री अकाल आपको, तुसी किदा हो जी, असी तो वधिया है। अगे लिखा है कि कल मेरी बेटी को कोर्ट में लगी जॉब के 5 महीने हो गए, अरे वाह क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। तो बहुत बहुत बधाई पारुल सलूजा जी आपको भी, और प्रदीप जी आपने जो ये संदेश दिया है ये भी जानकर अच्छा लगा, और आपने कहा है कि कुछ गीत में आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के, तो बस थोड़ा इंतज़ार करें आप, समय समय के साथ साथ वो गीत भी आप तक पहुंचेगा जिसका आपको इंतज़ार है। और अगला जो मैसेज है पवन कसेरे का खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, इन्होंने भी एक गीत सुनने की फरमाइश की है, और फरमाइश की है कोमल चंद साहू ने फिंगेश्वर छत्तीसगढ़ से एक गाना बोला था, आपकी पसंद का गाना तो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। तो अब देखिए फरमाइशें जो हैं आपकी धीरे धीरे हम तक पहुंचती है और हम भी उनको धीरे धीरे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब समय आ गया है कि हम चलें एक ऐसे गाने की तरफ जो आपकी फरमाइश है और उसके साथ कुछ बात भी है, बात बताएंगे हम बाद में, पहले इस गाने को सुनवाते हैं आप तक पहुँचाते हैं।
1: वो जब याद आए बहुत

मेरी एक डॉटर हैं जो मुंबई चली गई हैं, उनके दूर होने से बहुत याद आती है। और इनके बीमार होने पर 4 साल के बाद आई वो, और आज भी उनकी याद बहुत आ रही है। तो उनकी याद में इन्होंने पारसमणि फिल्म का ये गाना सुनने की फरमाइश की थी, और इस गीत को हमने उन तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए और आपके इतने अच्छे संदेश के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से चलते हैं आपके संदेशों की ओर और देखते हैं कि और क्या क्या बातें लिखकर आपने पहुंचाई हैं हम तक, कौन कौन सी बातें आपके रह गई हैं जिनको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना है हमें। चेतन कुमार मनपुर बाजार गया बिहार से, इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। भगवती जी ने नई दिल्ली से लिखा है मैसेज, और कई फिल्मों के नाम और गीत लिखे हैं, और मौसम के अनुरूप गीत सुनने की जो इन्होंने बात कही है ये भी कही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला जो मैसेज है, इनका नाम है सुमन कर्माकर, ये सोनितपुर असम से, इनके साथ हैं कई लोग, और वो लोग कौन हैं, नयन, मीरा, पूनम, शिवानी, प्रशांत, और इनके साथ ही कई और भी लोग हैं जो एक गाना सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा जी, ये लोग दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज लिखकर हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि गाना सुनने की फरमाइश की है इन्होंने। और अगला जो मैसेज है उसमें आपका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, ओम प्रकाश GK2 से मैसेज आपने लिखा है और इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। इसके अलावा मैसेज किया है हमें मोहम्मद फुरकान ने ग्राम सियाल से, और इन्होंने भी एक गाना सुनना चाहा है। और गाना सुनने वालों में कुछ और नाम भी हैं जिनके नाम है रंजीत, मुकंदपुर दिल्ली से, इन्होंने भी कहा है कि गाना सुनवाइए एक, और गाने के बोल लिखे हैं। और साथ ही साथ शिवांगी कुंज का मादीपुर दिल्ली से भी मैसेज आया है, इनके साथ ही कुछ और लोग हैं, और वो लोग हैं नवीन कोशवाल और शर्मिष्ठा कोशवाल, इन्होंने भी मैसेज भेजा है और गाना सुनने की फरमाइश की है। कांट से मोहम्मद फुरकान ने भी मैसेज किया है और पूछा है कि कैसे हैं आप, मैं अच्छा हूं दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, और एक गाने की आपने भी फरमाइश की है, और फरमाइशें हम तक आई हैं कई और। तो कई और फरमाइशों तक जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। चलिए ब्रेक को भी थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, अब आपने इतनी फरमाइशें की हैं तो एक फरमाइश को और ले लेते हैं, और उसके बाद ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके मैसेजेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश में।

0: से बचाएं। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: ताजी ताजी, महकी महकी, जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: से बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 से 5 तक। हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 रेनबो पर।

जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश और आप भी हमारे साथ हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। बहुत सारे मैसेजेस आपके हम तक पहुंचे हैं अब तक और हम भी पहुंचते हैं आपके मैसेजेस तक। देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें लिखकर आप लोगों ने हम तक पहुंचा दी हैं। सुनीता शर्मा जी शालीमार बाग से इन्होंने मैसेज किया है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। इसके अलावा गांव मलवाला जिला बठिंडा से बिहला सिंह फौजी गुरनूर निमरत सतविंदर कौर बलराज मान और बलकार सिंह मान का है इनका मैसेज और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। तो बिल्कुल जी, हमारे कई साथी हैं जो पंजाबी गाना सुनना चाहते हैं तो बस थोड़ी देर इंतजार करें। एक पंजाबी गाना बिल्कुल आपके लिए पहले से ढूंढ रखा है क्योंकि आपकी फरमाइशें हैं और इन फरमाइशों को पूरा करने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। दिनेश अजय कालू पोली ये अमर कॉलोनी से गोकुलपुरी दिल्ली से मैसेज लिखा है इन्होंने और एक गाना सुनने की कोशिश में इन्होंने मैसेज किया था और इनका जो गाना था वो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुर फिल्म से सुना था, वो इनकी पसंद का गाना था और वो इन तक पहुँच गया है। इसके अलावा मैसेज

भेजने वालों में हैं हमारे कुछ और साथी। आकांक्षा का मैसेज आया है, कहाँ से आए ये तो नहीं पता चला है, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ यादें जरूर हमारे साथ शेयर की हैं। लिखा है कि कोविड के टाइम जब लॉकडाउन था, मेरे दोस्तों ने मुझे अनोखे वे में वीडियो बना के सरप्राइज किया था, और वो गाना था मौजा ही मौजा, क्या बात है, फिल्म जब वी मेट से। और इनके बर्थडे पर ये गीत जो है इनके दोस्तों ने वो वीडियो कंपोज किया और वो भेजा, और कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छे पल दोस्तों के साथ जो थे उस वीडियो में थे वो इन्होंने साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका ये मैसेज हमारे साथ साझा करने के लिए। इस गाने को ढूंढने की कोशिश की हमने, लेकिन अभी तो नहीं चल पाएगा, पर हमारी कोशिश यही होगी कि आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में जब आप हमें सुने तो आपकी फरमाइशें इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। शब्बीर हुसैन का मैसेज आया है पूर्णिया बिहार से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब भी सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी लोगों का इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, ये मैसेज एक और है, इनका नाम है जोकीहाट दशना बाजार अररिया से, मोहम्मद सरफराज आलम, और भी कई साथी हैं। अच्छा, आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैसेज भेज दिया था, तो फिर बताइए कैसे हम पहुंचते। 1:05 पर हमने प्रोग्राम शुरू किया और आपका मैसेज 1 बजे के आसपास ही आ गया, तो पहले से तो हम तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं कि जब आप हम प्रोग्राम में कहते हैं कि आप हमें मैसेज भेजें, उसके बाद जब आप भेजते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका कोई मैसेज हमसे छूटे ना। तो अगर आपने बहुत पहले भेज दिया है तो फिर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमें उम्मीद है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। इनके अलावा साथ में इनके हैं मनोहर लाल गांधी जी, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, विजय नारंग, सुरेंद्र खुराना, सिराज मिथुन, सईद अब्बासी, चांद खान, मुर्तजा खान। अच्छा, इनमें से देखिए कई लोग अपना अपना नाम लिखकर पहले भेज चुके हैं और अब आप उन लोगों के भी नाम लिखकर साथ साथ भेज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने मैसेज किया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया इसका दोस्त। इस्लाम सनमानी महिपालपुर से, इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है और मैसेज भेजा हमें जफर अर्तुक, फरहान, अंजुम और अरीबा सलमान ने पूर्णिया बिहार से। इन्होंने लिखा है कि मेरा दोस्त फरहान मुझसे नाराज है, कृपया उसको बोलिए कि मैं सॉरी बोलता हूँ, वो मान ले। तो दोस्त, अगर दोस्त आपको बोले सॉरी तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आमतौर पर दोस्त सॉरी नहीं बोलते, और अगर आपको ऐसा दोस्त मिला जो सॉरी बोल रहा है तब तो मान ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्त तो अलग तरीके से भी आपको मना सकते हैं, लेकिन ये सॉरी बोल रहे हैं तो भले दोस्त मिले आपको, मान जाइए। अगला जो मैसेज है मोनिका का पौड़ी गढ़वाल से, लिखा है कि मुझे एक गाना सुनवा दीजिए, और ये गाने के साथ इन्होंने याद अपनी ये सुनाई है, हमारे साथ साझा की है कि ये गाना है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, और ये मेरे दोस्त ने जब मैं इंटर में पढ़ती थी तो मेरे लिए गाया था और मुझे आज भी याद है, क्या बात है, सुनहरी यादें, पुरानी यादें, अच्छा लगता है उन यादों को जानना, उन यादों को फिर से फ्लैशबैक में जाकर जीना। अच्छा लगा आपने मैसेज हमें किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह उत्तराखंड से, सिर्फ तुम पंची सुर में गाते हैं, बहुत सारे गाने और भी इनको याद आते हैं और इन्होंने साझा किया हमारे साथ। अनुज सिंह उत्तराखंड से, इन्होंने भी कुछ बातें और लिखकर हम तक पहुंचाई हैं, और कुछ और साथी हैं जो हम तक अपनी बातें लिखकर पहुंचा रहे हैं, तो अब समय है कि हम भी आप तक पहुंचाएं वो गीत जिसकी आप काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो जो हमारे कई साथी हैं ना पंजाबी गीत, खासकर प्रदीप सलूजा जी और हमारे साथी अभी जो बठिंडा से मैसेज हमें किया था, उनके लिए ये गीत।

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी के एफएम रेनबो स्टेशन पर, जिसे आप सुनते हैं दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और हमारे साथ है बहुत सारे हमारे साथी जो लगातार हम तक पहुंच रहे हैं अपने एसएमएस व्हाट्सएप के जरिए, और अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि और कौन सी बातें आपने लिखकर हम तक पहुंचा दी हैं। मैसेज किया है, हम तक पहुंचाया है मैसेज वीरू बख्शी जी ने, जिनका पिछली बार इन्होंने पहुंचाया था तो इनके नाम की स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन इस बार ठीक लग रहा है। और इन्होंने कहा है कि सारे ही गाने अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका। मैसेज किया है हमें डॉक्टर बैनर्जी ने, इन्होंने कहा है कि इनकी वाइफ हैं श्रुति, वो सुन रही हैं, और एक फरमाइश है उनके लिए, और उनके लिए एक फरमाइश है। ये पंजाब जालंधर से मैसेज किया है इन्होंने। तो दोस्त आपकी फरमाइश के साथ साथ एक और हमारे साथी है जिनकी कुछ उसी तरह की फरमाइश है, तो वो दोनों की फरमाइशों को मिलाकर वो जो गीत हम आप तक पहुंचाएंगे ना, हमें उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा कीजिए इंतजार, बस आप तक पहुंचने वाला है वो गाना। अगला मैसेज है, गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं और आज मेरी नीज भी शो सुन रही है, मिस्टी और डॉली। अरे वाह डॉली जी, आपने तो बहुत दिनों के बाद मैसेज किया, काफ़ी समय के बाद वाकई में इस प्रोग्राम में आपका मैसेज आया, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ आपने मैसेज भी किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो मैसेज है वो मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता का है, इन्होंने भी 12:54 पर मैसेज भेज दिया था, और ये कह रहे हैं हमसे कि आपने तो मैसेज देखा ही नहीं, कब से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्त प्रोग्राम शुरू होने दीजिए, मुझे आने तो दीजिए, तभी तो आपका मैसेज मैं पढ़ पाऊंगा, उससे पहले ही आपने कर दिया था, तो फिर से अच्छा किया आपने कि बता

दिया, लेकिन कोशिश ये करें कि जब प्रोग्राम शुरू हो उसके बाद आप मैसेज भेजेंगे ना, तो फिर उस तक पहुंचने का हमारा जो प्रयास है वो ज़्यादा सफल होगा। तो आपका जो पसंद का गीत है वो भी हमने ढूंढने की कोशिश की है। दिनेश कुमार नाहन हिमाचल से भी मैसेज इनका आया है और हम तक अपनी बात पहुँचाई है। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जगह से ये मैसेज हमें किया है और बहुत अच्छा लगा। नाहन भी गया था मैं एक बार, तो मुझे वहाँ की भी बहुत सारी बातें, जैसा कहते हैं ना कि हम जगहों के साथ भी हम कुछ मेमोरीज लेकर आते हैं, तो वो सब भी चलता रहता है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, इनका भी मैसेज आया है और इन्होंने भी कहा है कि एक गाने की फरमाइश है इनकी, वो फरमाइश हम पूरी करें। तो दोस्त, हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइशों को पूरा करने का जो हमारा कार्य है उसको अंजाम दें हम, लेकिन समय थोड़ा कम होता है और आपकी बातें भी होती हैं हम तक, तो हम उनको भी पहुंचाने की आप तक कोशिश करते हैं। और अगला जो मैसेज है रमेश कुमार विश्वकर्मा जी का है, ग्राम मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब जिला वाराणसी से हूँ और इन्होंने एक गाना सुनने के लिए कहा है। इन्होंने भी ये गाना कहा है कि पत्नी के लिए सुनवाना है। तो दोस्त, बस आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए, एक और गाना जो है, तीन लोगों के लिए गाना सुनवाने वाले हैं हम, लेकिन आपकी फरमाइश अलग है मुझे पता है, लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं लगभग सब में एक है। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उसके बाद वो गाना हम आप तक पहुंचाएंगे। और बस वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई क्योंकि अब इनका मैसेज है पुष्पेंद्र गर्ग का, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। इनका मैसेज है कि मैं अपनी पत्नी रागिनी के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूं, जो इस समय इनसे थोड़ी नाराज है, और इस संदेश के जरिए उन्हें बताना चाहता हूं कि उनसे कितना प्यार करता हूं और उनके बिना दिल नहीं लगता। तो आप सभी लोगों के लिए जो गाना है वो ये है, आप सुनवाइए और नाराज लोगों को मनाइए।

इस गाने को सुनते सुनते मुझे कई बार हंसी आती है अपनी कल्पनाशीलता पर भी, कि ये गाना सुनते सुनते मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिन जिन ने ये मैसेज किया था कि पत्नी नाराज है, वो उनको मनाने के लिए इस गाने को जब गा रहे होंगे तो किस तरह से कर रहे होंगे, ये सोच के मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन क्या करें, अब रूठों को तो मनाना पड़ता है, जिंदगी में इसी तरह से आगे जाना पड़ता है। हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लेकर हम तक पहुँचाई हैं। रणधीर गुप्ता जी, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम और सुंदरम गुप्ता का भी मैसेज हम तक आया है ओखला के संगम बिहार दिल्ली से, और इन्होंने मैसेज किया है। इसके अलावा हमारे साथी हैं, लिखते हैं राजेश भल्ला जी, एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से, लिखते हैं कि जब ये शुभ दोपहर लिखते हैं तो मेरा नाम आ जाता है। तो दोस्त, ऐसा होता है कि दोपहर में जब हम आपसे मिलते हैं और आपके मैसेज हम तक पहुंचते हैं तो आपका जो फ़ोन है ना वो भी समझता है कि हाँ इस समय आप किसको मैसेज भेजते हैं। तो अच्छी बात है ना कि देखिए अब हमारे और आपके जो आपसी संबंध है उनको आपका फ़ोन भी अच्छे से समझता है और आप कितने प्यारे हमारे लिसनर हैं ये हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना मैसेज हम तक पहुँचाने के लिए। आयशा एन का मैसेज है, इन्होंने मैसेज किया है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है और साथ में मैसेज किया है एक बार फिर से प्रदीप सलूजा जी ने, और गाना तो इनको पसंद का आया। और एक और खुशखबरी दी है कि 9 मई को इनकी बेटी की शादी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पारुल के लिए और उनके आने वाले भविष्य के लिए। और अगला जो मैसेज है इनका नाम है आदिप, अच्छा इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है आदि पुरुष से, इन्होंने मुझे लगा आपका नाम ही यही है, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से। और रॉबिन का मैसेज आया है मुक्तसर पंजाब से, और मैसेज किया है हमें कई और साथी हैं हमारे जिनका दोबारा दोबारा से मैसेज आ रहा है, और मैसेज किया है राजेश मल्होत्रा जी ने दिल्ली से, और किया है मैसेज किसने, प्रवीण ने, प्रवीण खुराई से इन्होंने मैसेज किया है और अच्छा लगा इनको प्रोग्राम। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और भी साथी हैं जिनकी पसंद के गीत भी चल चुके हैं। सोनिया का रोहतक से भी मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है कि मेरी मम्मी का बर्थडे वीक चल रहा है, उनको एक सॉन्ग सुनना है। अच्छा धर्म भाटिया जी को तो ये तो सुनवा दिया हमने, क्या बात है, बेटी ने भी भेजा और मामा ने भी भेजा, बहुत अच्छा लगा जानकर। और वो गाना उनकी पसंद का चल चुका है। मोहम्मद साजिद जी, अलीना आयत देहरादून से प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और साथ साथ प्रोग्राम सुनने वालों में कुछ और हमारे साथी हैं जिनका नाम हम लगातार इस प्रोग्राम में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता नेगी जी सोनू सोलन से इन्होंने मैसेज किया है, अच्छा लगा प्रोग्राम। तो दोस्त हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज आए, और इन प्यारे प्यारे मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना और आपकी फरमाइशों को आप तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। और एक और फरमाइश के साथ मैं आप तक ये फरमाइश आप तक पहुँचाने के बाद आपको बता दूं कि इसके बाद आप थोड़ी देर बाद यानी कि 2 बजे से सुन पाएंगे प्रोग्राम छोटे उस्ताद, जिसमें आपके साथ होंगी गीतिका उनियाल, और 3 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, 4:05 पर होगा रेनबो जीनियस, जिसमें कुछ सवाल हम पूछेंगे और उनका जवाब देकर आप बन सकते हैं रेनबो जीनियस, और उसको लेकर आप तक पहुँचेंगे गीतिका उनियाल। इस गीत के साथ राजेश को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अन्याल और आज एक बार फिर आपके साथ आप ही के अपने प्रोग्राम आशियाना में मैं हूं। और आशियाना में संडे का दिन है, हमारे घर के उस्ताद यानी कि छोटे उस्ताद जिनकी वजह से हमारे घरों में रौनक होती है, उन्हीं के बारे में आज करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात। क्या है वो विषय बताऊंगी आपको जल्द ही, लेकिन उससे पहले आइए आगाज करते हैं आज के इस शो का इस गाने के साथ, क्योंकि हमारे घर के ये जो बच्चे हैं ना, सब क्वीन हैं और किंग हैं और हम बस ये कहते रह जाते हैं आपको क्या चाहिए जनाब, आपकी हर फरमाइश पूरी हो रही है ना, और बदले में आपको जवाब मिलता है आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए ये नहीं बनाया, आप मेरे लिए ये खिलौने लेकर नहीं आई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आज के दौर में बच्चे बहुत ही डिससैटिस्फाइड हैं? क्या कोई चेंजेस हैं जिसके तहत उनमें बदलाव देखा जा रहा है? नहीं तो हमारे जमाने में, यानी कि हमारे जमाने में हम वो हर बात मान लिया करते थे जो हमसे कही जाती थी, पलक झुकाकर, पलक उठाकर देखते तक नहीं थे।

बिल्कुल सटीक कहा, पिंजरा लगने लगता है बच्चों को अपना ही घर और लगने लगते हैं माता पिता जेलर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आज के ज़माने में, यानी कि आज के युग में, जब बहुत कुछ बदल गया, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे ज़माने में जब ज़माना बदला है तो सोच बदली है, सोच बदली है तो हमारे करने के तरीके, कहने के तरीके, यहाँ तक कि हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शन सब कुछ बदल गए हैं। तो ये कहना कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था और इस ज़माने में ऐसा होता है, लाजमी सी बात है, परिवर्तन है जनाब। उस युग में कुछ और था, इस युग में कुछ और था, उस युग के बच्चे कुछ और थे, इस युग के बच्चे कुछ और हैं। पर यकीन मानिए, कोई किसी से कम नहीं था, कोई किसी से कम नहीं है। ये जो परिवेश है, आज का माहौल है, उसके अनुरूप बदल रहा है सब कुछ, और इसी के मुताबिक हमें भी खुद को बदलना होगा, थोड़ा खुद को बदलना होगा और एक डोर को पकड़ के रखना होगा, वो डोर है हमारे घर के बच्चे। अब आज हम बात करेंगे किस तरह से आज बच्चों के जीवन में बहुत कम उम्र में ही बदलाव आने लगते हैं। कम उम्र इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक जमाना होता था, फिर जमाना इस्तेमाल यहां पर इसलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ बातों को समझाने के लिए जरूरी हो जाता है, कुछ बातों को पकड़ना। एक समय होता था बच्चे कब स्कूल कॉलेज पास कर लेते थे और अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाते थे, माता पिता को पता ही नहीं लगता था। लेकिन आज के दौर में पेरेंटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, टीन्स का इस्तेमाल तो हम बहुत समय से कर रहे हैं, हम टीन की कैटेगरी में जाने वाले हैं, यानी कि जैसे ही बच्चे को 13 साल लगता है, यानी कि 13 लगता है, तो हम कहते हैं बच्चा टीनेजर हो गया, टीनेजर की कैटेगरी में आ गया। अब टीन का कॉन्सेप्ट तो हम बहुत वर्षों से सुनते आए हैं, टीनेजर हो गए हैं, लेकिन आजकल एक नया टर्म जो सामने आता है वो आता है प्री टीन। प्री टीन यानी कि टीन होने से पहले का समय, टीन की कैटेगरी में पहुंचने से पहले जो बच्चे की उम्र, यानी कि वो जो दौर होता है, उसको कहा जाता है प्री टीन। और प्री टीन शुरू होता है 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, यानी कि 13 साल लगने से पहले के समय को, यानी कि 13 होने से पहले 9 से 12 साल के लड़के और लड़कियां, यानी कि बच्चे और बच्चियां, इनको हम कहते हैं प्री टीन। और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक सेतु होता है जो बचपन से लेकर एडोलेसेंस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। 9 साल से पहले अपने आप घर पे यही कहते हैं, बच्चा है करने दो करने दो, लेकिन एक समय आता है आप कहते हैं अब ये बच्चा नहीं रहा, अब इसको समझना होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा। और जब वो इस उम्र में आने लगता है तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल खुद घर पर करते हैं, लेकिन आप खुद नहीं जानते हैं कि ये जो टीनेजर के पड़ाव पर ये जाने वाला है, इस बीच का समय बहुत से पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल और दुखदायी होता है, क्योंकि अभी तक बच्चे को आपने बहुत पैम्पर किया होता है, बहुत प्यार लाड दुलार दिया होता है, लेकिन अचानक ही बच्चे के व्यवहार में बदलाव आने लगता है और वो बदलाव असहनीय लगता है। आपको लगता है हम बच्चे को इतना प्यार करते हैं, फिर भी ये हमारे साथ चिड़चिड़ाहट करता है, गुस्सा करता है, जवाब देता है, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है ना, कहते हैं ना हम। इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से पहलुओं से अनभिज्ञ है हम, बच्चे के अंदर आ रहे हैं चेंजेस, बदलाव, और उन बदलावों को जानना

बहुत जरूरी है। तो क्या है वो बदलाव जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, और बदलावों के पीछे का कारण क्या है जिनको हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जानेंगे आज इसी शो पर जिसका नाम है आशियाना। और आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं छोटे उस्ताद की। बेसब्र हम सब हैं, बस चाहते हैं कि जिस तरह से हम चाहें ना अपने बच्चे की कमान को पकड़ना, जिस तरह चाहें अपने बच्चे को जिस दिशा में ले जाना, बस बच्चा ना किसी में उसी दिशा में चलता रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा, युग परिवर्तन होता है, जमाने बदलते हैं, तो आज का परिवेश, आज का माहौल, उसमें कुछ आप बदलिए और कुछ आपका बच्चा आपके अनुरूप चलेगा। लेकिन उसके लिए भी ना कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स हैं जो देगी आपकी ये दोस्त गीतिका उनियाल आपको यहाँ आप ही के अपने शो छोटे उस्ताद में। कुछ

तो बेसब्र हैं आप भी जानने के लिए कि क्या है प्री टीन, जिसके बारे में हमने चर्चा की और हमने कहा कि प्री टीन वो अवस्था है, वो उम्र का पड़ाव है जहां बच्चा टीन एजर बनने वाला है कुछ समय बाद। ये प्री टीन शुरू होता है 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में, लेकिन कुछ माता पिता के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाता है। उनके लिए अपने बच्चे को मैनेज करना

उसे समझना, उसे समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब जब हम बहुत विद्रोह करते हैं ना, तो विद्रोह विद्रोह को जन्म देता है। हम जब अपने बच्चों के साथ बहुत चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो उल्टा हमारे बच्चे भी हमारे साथ चीखते हैं चिल्लाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको हमारा भय नहीं, लेकिन अगर इस दौर की बात की जाए तो इस दौर में शारीरिक रूप से आपके बच्चे में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ना केवल शारीरिक लेकिन भावनात्मक, सामाजिक और कह लीजिए कि हार्मोनल चेंजेस इस समय बच्चे में सबसे ज्यादा आते हैं। तो जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के व्यवहार में एक परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं था, लगता है जरूर गलत संगत में आ गया है। और हम फिर अपने बच्चों के साथ फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं और पूछते हैं कि बताओ किसकी संगत में हो आजकल, किसके साथ हो। उस दोस्त के साथ बिल्कुल नहीं रहना, इस सहेली के साथ बिल्कुल नहीं खेलना। अब बच्चा फिर विद्रोह करता है ये सोचकर कि मुझे रोका जा रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ऊपरी तौर पर हम उन्हीं पर नजर डालते हैं, लेकिन अंदर क्या है उसको झांकने की, उसको देखने की, उसको समझने की बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं। हमें ये जानना है कि आखिरकार जड़ क्या है परेशानी की। परेशानी की जड़ यही दौर है, यही समय है, जहां मैंने कहा कि बहुत सारे बदलाव आपके बच्चे के अंदर आ रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और इसके साथ साथ जिस भी परिवेश में वो है, जो भी उसके दोस्त सखा सहेली हैं, उनका उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे के मन में। वो इसलिए कि उसको लगने लगता है कि माता पिता उसे घर पर नहीं समझ रहे हैं, और माता पिता ये नहीं समझ रहे हैं कि अंदरूनी रूप से बच्चे के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। तो वो सारे अभिभावक, वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे 9 से 12 साल की उम्र में हैं और वो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आप अपने बच्चे के अंदर कोई बदलाव देख रहे हैं, यकीन मानिए उस बदलाव को बदलने से पहले आपको अपने बच्चे को जानना जरूरी है, उसकी परेशानियों को जानना जरूरी है। एक बार परेशानी समझ में आ गई ना, एक बार बच्चे को आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि आप उसे समझ रहे हैं, यकीन मानिए ये दौर भी गुजर जाएगा। और जब बच्चा आपका 13 साल की उम्र यानी कि टीनेजर की ओर प्रवेश करेगा तो आपका सच्चा मित्र बन जाएगा, आप उसके सच्चे मित्र बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए, खास तौर पर इस दौर में। अब दोस्त बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने दें, लेकिन उसे बार बार बात कीजिए ना। कहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, हम दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी गलती कर क्यों ना आए, उसके आगे शीश झुका देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं हाँ हमसे गलती हुई। तो माता पिता से ज्यादा अच्छा दोस्त कौन हो सकता है, वो कौन हो सकता है जिसके सामने हम ये कहें कि मुझसे गलती हुई है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया के सामने एडमिट करने से पहले हमारे सामने एडमिट कर दे, हम कम से कम कोई रास्ता तो निकालेंगे। यही बात, एक बात जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका। कौनियाल प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद हमारे एकदम उस्ताद हैं। जीवन के हर पड़ाव में हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी अपने बचपन से सीखा, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपने बच्चों के बचपन से सीखते हैं, क्योंकि जिस युग में हम थे वो अलग युग था, आज जिस युग में हैं ये अलग युग है। आज बच्चों के पास सब सुख सुविधाएं हैं, सब गैजेट्स हैं, उनके पास ऐसे दोस्त हैं जो उनसे खुलकर हर विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन अभिभावक यानी कि पेरेंट्स होने के नाते कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ छूट सा रहा है। हमारे बच्चे हमारे अपने नहीं हैं, वो हमसे खुलकर बात नहीं करते हैं, वो हमें नहीं बताते हैं, उनके बारे में कोई और हमसे बताता है, वो टेलीफोन पर या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, क्या हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं? वर्किंग पेरेंट्स के साथ तो ज़्यादातर ये दिक्कत देखी गई है कि उनके पास जीवन जीने कि हर सुख सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए सब सुख सुविधाएं उन्होंने अर्जित की हुई हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है उनके पास तो वो है अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। हाँ, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर वो ज़रूर टीचर से शिकायत सुन सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वहाँ डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद जानते

हैं कि वो अपने बच्चे को जानते ही कितना है, हम अपने बच्चों को जानते ही कितना है। एक लालसा, एक ललक हमारे बच्चे को अंधेरे में जाने से रोक सकता है। जिंदगी के हर पड़ाव में, मैं कहती हूँ हर पड़ाव में, जब बच्चे हैं तब भी, जब जवान हो जाएंगे तब भी, फिर एक ऐसी उम्र में पहुंचेंगे जहां घर गृहस्थी खुद की फैमिली होगी वहां भी, और फिर उम्र के एक ऐसे पड़ाव में जो अंतिम पड़ाव होगा वहां भी, अगर कोई सबसे ज्यादा हमारा साथ दे सकता है तो वो है सिर्फ हमारे माता पिता, क्योंकि वो हमारे जनक है, हमारी जननी है, और उनसे बेहतर हमें कौन समझ सकता है। लेकिन हम उम्र के उस पड़ाव की बात कर रहे हैं जहां आज बच्चे कुछ खोए खोए से नजर आते हैं। हाँ, बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं कि एक युग था कि बच्चे कैसे बड़े हो जाया करते थे, पता ही नहीं लगता था। लेकिन आज पेरेंटिंग इसलिए मुश्किल हो गई है कि माता पिता को पल पल सजग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक बच्चे समझदार नहीं हो जाते। 9 से 12 साल की ये जो उम्र है ये इसलिए कष्टदायी है क्योंकि बच्चे को खुद भी नहीं पता होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों उसमें बदलाव आ रहे हैं, और आप भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ये बदलाव आ रहे हैं। आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि शारीरिक रूप से बच्चे के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। आज एक समय होता था कि जब हम प्यूबर्टी के बारे में बच्चों से बात नहीं करते थे, हम यौवन आरंभ के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में अर्ली प्यूबर्टी होनी शुरू हो गई है। और प्यूबर्टी अपने आप में एक समस्या नहीं, ये जीवन जीने का एक मार्ग है जो हम आगे चलकर अपने बच्चों को इससे अवगत कराते हैं। लेकिन जब 9 से 12 साल के बीच में यौवन आरंभ हो जाता है तो बच्चे को खुद भी समझ नहीं आता, लेकिन उस वक्त हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस देखे जा सकते हैं। या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट कर रहा होता है, आपकी बात नहीं सुनता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यानी कि वॉलेंट हो जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत जब वो अपने दोस्तों के बीच होते हैं तो उनका व्यवहार एकदम अलग होता है, क्योंकि उन बच्चों को लगने लगता है कि उनके माता पिता उनको नहीं समझ रहे, और आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको नहीं सुन रहा। वो अपने दोस्तों में ही आनंद यानी कि सुख ढूंढने लगता है, क्योंकि वो जो भी बात अपने दोस्तों को बताता है या उनसे जो कुछ भी नई बात सीखता है, अर्जित करता है, उसे लगता है कि वही पत्थर की लकीर है। तो जड़ है ये समय, ये समय जो अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा जब यौवन आरंभ होता है इस अंतराल में, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगते हैं। स्किन ऑयली हो जाती है, शरीर पर छोटे छोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे शारीरिक रूप से पुष्ट होने लगते हैं। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं इसका अर्थ ये है, आप जानते हैं कि बच्चा 9 से 12 साल की उम्र में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता हर बच्चे में ठीक 9 साल में ही ये बदलाव आएंगे, 10 में आएंगे, किस हर बच्चे में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन आपके लिए संकेत है कि अगर बच्चा व्यवहारिक रूप से कुछ भिन्न व्यवहार कर रहा है और उसमें ये फिजिकल चेंजेस भी आप देख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि अब आपकी सहनशीलता की परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। आपका बच्चा समय के साथ साथ आपकी सहनशीलता मांग रहा है, आप का पेशेंस मांग रहा है, अब आप पर और आपके बर्ताव पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से डील करते हैं। गीतिका का ज्ञान यहाँ पर इसलिए नहीं कि आपको यहाँ डराया जाए, लेकिन सच्चे दोस्तों के लिए, सच्ची दोस्ती निभाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पेरेंट्स भी ना एक दूसरे से बात करें। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें तो यूं ही हो जाती हैं, और कभी कभी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट को क्लू मिल जाता है। तो आइए ना इस दोस्ती को और भी ज़्यादा पुख्ता करें, और एक दूसरे के बच्चों में गलतियाँ निकालने से बेहतर ये होगा कि हम एक दूसरों के बच्चों को समझें और उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन, एक रास्ता दें कि मैंने ऐसे किया, हो सकता है तुम्हारे साथ भी ये कारगर साबित हो। वी आर नॉट हियर टू जज, वी आर हियर टू लिव।

और समय हुआ है 2:31 में हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीता का अनियाल प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं प्री टीन्स के बारे में। प्री टीन्स कौन होते हैं? वो बच्चे जो 9 से 12 साल की उम्र में हैं और उनका टीन यानी कि 13 शुरू होने वाला है कुछ समय बाद। 9, 10, 11, 12 ये 4 साल बहुत अलग होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन अगर अपने घर के बच्चों का इस दौरान हमने ख्याल रखा तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे में एक सकारात्मक ऊर्जा देखते हैं आने वाले समय में, यानी कि जब वो टीन्स में प्रवेश करता है तो उसके लिए ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम मान कर चलते हैं कि टीन हो गए हैं अब तो दुनियादारी देखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दुनियादारी दिखाने से पहले बच्चों को समझाना होगा कि दुनिया होती कैसी है, और दुनिया को जानने से पहले हमें अपने बच्चों को जानना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा कि वो क्या हैं और आगे वो जीवन में क्या फेस करने वाले हैं। तो ये जीवन का, आपके बच्चों के जीवन का, आपका भी बहुत अहम पड़ाव है, क्योंकि इस वक्त शारीरिक बदलावों के साथ साथ बच्चे के अंदर बहुत सारे सामाजिक और भावनात्मक बदलाव भी आते हैं। आप जो कह रही हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन जो दोस्त ने कहा वो सही हो सकता है। इस दौर में मिस्टर कूल या मिस हैपनिंग कहने का और अपने आप को कहलवाने का जो चाहत होती है ना, वो बच्चों के अंदर बढ़ जाती है। मैंने कहा कि अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, इसका भी कारण फिजिकल चेंज ही है, हार्मोनल चेंजेस ही हैं। एक तो शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चे का दायरा, बच्चे का परिवेश और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। घर के साथ स्कूल और जिन भी एक्टिविटी क्लासेस में वो जाते हैं, जो भी उनके दोस्त बनते हैं, तो वहाँ दायरा बन जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी कोई बच्चा अगर बहुत खूबसूरत है देखने में तो सारे दोस्त उसके, सहेलियाँ उसके कहने लगते हैं, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो परी हो, तुम तो फेरी हो। कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ना ये भावना आने लगती है, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझ में बहुत कुछ अच्छा है, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। देखिए, बहुत बहुत बहुत अहम मुद्दा है ये। अगर हम बच्चों की ज़बानी सुने तो आपको लगेगा अच्छा, बहुत ही साधारण सी बात है। ये एक छोटी सी बात जब दिल में घर कर जाती है, जब बच्चे का ध्यान अपने ऊपर यानी

कि अपनी पढ़ाई से अलग, अपनी एक्टिविटी से अलग, अपने ऊपर ज्यादा आने लगता है। इसका मतलब कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, और इन चेंजेस में उसके साथियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उनके आगे वो अपने आप को सबसे कूल, सबसे हैपनिंग, सबसे अच्छा दिखाना चाहता है। आप बहुत सारे पेरेंट्स देखा होगा कि जो बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं तो बच्चे खुद चॉइस करते हैं कि हम ये पहनना चाहते हैं। घर पर आने के बाद 10 बार उन कपड़ों को बदलते हैं, उनको पहनते हैं, उनको देखते हैं, अपना हेयर स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं वो इस सोसाइटी से, समाज से अलग ना हो जाएं। हर कोई उनको यही मानता है कि वो दी बेस्ट हैं, और अगर वो दी बेस्ट नहीं भी होते अपने दोस्तों के हिसाब से तो अपने आप को दी बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। माता पिता को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो यही कहते हैं चुपचाप से पढ़ो, स्कूल जाओ, घर आओ, ट्यूशन क्लासेस जाओ, एक्टिविटी क्लासेस जाओ, बस तुम्हारा इतना ही काम है, हम तुम्हारी फीस भर रहे हैं। ये सब बातें कहते हैं ना बच्चों को। कभी ये जानने की कोशिश की है कि अगर वो बच्चा आपका मिस्टर कूल या मिस हैपनिंग या मिस ब्यूटिफुल बनना चाहता है, चाहती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? हम कभी नहीं पूछते ना, कभी नहीं पूछते अपने बच्चों से कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बच्चा पीयर प्रेशर के तले अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि बच्चे कहीं ना कहीं ऑपोजिट, जी, अपने ऑपोजिट फ्रेंड यानी कि गर्ल टू बॉय या लड़की लड़कों की तरफ, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। इस दौर में शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं और शारीरिक के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी हो रहे हैं। अच्छा दिखना और अट्रैक्ट होना ये एक स्वाभाविक बात है। आप इसको अन्यथा बिल्कुल न लें कि बच्चा ऐसे कैसे सोच सकता है। आप पत्थर की लकीर मान लेते हैं, बना देते हैं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों को सोचने की। अगर आप ये बात मानते हैं ना, तो आपको अपने बच्चे की लाइफ को ना, यानी कि उसकी एक्टिविटीज को लिमिट करना होगा, उसे घर पर रखना होगा, उसके दोस्त, उसके जितने भी परिवेश में या स्कूल में आसपास जो भी लोग हैं जिनसे वो बात करता है, वो टेलीविजन देखता है, इंटरनेट देखता है, गाने सुनता है, आप उन सबको बंद करना होगा, क्योंकि परिवेश, क्योंकि समय ऐसा है, वो रूबरू हो रहा है उन तमाम तत्वों से जो कहीं ना कहीं उसके मन की इस जिज्ञासा को, सबसे अलग, सबसे सुंदर दिखने की इस चाहत को, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होने की ये जो चाहत है, कहीं ना कहीं ये जन्म ले रही है उसके शारीरिक बदलावों से। और वो बदलाव शारीरिक भी हो सकते हैं, वो बदलाव इमोशनली भी उनका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स देखे जा सकते हैं। कभी वो आप बहुत खुश है तो आकर आपको गले लगा लेता है, प्यार करता है, और कभी आपके प्यार करने पर भी ना चिढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके कहीं ना कहीं शरीर के या दिमाग के किसी कोने में कोई बात उसको खटक रही होती है। स्कूल में, कॉलेज स्कूल में किसी बच्चे ने कुछ कहा होता है, कोई बात उसको चुभ गई होती है, तो वो अन्यथा यानी कि अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। इमोशनल सेंसिटिविटी बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर अंत में माता पिता के साथ लड़ने लगते हैं, क्योंकि माता पिता ये नहीं जानते कि वो किस दौर से गुजर रहा है। हम सब कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रेशर्स हैं। मैं ये कहती हूँ आज के दौर में ना बच्चों के पास ही बहुत प्रेशर्स हैं। मानती हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होंगे, हमारे लिए बहुत छोटी बात है, पर प्रेशर प्रेशर्स हैं, और इन्हीं प्रेशर्स की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हमें अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज से बचाना है, हमें उन्हें बचाना है कि वो आत्मघाती ना हो, क्योंकि उनका ये बदलाव जो निश्चित है पहले से ही, जो होना लाजमी सी बात है, इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा, तैयार करना होगा कि हम अपनी सेंसिटिविटी को दिखाएं, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, जहाँ गलत है उसे बोलें गलत है, लेकिन इस प्यार से कि उसको समझ आ जाए।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

बिल्कुल, नाचने दीजिए, उड़ने दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी आसान हो जाता है अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करना, और उनके लिए भी आसान हो जाता है ये समझना कि माता पिता उनके सच्चे मित्र हैं। तो सच्चा मित्र बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे का। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों के साथ खूब सारा संवाद करें, खूब सारी बातें करें, और बातों ही बातों में जानने की कोशिश करें कि आखिरकार परेशानी क्या है। प्री टीन शुरू होने से पहले ही ये सिलसिला हमें शुरू कर देना चाहिए अपने बच्चों से बात करने का, जब भी वो स्कूल से वापस घर लौटें या फिर जब शाम को आप घर वापस लौटें, तो आप अपना समय निर्धारित करें कि इतने घंटे या इतने समय हम अपने बच्चों के साथ सिर्फ बात करेंगे। और प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन को ना आप कहीं छुपा कर रख दीजिएगा, उसे साइलेंट मोड पर डाल दीजिएगा, जिससे कि जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हों तो आपके और आपके बच्चे के दरमियाँ कोई भी ना हो। यही कहते हैं ना, जब किसी से मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारे और मेरे दरमियाँ कोई नहीं आ सकता, वैसे आपके और आपके बच्चे के बीच जब संवाद होता है तो उसके दरमियाँ भी कोई नहीं आना चाहिए। अच्छा, बात तो हम करते हैं, हम सभी पेरेंट्स करते हैं। अगर मैं पूछूंगी तो यही मैसेजेस आएंगे कि हम रोज़ अपने बच्चों से बात करते हैं। बात किस तरीके से करते हैं? आप बात ये सोच कर करते हैं कि आप माता पिता हैं और आपके बच्चे का फ़र्ज है आपको सारी बात बताना, या इस तरह से करते हैं कि बच्चे को ये महसूस भी ना हो कि आपसे कुछ जाना जा रहा है, पूछा जा रहा है, और वो बेबाक होकर आपको सारी बात बता रहा है? ऐसा तब होगा जब आप अपना हृदय परिवर्तन करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कुछ कहा नहीं और आपने उसको डांटना शुरू कर दिया, उसकी गलतियां बतानी शुरू कर दी। ऐसा भी नहीं कि जब वो गलती कर आए और कहे कि मुझसे गलती हो गई तो आपने कूल पेरेंट्स बनने के लिए उसको हंस कर टाल दिया और हंस के जवाब दे दिया। बातों का सिलसिला तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि बात भी हो जाए और परेशानी भी पता लग जाए। तो जब आपका बच्चा आपके साथ आपसे आपके कहे बिना आपको कोई बात बताने लगे, तो समझ जाइएगा कि वो जो दीवार जो खाई थी

वो तो आपने गिरा दी है, उस खाई को आपने खत्म कर दिया है और बच्चा अब आपसे बात करने के लिए एकदम तैयार है। मुझे याद है कि कैसे हम स्कूल से घर पहुंचते साथ ही अपना बैग कहाँ गया, कहाँ गिरा, कहाँ घर में रखा हमें याद ना होता था। हम घर जाते साथ ही सबसे पहले माँ को ये कहते थे कि आज ये हुआ। जब बच्चे को ये आदत हो जाती है पूरे दिन का शेड्यूल बताने की, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा, उसने सॉरी कहा, मैंने थैंक यू कहा, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा आप पर पूर्ण रूप से निर्भर है अपने इमोशंस के मामले में, क्योंकि ये उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहां भावनात्मक रूप से आपका बच्चा सिर्फ आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना किसी बाहर वाले पर। माना कि दोस्त बहुत प्यारे होते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, उनसे बातें करना हर बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अपनी हर छोटी बड़ी बात। लेकिन जब बच्चा परेशानियां दोस्तों को बताए, क्योंकि दोस्त भी तो उसी उम्र का है, और आप सोच लीजिए कि जब दोस्त उसी उम्र का है तो वो आपके बच्चे को क्या गाइडेंस देगा, क्या रास्ता दिखाएगा। रास्ता दिखाना तो काम आपका है, तो बस बच्चा दोस्तों को बताएगा ज़रूर, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आपको बताए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे के लिए एक वो ऐसा तारा है जो हमेशा चमकता हुआ नज़र आना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है, आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए। बस वो जो संवाद की कड़ी है ना, वो नहीं टूटनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। हर एक चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी जनाब, वक्त बदल रहा है, आप बदलिए। आप बदलेंगे तो आपका बच्चा उस तरह से नहीं बदलेगा जिस तरह से ये दुनिया उसे बदलना चाहती है। आपका बच्चा बदलेगा तो एक तारे सितारे के रूप में।

वैसे तो आसमान में बहुत सितारे हैं और हर तारा बेशकीमती है, लेकिन आपके हिस्से का आसमान और आपके हिस्से के तारे आपके अपने हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने हिस्से के तारों को किस तरह से संजो के रखते हैं। फिलहाल गीतिका आपसे लेती है यहाँ पर इजाजत। 3 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर का पुनः प्रसारण और फिर 4:05 से आपका टेस्ट शुरू होगा, यानी कि रेनबो जीनियस बनने की तैयारी। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर, हमें हरदम हर पल।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, बिल्कुल खुश होंगे, और यही तो हमारी चाहत है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसीलिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसको आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। साथ ही साथ इसे आप सुनते हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आज स्वागत कर रहे हैं अपने स्टूडियो में जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस नई दिल्ली के फाउंडर, डायरेक्टर और चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर शिव सरीन जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर रेडियो डॉक्टर में आपका, और नमस्कार।
2: थैंक यू शालिनी एंड थैंक यू आकाशवाणी मुझे बुलाने के लिए रेडियो डॉक्टर में।
1: थैंक यू, आप हमारे श्रोताओं के लिए आज समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। बता दें अपने श्रोताओं को कि सर जो है स्वास्थ्य के शिक्षाविद भी हैं, और आपको आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा पाएं। आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप फोन नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर दूंगी, आप दोनों माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे प्रश्न कर सकते हैं। फोन नंबर मैं एक बार बता देती हूं, 011-2342-1082, 2342-1082। व्हाट्सएप पर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9868107070 पर। आप क्योंकि लिवर के एक जाने माने स्पेशलिस्ट हैं, आपको सब जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे अर्जुन?
2: एक दिन से जिंदगी नहीं बदलती, हर रोज कदम लेना पड़ता है। जैसे आपको अगर कहीं पहाड़ी पे जाना है तो उससे पहले गाड़ी इंजन सब तैयार रखते हैं, टायर में हवा है या पेट्रोल ठीक है। तो इसी तरह से जिंदगी की शुरुआत की जो जर्नी है उसमें ये देखें कि मेरी सारी चीजें ठीक हैं तो मैं आगे चलूं, और हर रोज एक कदम लेना पड़ेगा, एक कदम से काम नहीं। इसलिए वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल, हर महीने 19 तारीख याद रखिए, तो 12 बार तो वैसे ही याद हो जाएगा। हर महीने की 19 लिवर के लिए जरूरी है, और वर्ल्ड लिवर डे एक बार का इवेंट नहीं है, हर रोज का इवेंट है। अपने आप में रोज इन्वेस्ट करिए और लिवर को ठीक रखिए।
1: जी, तो ये डॉक्टर साहब का मैसेज रहा। अभी पूरा कार्यक्रम बाकी है, आप लोगों को रहना है हमारे साथ 4 बजे तक, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस वर्ष की थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रांग लिवर। इस पर भी बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये थीम क्या है, व्हाट आर सॉलिड हैबिट्स?
2: सॉलिड हैबिट्स बहुत अच्छा थीम है। आप अगर देखें, याद करें कि हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्या सॉलिड हैबिट्स थी। हैबिट्स उनकी थी कि भाई रोज चलना है, कितना चलना है, दूसरा खाने में कितना पोर्शन लेना है, और व्रत रखना है, संयम रखना है, फास्ट करना है। सॉलिड हैबिट्स का मतलब है कि हैबिट का मतलब ये है कि जो चीज़ रिपीट होती हो, एक दिन की वो नहीं है, वो सिर्फ एक क्षणिक चीज़ नहीं है। तो हैबिट ऐसी हो जो सॉलिड हो और आपको सॉलिड बनाए। सॉलिड कैसे बनेंगे? लिवर को सॉलिड बनाएंगे, हैबिट को सॉलिड रखेंगे, जीवन सॉलिड होगा।
1: जी, तो सॉलिड जीवन के लिए लिवर को सॉलिड रखना है, सर ने बोला है। कैसे सॉलिड रखेंगे? बिल्कुल अभी आपको जानकारी पहुंचने वाली है भाई, आप हमारे साथ जुड़िए। फोन लाइंस खुल गई हैं, व्हाट्सएप मैसेज बॉक्स खुल गया है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं?

जुड़िए हमारे साथ 2342-1080, 2342-1082 हमारे नंबर्स हैं। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव सरीन, निदेशक यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और हमारे साथ हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर शिव सरीन। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर। मैडम जी,
0: जी नमस्कार, स्वागत
1: तो आपका। डॉक्टर साहब को नमस्कार, थैंक यू। मैडम जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव कुकनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: जी जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
1: मैडम जी, पिछले साल मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था लीवर का, तो उसमें ग्रेड 2 फैटी लीवर बताया गया था। अभी दुखता है कई बार, जैसे कई बार सांस लेना तो यहाँ छत्ती में से और लेफ्ट साइड में दुखता है। और दूसरी बात है, मेरा भाई है उसको भी ग्रेड 1 का फैटी लीवर आता है अल्ट्रासाउंड में, वो उसको भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, काफी दवाइयां खा ली भूख की गाँव में से भी और वहाँ लोकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में वहाँ से भी। तो आप बताइए जी, क्या किया
0: जी? जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी
2: देखिए, करनाल वालों को तो वैसे स्वस्थ रहना चाहिए, वो तो घर का खाते हैं और अपना काफी वर्जिश भी करते हैं। आपको फैटी लिवर हुआ है, उसके दो कारण ध्यान से समझें। अगर माता पिता को शुगर है, बीपी है, हार्ट डिजीज है, कोई कैंसर है, तो आपको वो उनके जीन्स मिले होंगे, पहला काम। अगर हैं तो आपको ध्यान से रहना है और आपके बच्चों को भी। दूसरा, अगर फैटी लिवर आपकी आदतों से हुआ है, मतलब आपने इनकम ज्यादा करी, खर्चा कम किया, खाना ज्यादा खाया, मक्खन मलाई ज्यादा ली, मीठा ज्यादा लिया, तो वो सारा जमा हो जाएगा। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है। दूसरे को आप बदल सकते हैं, पहले को नहीं बदल सकते। और फैटी लिवर ग्रेड 2 को जरूर ध्यान से लेना है, इग्नोर नहीं करना। ग्रेड 2 को ग्रेड 1 करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना लिवर, एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका, अगर आपने ज्यादा कमाई की तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए खर्चा ज्यादा, कमाई कम, वजन घटाना है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। और दूसरे जिनका ग्रेड 1 है, उनको तो बिल्कुल ठीक होना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, फैटी लिवर को निकालना है।
0: जी, फैटी लिवर बहुत आजकल हो रहा है, हम बहुत आम सुन रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और जानकारी थोड़े आगे कार्यक्रम में हम जरूर चाहेंगे डॉक्टर साहब बताएं, पर हमारे श्रोता क्योंकि फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते,
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
2: नमस्ते,
3: मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, लिवर, जैसे लिवर में गर्मी हो गई है, तो लिवर को सही रखने के लिए क्या करें और उसका चेकअप कैसे करवाएं कि लिवर सही है और खराब है?
2: देखो, जैसे अपने दिमाग पे गर्मी चढ़े तो आप ठंडा पानी डाल लो, सिर पे एक ठंडा तौलिया लगा लो, वो तो ठंडा पहुंचा देता है। लिवर को भी ठंडा करने का आसान तरीका है। ठंडा का मतलब है कि आप उस पर बोझ ही ना डालो। बोझ नहीं डालेंगे आप, लिवर को हल्का रखेंगे तो लिवर में गर्मी नहीं आएगी, मतलब खुराक कम लेंगे, जितना खाना आपको खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, और शुगर, चीनी वाली चीजें कम करेंगे, और फैट, चर्बी वाली भी कम करें, तो लिवर में गर्मी नहीं आएगी। और हाँ, उसको चलाने के लिए कई और काम, जैसे हलासन कर सकते हैं पेट की गर्मी को निकालने के लिए, लंबा वॉक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल पॉजिटिव आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और जो डॉक्टर साहब बताएंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान,

0: उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना सर?
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए, बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं, और अभी फैटी लिवर की बात हो रही थी, हमारे एक श्रोता ने फैटी लिवर के बारे में पूछा था, तो मैसेज आया है डॉक्टर साहब, परिधि हैं दिल्ली से लिख रही हैं, नमस्ते शालिनी जी एंड डॉक्टर सरीन, थैंक यू टू रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स एंड कनेक्टिंग अस टू द रिनाउंड डॉक्टर्स एवरी डे। माई क्वेश्चन इज इट कॉमन टू हैव फैटी लिवर एट अ एज ऑफ 30 ईयर्स, वॉट आर इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स?
1: अरे जी बहुत अच्छा है, दिल्ली में आप जैसे अगर नागरिक रहेंगे तो दिल्ली वाले स्वस्थ हो जाएंगे। 30 पे फैटी लिवर है और आपको इसकी जानकारी है, आप भाग्यशाली हैं। अगर आपको नहीं पता लगता शायद 40 या 45 पे, तो हो सकता था और बीमारियां आ जाती जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह। इस समय फैटी लिवर होना अनकॉमन नहीं है। दिल्ली के हमने करीब 18 से 25 साल के 40,000 से ज़्यादा यंग एडल्ट्स को स्क्रीन किया, एंड बिलीव मी 28% लोगों के अंदर फैटी लिवर निकला, और उससे ज़्यादा अगर एज में जाएंगे तो लगभग 1 in 2 को फैटी लिवर मिलता है। चिंता की बात यह है कि लोगों को पता होता है और कहते हैं क्या करना है साहब, उसके भी तो फैटी लिवर है, उसके भी फैटी लिवर है। हेयर इट इज नीडेड, माइंड सेट हैज टू चेंज। अगर आपके घर में, इंस्टीट्यूशन में कहीं जरा सी आग लगती है तो तुरंत भागते हैं, फायर अलार्म। थिंक दैट फैटी लिवर इज ए फायर अलार्म फॉर कमिंग बैड डिजीजेज लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड मैनी अदर्स। सो रिमेंबर, फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना है। आज का दिन, 19 अप्रैल का दिन याद रखते हुए फैटी लिवर के लिए चैलेंजेस को ओवरकम करना है।
0: जी, पर डॉक्टर साहब, फैटी लिवर पहले इतना नहीं सुनने में आता था, क्या अवेयरनेस नहीं थी, होता नहीं था, कि अब बढ़ गया है, कोई कारण है इसका?
1: हाँ, अब डेफिनेटली बढ़ गया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि मोटापे की संख्या पहले भारत में कम थी, अब लगभग 10 में से 3 या 4 लोगों को मोटापा है। इसी तरह फैटी लिवर की भी इंक्रीज हो गई है। तो जो जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा दुख जिसे मिला है वो लिवर को है, तो लिवर की डिजीजेस बढ़ने लगी हैं। दूसरा, अवेयरनेस भी हुई है। मैं बहुत खुश हूं एज ए डॉक्टर कि आप लोग फैटी लिवर की स्टेज को डायग्नोस कर पाएं और डायबिटीज को आप बचा लेंगे। जो ही फैटी लिवर ठीक हुआ, डायबिटीज प्रोबेबली नहीं होगी।
0: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, कॉलर है हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार शालिनी जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ।
0: नमस्कार, स्वागत मिसेस बेदी कार्यक्रम में।
2: मैं शालिनी जी, एक गिला है, बहुत देर की मेहरबान थे आते कहाँ खुश, और डॉक्टर साहब बहुत नमस्कार आपको।
1: नमस्कार।
2: जिस लाइटर वेट में आप हमें जवाब दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 76th ईयर में हूँ और 36 साल से डायबिटिक हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, ना मैं जंक फूड खाती हूँ ना कुछ, मतलब नॉर्मल डाइट खाना भी एक टाइम रात को खाती हूँ, वैसे सैलेड्स वगैरह खाती रहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ मुझे क्या नहीं खाना चाहिए कि मेरी डायबिटीज भी ठीक रहे।
1: देखिए, अभी तो आपको 24 साल और निकालने ये तो हिंदू धर्म है और हिंदू का ये धर्म है कि शतायु भवो, तो होना ही पड़ेगा आपके। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, दांत असली है कि दांत नकली है?
2: 6-7 इम्प्लांट पड़े हुए हैं,
1: बाकी तो असली है ना। हड्डियां भी ठीक रखनी है आपने, हड्डियां हाँ। भी ठीक रखनी है। डायबिटीज में 2-3 चीजें जो बिगड़ जाती हैं, एक तो लिवर सबसे पहले, और दूसरा हड्डियां हैं और बाकी चीजें। पर याद रखिए, अगर आप शरीर को चलता फिरता रखेंगे, हरकत रखेंगे, तो बरकत ही बरकत रहेगी। नहीं क्या खाना है क्लियर है उसके अंदर आपके लिए। आपको शुगर की चीजें डेफिनेटली मना की हैं, नट्स आपको ऐड करने हैं खाने के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी।
0: हमारे पास मैसेज भी आया है, मैं अभी देख रही थी, तो भी फूड के बारे में ही बात कर रहे हैं। हेमंत जी हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज बताइए कि कौन सा फूड लिवर को हैप्पी रखता है एंड व्हाई फैटी लिवर अकर्ड। तो वही आप कुछ अभी बता रहे थे कि कौन से
1: फूड अच्छे रखते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं या लिवर को हैप्पी रखे। देखिए, लिवर हैप्पी रहेगा, लिवर को प्यार करेंगे, संभाल के रखेंगे, तो आप भी हैप्पी रहेंगे। हर रोज सुबह उठेंगे, यार क्या बढ़िया दिन है आज, आज तो बहुत खुश मिजाज हूँ मैं। इसलिए लिवर आपकी इम्यूनिटी को, आपके रंग रूप को, गोरे रंग को, सबको बनाए रखता है। लिवर के लिए हैप्पी रहने के लिए जरूरी है कि आप अनकुक्ड फूड खाएं, मतलब आप ओरिजिनल फूड खाएं, उसको चेंज करके ना खाएं। जैसा नेचर ने बनाया है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं डेफिनेटली, जितनी ज़्यादा ग्रीन या रेड होगी उतनी अच्छी होगी। लो शुगर के फ्रूट्स लें, जैसे आपका सेब है, अमरूद है। खाने में बहुत सारे प्याज, लहसुन जो हम भूल जाते हैं, मूली है।

0: है, टमाटर है, गाजर, ये सारे लीवर के लिए अच्छे। स्पेशली जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें है कच्ची हल्दी, कच्ची मरी हुई नहीं, कैप्सूल बना के नहीं, निचोड़ के नहीं, पीस के नहीं, कच्ची हल्दी। या आप वॉलनट्स ले सकते हैं, लस्सी बहुत लीवर के लिए अच्छी है। और हाँ, मिलेट्स जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा, जिसमें कि लो शुगर रिलीज है, ये सारे लीवर के लिए हेल्दी फूड है। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी फूड है कि कम खाएं, जितनी पेट में जगह हो उसका 60% 50% ही है, बाकी छोड़ दें। और साथ में पानी ना पिए,
1: साथ में पानी नहीं पीना है।
0: बिल्कुल।
1: और पानी कितना पीना चाहिए डॉक्टर साहब?
0: पानी दिन में जितना, लगभग 2 से 3 लीटर तो पी ही लेना चाहिए, पर खाने के 1 घंटा पहले तक लें, खाने के 1 घंटे बाद तक बिल्कुल पानी ना लें, क्योंकि खाने को हजम होने के लिए एसिड का होना जरूरी। एसिड से खाना टूटता है, पचता है। पानी पियेंगे तो फट से नीचे चला जाएगा पेट से, आंतों में, बिना हजम किए, वो खाना फायदेमंद नहीं रहेगा, वो सारा जंक फूड ही हो जाएगा।
1: पर जितनी प्यास लगे उतनी ही।
0: ना जितनी प्यास लगे उतनी।
1: जी, हमारे साथ एक कॉलर है हमारे फोन लाइन पर। हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मुझे 10 साल से मेरा लीवर फैटी है और मेरे अभी इस टाइम 6 महीने से हाथ पैरों में कंपन होती है। क्या ये लीवर की वजह से होती है, कोई
0: आपने
2: और कारण है?
0: ब्लड प्रेशर चेक कराया, बीपी?
2: ब्लड प्रेशर वही तो मेरा सब ठीक है। कल मैं सीटी स्कैन करवाने गया था
0: हाँ
2: लीवर
0: जी,
2: का,
0: हाँ।
2: तो आप आज आपका प्रोग्राम था तो उसकी तो रिपोर्ट आई नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कंपन जो हो रहा है पैरों में उसी की वजह से हो रहा है?
0: देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, मुझे लगता है कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, जो लीवर अगर 10 साल से फैटी है तो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हो सकते हैं। उनका ध्यान करें, बराबर सुबह शाम बीपी थोड़े दिन चेक कराएं, हाथ में कंपन के लिए जरूर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। लीवर से नहीं है, पर लीवर में फैट होने से बाकी बीमारियां होती हैं, इस कारण जरूरी है। मैं एक सिंपल, जैसे लीवर के अंदर फैट है तो लीवर से उसके अंदर मरीज करीब 2 से 5% की डेथ होती है साल में, पर लीवर की फैट से हार्ट डिजीज 15% लोगों की डेथ होती है। मतलब जिसकी डेथ हार्ट डिजीज से हुई है वो 15% लीवर के कारण हुई।
1: डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे आपने शुरू में भी बोला कि लिवर अगर खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, तो लिवर इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे और बीमारियां
0: हाँ,
1: हो सकती
0: मैं
1: हैं?
0: सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे अगर आपके लिवर में 5 पैसा फैट है, 5% फैट है, तब तक तो लिवर हेल्दी है। मतलब 1500 ग्राम का लिवर होता है, उसका 5%, मतलब 75 ग्राम तक लिवर में फैट हो सकती है। पर अगर 10% हो जाए, 150 ग्राम तक लिवर के अंदर फैट हुई, तो बिगड़ जाता है, काम का नहीं। ऐसे लिवर में क्या खराबी हुई, जो लिवर का सेल है उसमें इंसुलिन नहीं घुस पाती, और इंसुलिन के बिना हम जो खाते हैं उसको एनर्जी में नहीं बदल सकते। तो इंसुलिन की जरूरत हुई, और इंसुलिन बनाई, थोड़ी और इंसुलिन बनी, क्योंकि लिवर के अंदर एनर्जी बनानी है, और धीरे धीरे पैंक्रियाज थक जाता है और डायबिटीज बन जाती। और लिवर में जो फैट है वो लिवर में नहीं रहती, लिवर से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के खून में आती है। आप टेस्ट कराते हो, जी मेरी शुगर ज्यादा है, आप देखते हो मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आया कहाँ से? वो सारा लिवर से आया, और इसलिए ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और ब्रेन के ट्यूमर्स, पेट के ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे लिवर की फैट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है।
1: तो मतलब ये बाकी अंगों को भी प्रभावित इतना ज्यादा करता है? नहीं तो जैसे एक आम धारणा होती है कि आज लिवर पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, लिवर को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे, लेकिन अगर और बीमारियां भी हैं तो उनका भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं यहीं
0: निश्चित
1: पर है।
0: रूप से है, निश्चित रूप से
1: जी।
0: बहुत बड़ी लार्ज स्टडीज के अंदर है। अच्छा, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, वो भी लिवर से है। लिवर में चर्बी थी, चर्बी निकली, पित्त के जरिए गॉल ब्लैडर में गई, वहां उसने स्टोन बनाया। तो हर गॉल ब्लैडर स्टोन वाला, हर डायबिटीज वाला, हर बीपी वाला, हर शुगर या आपके हार्ट प्रॉब्लम वाला, सब अपना लिवर चेक कराएं, बच्चों के लिए अपना खानदान को ठीक रखें।
1: क्या ये, जैसा आप कह रहे हैं खानदान को ठीक रखें, तो क्या ये आगे भी पास होती है? क्या ये
0: हाँ,
1: जेनेटिक्स से रिलेट हो जाती है?
0: बहुत स्ट्रांगली जेनेटिक है। हाँ, मैं इसको सिंपल समझाऊं कि अगर माता पिता को शुगर है, फॉर एग्जाम्पल माता पिता दोनों ओवरवेट हैं,
1: जी।
0: ये बहुत बड़ी स्टडी करीब 70 लाख लोगों की अमेरिका से छपी 2024 में, कि अगर मदर और फादर दोनों ओबीज हैं तो करीब 93% बच्चे ओवरवेट होंगे। मतलब बच्चे की क्या गलती है भाई, उसने थोड़ी चुना था कि मुझे इस घर में पैदा होना, वो माता पिता ने पैदा कर दिया, तो अब वो बच्चा भी मोटा हुआ। वो बेचारा जब 5 साल तक का होगा, उसके हार्ट के अंदर फैट जमा होने लग जाएगी। अगर मदर फादर दोनों पतले हैं तो सिर्फ 3% बच्चे मोटे होते हैं। तो याद रखें, बच्चे पैदा ही नहीं करने, करने हैं जब मैं हेल्दी होऊंगा, नहीं तो नहीं करने, नहीं तो आप अपना तो करोगे, देश का भी नुकसान करोगे।
1: जी, तो ये प्रण तो आज लिया जा सकता है, आज का दिन बहुत खास है, वर्ल्ड लिवर डे है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीजें अपनाइए कि या तो आप खुद फिट हो जाइए पहले, उसके बाद आगे जो अपनी पीढ़ी को बढ़ाने की सोचिए, अदरवाइज दिस विल पास टू द जनरेशंस। ओके, हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
3: नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्कार।
3: मैंने डॉक्टर साहब ने लिवर के बारे में शुरू में बताया होगा ना, तो मैं थोड़ा कार्यक्रम लेट से सुना
1: जी। अब आप कहीं मत जाइएगा, सुनिए, अभी कार्यक्रम काफी बाकी है। कुछ पूछना है आपको?
3: हाँ, पूछना है
1: जी, पूछिए
3: डॉक्टर साहब। एक बात पूछना है सर।
0: जी जी, बताएं सर।
3: अच्छा, ये है कि जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि लीवर में तकलीफ हो रहा है, तो उसके लिए हम सामान्य आदमी को कैसे महसूस होगा कि हमारा लीवर कम काम कर रहा है?
0: आप अभी तो स्वस्थ हैं।
3: अभी तो सही स्वस्थ है सर। और दूसरी बात यह है कि जो बाजार में लीवर का टॉनिक मिलता है मेडिकल स्टोर में, तो वो कहाँ तक उसका यूज करना कहाँ तक ठीक है?
0: देखिए, अगर अभी तक स्वस्थ हैं तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, उस पर स्टैंप लगवा लीजिए कि आपका वजन ठीक है, आपकी कमर की नाप ठीक है, आपका 90 सेंटीमीटर या उससे कम कमर होनी चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं, लीवर में चर्बी होने की संभावना कम है। दूसरा, अगर आप थकते नहीं, काम पूरा अच्छे से कर लेते हैं, और आपका ब्लड टेस्ट में एक सिंपल टेस्ट होता है SGPT, जो करीब 20-30 रुपए में हो जाता है, तो SGPT नॉर्मल है कि नहीं। जैसे सबको हीमोग्लोबिन पता है कि जी मेरा खून जो है लाल है, हीमोग्लोबिन मेरा 15 है, उसी तरह SGPT का टेस्ट जो है वो कराएं। अगर वो 30 से कम है तो आपके लिए मतलब लीवर में कोई ऐसी सोजिश नहीं। एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा लें कि लीवर में फैट है या नहीं, तो एक बार ये पक्का हो जाए कि मेरा वेट ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरा SGPT नॉर्मल है, शुगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और मेरा लीवर हेल्दी है, उसके बाद में अब फिर आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी जिंदगी में लीवर को मुझे नहीं बिगड़ने देना है। बाजार के अंदर लिवर के टॉनिक मिलते हैं, कई चीजें मिलती हैं, पर उनका रंग रूप जो है ना वो काम का नहीं होता। लिवर का एक ही टॉनिक है, वजन कम, खुराक ठीक और डेली वर्जिश, और कोई लिवर के लिए टॉनिक नहीं है।
1: जी, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यंगस्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो कार्य रेडियो डॉक्टर करना चाहता है इतने सालों से वो हम अचीव कर रहे हैं कि अवेयरनेस ही हमारा उद्देश्य है, और हम कई सालों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और आज खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब ने समय निकाला है। ऐशानी लिख रही है दिल्ली से कि मैं 25 साल की हूं। नमस्ते शालिनी जी एंड डॉक्टर सरीन जी, बिग शाउट आउट टू शालिनी मैम फॉर होस्टिंग रेडियो डॉक्टर, और चलिए धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। लेकिन प्रश्न जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि क्या कुछ नए और एडवांस्ड प्रिकॉशनरी टेस्ट अवेलेबल हैं सर की, जिससे हम लिवर की हेल्थ को चेक कर सकें?
0: एडवांस टेस्ट बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सिंपल प्लेटलेट। अगर आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स 150,000 से ज्यादा हैं तो खुश नसीब हैं। फिर लिवर के टेस्ट होते हैं AST, ALT या SGOT, SGPT, जो सिंपल LFT टेस्ट में आते हैं। इनके हिसाब से एक फॉर्मूला निकलता है जिसे हम कहते हैं FIB4। फाइब्रोसिस 4 निकालने के लिए चार चीजें चाहिए होती हैं, तो FIB4 का फार्मूला कैलकुलेटर नेट पर होता है। तो एक टेस्ट है FIB4, सिंपल ब्लड टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं। दूसरा एडवांस टेस्ट है फाइब्रोस्कैन या लिवर स्टिफनेस का। अगर लिवर आपका फैट है उसमें, तो वैल्यू 232-250 से ऊपर होती है, जिसे हम कैप कहते हैं, कंट्रोल्ड अटेन्यूएशन पैरामीटर कैप। और अगर 290 से ज्यादा है, मतलब लिवर में करीब 30% से ज्यादा फैट है, मतलब 60% भी हो सकती है। दूसरा एक एडवांस टेस्ट जो मैं कहूंगा, उसे एल्फ कहते हैं, ELF, महंगा टेस्ट है ये, जो है आपका एक्सटेंडेड लिवर फाइब्रोसिस पैनल बताता है कि लिवर में फाइब्रोसिस है कि नहीं। तो लिवर के टेस्ट दो तरीके हैं, फैट का होना, फैट से सोजिश का होना। फैट का होना अल्ट्रासाउंड से पता लगे, लिवर में सोजिश होना, इंजरी होना, SGPT से पता लगेगा कि भाई 40-50-60 हो गया। और फाइब्रोसिस का होना कि मतलब सोजिश आई और उसके बाद में लिवर के अंदर स्कारिंग हो गई, वो पता लगेगा FIB4 या फाइब्रोस्कैन से। तो लिवर के स्टेजेस जो हैं, फैट, फैट प्लस इन्फ्लेमेशन, फैट, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। और

0: लास्ट स्टेज फाइब्रोसिस की है वो सिरोसिस है, और सिरोसिस के मरीज में कैंसर का होना भी काफी कॉमन हो गया। भारत में एक्चुअली डायबिटीज के देखें तो सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस डायबिटीज वालों के अंदर होते हैं।
1: अच्छा
0: 100 में से
1: अच्छा
0: करीब 40% जो लिवर कैंसर हैं वो डायबिटिक्स में। अगर हम 100
1: ओके
0: लिवर कैंसर के केस
1: हाँ
0: लें तो 40 डायबिटीज वाले। तो मेरे माध्यम से मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को डायबिटीज है जरूर जरूर जरूर लिवर चेक कराएं।
1: जी। और जैसे इनकी अभी उम्र कम है डॉक्टर साहब, तो कब से शुरू करने चाहिए ये प्रिकॉशनरी टेस्ट?
0: वेल, पैदा होते
1: अच्छा
0: कभी भी आपने सोचा है कि मेरी गाड़ी टक्कर लग जाए उसके बाद में ठीक करो?
1: नहीं
0: नहीं ना, गाड़ी
1: तो
0: पहले तैयार रखें। आपके लिए एक और
1: तो ये
0: 25
1: टेस्ट
0: साल
1: हो जाने चाहिए
0: बिल्कुल हो
1: सब।
0: जाने चाहिए, एल्फ की जरूरत नहीं, पर 25 साल है, आपको 3-4 साल का और मौका है कि आप हड्डियां मजबूत कर ले। 29 साल एक ऐसी एज होती है जबकि हम हड्डियों को देखते हैं, 29 के बाद हड्डियों का धीरे धीरे ग्रोथ कम हो जाता है। तो अपने आप पे खूब मेहनत करें, आपका बोन का जो बैंक है, जो बोन्स है, उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि यू आर 5 ईयर्स यंगर देन एनीबडी एल्स। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हमेशा 25 या उससे कम रहिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से जानकारी हम सब तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर साहब, एक जो हमारे श्रोता थे जो अभी लाइन पर आए थे, उन्होंने कोई बात की थी कि लिवर के लिए कोई लिक्विड भी मिलता है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि कोई सप्लीमेंट या प्रोबायोटिक ड्रिंक्स या प्रोटीन बार्स, एनर्जी ड्रिंक्स, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या ये चीजें लेना कहीं से लाभ होता है या नुकसान हो सकता है?
0: देखिए, लाभ के लिए तो कोई ऐसी स्टडी नहीं है, लोगों की एक दूसरे से कहने से है, पर हाँ मैं जरूर कहूंगा सत्तू ले लें,
1: अच्छा
0: कलौंजी ले लें, आप ऐसी चीजें जिसका आम का पन्ना ले लें, विनेगर ले लें, सिरका ले लें। ये चीजें जो टाइम टेस्टेड सेंचुरीज की हैं वो दो तरह से लिवर को फायदा करती है। एक, आंतों के जो बैक्टीरिया जो हेल्पफुल है, हम जो खाते हैं वो हम नहीं खाते, सारा बैक्टीरिया प्रोसेस करता है। 1.5 किलो आंतों में बैक्टीरिया होता है, जितना लिवर का वेट है उतना ही बैक्टीरिया का वेट। आपने खाना खाया, आपने सोचा पेट में गया, पेट कुछ नहीं करता, वहां के जो बैक्टीरिया है उस खाने को बदलते हैं, आंतें एब्जॉर्ब करती हैं और लिवर तक उसको
1: तो ये जो
0: पहुंचाते
1: गुड
0: हैं। तो
1: बैक्टीरियाज
0: गुड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ाएं, मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो विनेगर है या इस तरह के जो हमारे ओरिजिनल कलौंजी वगैरह हैं, ये बहुत फायदेमंद है। बटर मिल्क है, लस्सी है, ये काम की चीज है।
1: जी
0: और कोई लिवर टॉनिक नहीं होता। मैं क्लियरली इस बात को, आपके मिथ को, आपने कहा प्रोटीन बार्स,
1: जी
0: अरे भाई
1: जी
0: क्यों नहीं चने खा लेते सस्ते? क्यों आपको जरूरत है कि प्रोसेस्ड फूड ले? एनीथिंग इन विच द नेचर ऑफ द फूड इज चेंज्ड, जैसे आपका खाना था चना पर आपने उसका कुछ और बना दिया, इसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो प्रोटीन हैज बीन कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स। सो आई एम नॉट सेइंग प्रोटीन बार्स आर बैड, बट आई एम सेइंग यू कैन हैव बेटर ऑप्शंस विद नेचुरल ओरिजिनल फूड्स।
1: शायद सर आजकल जो जमाना है इतना तेजी से बदल रहा है, आजकल जो होम डिलीवरी का एक चलन हो गया, पैकेज फूड की तरफ लोगों का रुझान हो गया कि लेके रख लो, बनाएगा कौन, करेगा कौन, एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बदलाव तो आया है, तो
0: तो
1: मे बी
0: मी अगेंस्ट द रेस्ट, मैं
1: इसका
0: अकेला, बाकी सारे लोग हैं, पर मैं अपनी आवाज नहीं बदलूंगा ना अपने विचार, क्योंकि ये साइंटिफिक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग धीरे धीरे इसको सोचें, समझें। प्रोसेस फूड घर का क्या, जैसे मैं तो घर का ही खाता हूं, पर घर में क्या खाते हो वही सारी
1: जी
0: चीजें प्रोसेस करते हैं। हाई कुकिंग है, ट्रांस फैट है, फैट बदल के ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई किसी और फॉर्म में, वो फायदेमंद चीजें। प्रोसेस फूड, कितनी बार वो ऑयल यूज होता है, प्लीज रिमेम्बर पुट करेक्ट पेट्रोल इन योर टमी। गाड़ी खराब नहीं करते, क्यों पेट खराब करते हो?
1: जी तो आप सब जो कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब ये मैसेज दे रहे हैं, तो अब आप अगर कुछ खाएं तो जरूर सोच लें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आप बनेंगे। तो आप अगर बाहर खा रहे हैं तो प्लीज देख लें कि किस तरह का तेल है, किस तरह की चीजें उसमें इस्तेमाल की जा रही है, या क्या आप ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार।
2: जी, रविंद्र कुमार भट्ट बोल रहा हूँ, दिल्ली से, नारायणा।
1: जी जी पूछिए, क्या पूछना है आपको?
2: पेट नहीं साफ रहता है, 2-3 सालों से बहुत समस्या होती है। चून वगैरह का प्रयोग करता हूँ तो जब तक खाता हूँ जब तक सही रहता है, फिर इसके बाद वही समस्या आ जाती है। और ड्यूटी मेरा शिफ्ट वाइज है, जब मैं दोपहर की शिफ्ट करता हूँ मतलब 2 से 10 वाली, रात खाना खाता हूँ, सुबह 10 बजे सो के उठता हूँ, उस दौरान तो सही रहता हूँ, लेकिन जब मॉर्निंग या नाइट ड्यूटी करता हूँ तो पेट साफ होने में बड़ी समस्या होती है। क्या ये लीवर की समस्या हो सकती है?
0: देखिए, लिवर की समस्या तो आपकी नहीं लगती है डायरेक्टली।

0: पर हाँ, आदतों से आप थोड़ा सा परेशान हैं। याद रखिए कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट हो, पेट साफ करने के लिए चलना जरूरी है। आप चलेंगे, आंतें चलेंगी, बैठे रहेंगे, आंतें बैठ जाएंगी, मोशन नहीं होगा। दूसरा, खाने के अंदर फाइबर का प्रयोग ज़्यादा करें, जो रॉ मटेरियल है। जैसे आपने छिलका उतार के फल खाया या छिलका उतार करके आपने सब्जी ली, उसका फायदा नहीं। तो जो फाइबर वाली चीज़ें हैं उनको बढ़ाएं और खुद चलें, आंतें चलाएं।
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सरोज मल्होत्रा लिख रही हैं मेरठ से, लिवर खराब होने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या कैसे खुद को सर पता चले?
0: देखिए, बीमारी में अगर सिम्टम्स आ गए, लक्षण आ गए, तो आपका बहुत लेट हो गया। अगर हमें लिवर के बारे में ये समझना है कि सिम्टम्स आने के बाद मैं पता करूं, मतलब गाड़ी टक्कर मारने के हो जाने के बाद देखें कौन मरा कौन बचा, कितनी चोट लगी, वो ठीक नहीं है। नॉर्मली लिवर आवाज नहीं करता, साइलेंट वर्कर है, और आपको अंडरग्राउंड पूरा फर्स्ट क्लास उसका एक मैकेनिज्म है। हर सेल जो है उसका इतना काम करता है। पर सिम्टम्स क्या होते हैं? आप कहते हैं कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो कहते हैं अमीबाइसिस की दवाई खा लो, ये खा लो। पेट में दर्द होना, थकान ज्यादा होना, भूख का कम होना, और कई लोगों को एसिडिटी जो है वो भी लिवर के, क्योंकि लिवर आपका सूज गया है, उसके कारण हो सकती है। तो मैं कहूंगा सबसे कॉमन सिम्टम जो है लिवर का आज की तारीख में, भूख नहीं लगना, डिस्पेप्सिया होना है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत पुराना है, जैसे शराब पीने वाला है, वो कहता है जी मैं तो पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, पर जब उसके लिवर के टेस्ट कराएं तो एंजाइम्स लिवर के हाई हैं, या लिवर का अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं है, या आंखों में थोड़ा सा पीलापन आ गया, पैर में सोजिश आ गई, ये एडवांस डिजीज की लक्षण है। वेट ना करें, आज ही चेक कराएं और अपना लिवर हेल्दी रखें।
1: और हमारे एक और कॉलर हमारे साथ हैं इस बीच में। हेलो
2: हेलो हेलो मैम,
1: जी
2: सर मुझे सर से पूछना है कि लिवर फंक्शन टेस्ट कहाँ की जाती है सर?
0: लिवर फंक्शन टेस्ट जो है तीन
2: हाँ
0: चीजें बताते हैं। पहला
2: हाँ
0: तो ये बताते हैं कि लिवर के अंदर कोई इंजरी तो नहीं है, मतलब जैसे चोट लगे और आवाज हो, तो वो SGOT SGPT बताते हैं कि ये लिवर के एंजाइम्स 30 या 40 से ज्यादा है तो लिवर में इंजरी। दूसरा, एक लिवर का टेस्ट जो फंक्शन टेस्ट है वो एल्ब्यूमिन के नाम से होता है, ALUBMIN। एल्ब्यूमिन जो है वो बताता है कि लिवर की एनर्जी कितनी है, मतलब कितना लिवर घोड़े की तरह है या नहीं है। अगर एल्ब्यूमिन 4 साढ़े 4 है, लिवर अच्छा है। तीसरा टेस्ट है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP। अगर आपने कोई दवाई खाई जिससे आपके लिवर को इंजरी हुई, तो ALP हाई होता है। पर आप उस लेवल तक ना जाएं, सिंपल भाषा में याद रखें, लिवर हेल्दी रखें। अगर तकलीफ हो तो लिवर फंक्शन टेस्ट करा के डॉक्टर को दिखा लें।
1: जी, हमारे पास इतने कॉल्स और इतने मैसेजेस हैं कि हमें समय नहीं है कि हम म्यूजिकल ब्रेक भी ले सकें, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, पानी भी पीते रहना है और मनोरंजन भी करते रहना है सर, हैप्पी रहने के लिए,
0: बिल्कुल
1: स्ट्रेस फ्री रहने के लिए गाना भी सुनना जरूरी होता है, और हमारे इस कार्यक्रम में हम गाने बजाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमें जैसे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर शिव सरीन हमारे साथ हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप मौका चूकें, आप फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वैसे, और हम एक एक करके कोशिश करेंगे कितने लोगों को शामिल कर सकें। मैसेजेस बहुत आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, रविन्द्र पाठक, आशा पाठक नीदरलैंड से हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू शालिनी मैम एंड डॉक्टर सर फॉर सच ए नाइस प्रोग्राम। वर्ल्ड लिवर डे पर बहुत ही सराहनीय जानकारी मिल रही है, वेरी एक्सलेंट प्रोग्राम। हमारे क्वेश्चन है कि कभी कभी जॉब पर हमें फ्राइड खाना पड़ जाता है मजबूरी वश, क्या ये भी अवॉइड करना चाहिए, कभी कभी खाया जा सकता है?
2: देखिए, सवाल के जवाब से पहले आपने इतना बढ़िया गाना बजाया जिसमें दिल और जिगर दोनों चीजें आपने
1: सर मैंने चूज किया था,
2: चूज किया, थैंक यू, क्योंकि दोनों का बहुत रिश्ता है। पर मैं ऐसे गाने चाहूंगा जिसमें जिगर पहले हो, दिल बाद में हो।
1: तो ये रिश्ता भी आप जरूर बताइए।
2: ये रिश्ता जरूर बताऊंगा मैं आपको, और मेरे नीदरलैंड के दोस्तों को कहूंगा कि हाँ, आप अगर जरूर फ्राइड खाएं, पर वहां तो बहुत पहाड़ियां हैं, फिर उन पे चढ़ के आ जाएं। नीदरलैंड इज फेमस फॉर द स्नो एंड द माउंटेन्स। कभी कभी खाना पड़ जाए तो ठीक है, इट इज नॉट चीटिंग, इट इज कंपल्शन। बट याद रखिए कि अगर आज आपने फ्राइड खाया, ओवर ईट किया ज्यादा, तो अगले दिन फाका मारें, बराबर ठीक हो जाएगा
1: जी। और ये जो सर दिल और जिगर आप बोल रहे थे, जिगर पहले होना चाहिए फिर दिल होना चाहिए,
2: क्योंकि जिगर जो है वो बिफोर क्राइस्ट 2000 साल पहले मंदिर में भगवान की फोटोज नहीं होती थी, लिवर रखा जाता था।
1: अच्छा,
2: बेबीलोनियन टाइम्स के अंदर क्राइस्ट से 2000 साल पहले पूजा होती थी लिवर की, और लिवर के अंदर देखा जाता था कि एक कावर्ड है या अच्छा लिवर है। कावर्ड लिवर था, जिसे लिली लिवर कहते हैं, वो फैटी लिवर होता है। तो अगर फैटी लिवर है तो यू आर ए कावर्ड लिवर, मतलब गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और उस समय राजा महाराजा सारे अपनी सेना कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी लिवर के स्ट्रक्चर, लिवर के ऊपर। अच्छा। तो जो हम आज हेरियोस्कोपी है, उस समय हेरियोस्कोपी कहा जाता था, हिपेटोस्कोपी, वो आज हॉरोस्कोप में बदल गया।
1: अच्छा।
2: हॉरोस्कोप इज अ फॉर्म, लिवर यूज टू बी द मेन ऑर्गन विच यूज टू डिसाइड डेस्टिनीज ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द किंगडम्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीदरलैंड्स वाले जरूर पहाड़ी चढ़े, फ्राइड अवॉइड करें
1: जी। जी, तो हार्ट और लिवर का भी बहुत गहरा संबंध है, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन।
1: जी जी सलाउद्दीन जी, बताइए क्या पूछना है।
3: सर, ये पीलिया जो हो जाता है, इसमें जैसे बताते हैं कि भाई गन्ना खाओ या सिरका खाओ, मूली का डलावा, इसके बारे में जानकारी लेनी थी जी, क्या ये सही है, इसमें बताएं डॉक्टर साहब।
2: जी साहब, वालेकुम सलाम, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। जॉन्डिस में आप मूली खा सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज है, आंवला ले सकते हैं, और ऐसी चीजें जो कि शुगर वाली नहीं हो। पर गन्ना लेने से फायदा नहीं है, गन्ना प्योर शुगर है। पहले जमाने में यह होता था कि भाई मरीज को उल्टी हो रही है, कैलोरीज नहीं है, पीलिया है, उसमें शुगर गन्ने के माध्यम से दे देते थे। पर आज की तारीख में मैं कहूंगा गन्ना लेना पीलिया के लिए ठीक नहीं। पीलिया के तीन कारण ज्यादातर होते हैं, या लिवर के अंदर खराबी हो, जैसे शराब से हो गया, मोटापे से हो गया, या आपका कैंसर हो गया लिवर में। दूसरा कि पित्त का रास्ता रुक जाए, जैसे पथरी हो गई गॉल ब्लैडर के अंदर, पैंक्रियाज में। और तीसरा है खून की कमी से। तो आपका कौन सा पीलिया है उसका जानकारी जरूरी, पर गन्ना लेना पीलिया के लिए फायदेमंद नहीं
1: जी। और ये मैसेज हमें किया है अर्चन वर्मा जी ने जम्मू से। सर नमस्ते भेज रहे हैं आपको, और साथ ही साथ धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैसेज वीरेंद्र कुमार वर्मा जी का है, इन्होंने लिखा है फाइब्रो स्कैन टेस्ट क्या होता है।
2: या फाइब्रो स्कैन जो है एक तरह का अल्ट्रासाउंड है, लो फ्रीक्वेंसी का, मशीन बड़ी महंगी।

0: ये 1 करोड़ के करीब की है, इसलिए महंगी होती। पर हाँ, अगर आपको लगे जरा सा भी डाउट, तो फाइब्रोस्कैन कराएं। उसके अंदर दो चीजें पता चलती हैं कि लिवर में चर्बी कितनी है, फैट कितनी है, कितने परसेंटेज फैट है, और लिवर हार्ड हो गया है कि नहीं। अगर फाइब्रोस्कैन में लिवर स्टिफनेस 8 से ऊपर आए, नॉर्मली 6 से कम होती है, 8 से ऊपर, 8 किलो पास्कल से ऊपर है तो स्टेज 2 फाइब्रोसिस है, और 12 या 14 के ऊपर आ जाए तो सिरोसिस है। 1 मिनट में ये टेस्ट होता है, जरूर करा लें जिंदगी भर, क्योंकि लिवर हार्ड है, हार्ट भी हार्ड होगा, किडनी भी हार्ड होगी, लंग भी हार्ड होगा। तो एक सिंपल टेस्ट, 2 मिनट के टेस्ट से बाकी ऑर्गन्स की हार्डनेस, फंक्शनिंग, लॉन्गेविटी पता लग जाती है।
1: तो ये प्रिकॉशनरी कराया जा सकता
0: बिल्कुल
1: है
0: कराना चाहिए।
1: जी। अभिषेक भटनागर जी हमें लिख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बर्लिन में पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड लिवर डे। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सपर्ट। विद टूडेज फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल एंड इंक्रीजिंग केसेज ऑफ फैटी लिवर इवन अमंग यंग पीपल, वॉट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली हैबिट्स वी शुड अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट आर लिवर इन द लॉन्ग रन। और आज हम उसी पे ज्यादा स्ट्रांग लिवर पे बात।
0: अभिषेक, बर्लिन बहुत बढ़िया जगह है। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में बर्लिन फ्राइबर्ग में साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं। साइकिल चलाते रहिए, हल्के शरीर को रखिए, स्लिम एंड फिट रहिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी तेज चल रही है, आपको उससे तेज हेल्थ को रखना। अगर आपकी गाड़ी कमजोर होगी तो कैसे चलोगे भाई? तो इसलिए मेक योर कार, मेक योर इंजन स्ट्रॉन्गर एंड यू गेट द बेस्ट BMWs फ्रॉम जर्मनी। मेक योर BMW योर ओन बॉडी मशीन विच इज वर्किंग।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहां से हमें सुन रहे हैं अभिषेक जी। और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमें तारीफी तौर पर आ रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और समय रहेगा तो मैं नाम ले पाऊंगी, लेकिन शायद नहीं ले पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। डॉक्टर साहब, एक ये प्रश्न आया है रश्मि जी का। इन्होंने लिखा है कि वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, स्पेशली अबाउट डिफरेंट टेस्ट फॉर लिवर। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन है इनका कि क्या ये टेस्ट नॉर्मल पैथ लैब्स में जाकर कराए जा सकते हैं या इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगती है?
0: बिल्कुल जरूरत नहीं है। रूटीन हेल्थ चेकअप में लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, फाइब्रोस्कैन कराना है तो लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाना है। पर शुरुआत करें ब्लड टेस्ट में, प्लेटलेट्स और बाकी लिवर फंक्शन टेस्ट करें, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को ध्यान से रखिएगा, बढ़ने नहीं दीजिएगा। नॉर्मल की अपर लिमिट पर कभी मत जाइए, नॉर्मल की लोअर लिमिट पर लेकर आइए।
1: जी, हमारे एक कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हेलो जी, मैम नमस्कार।
1: जी, देवेंद्र जी बोल रहे हैं।
2: हाँ
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी, मैं कार्बी अंगलोंग असम से बात कर रहा हूँ।
1: असम से बात कर रहे हैं। असम से हमारे पास मैसेजेस भी बहुत आए हैं। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको?
2: जी डॉक्टर साहब से मेरा 2 सवाल था।
1: जी पूछिए।
2: क्या ज्यादा पेन किलर या बिना डॉक्टर की सलाह से ली गई मेडिसिन लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: बिल्कुल पहुंचा सकती है जी।
1: दूसरा
2: सवाल है, कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो लीवर को डिटॉक्स करने में हमारी मदद करते हैं?
0: देखिए, आप बिना डायरेक्शन के अगर चलेंगे तो आसाम जाने की जगह आप बिहार पहुंच सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेंगे तो रास्ता भी गलत हो सकता है और रास्ते में टक्कर भी हो सकती है। ध्यान रखिए, दवाइयां लेनी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने एक पुस्तक लिखी है, ओन योर बॉडी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसमें 4 लाइफ लाइन दी है। पहली लाइफ लाइन है जिससे जिंदा आदमी अच्छे से रहे, फिट एंड स्लिम। दूसरी है व्हेन, हाउ मच, व्हेन, व्हाट एंड टू बी ईटन, तो अगर खाना कैसा। तीसरा उसका जो है वो है स्लीप, और चौथी लाइफ लाइन है वो है दवाइयां। तो पहली 3 लाइफ लाइन्स अगर आप ठीक रखेंगे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयां लिवर को इंजर करती हैं, हर दवाई लिवर के अंदर जाती है। मेरी सलाह है कि बिना दवाई के ही ठीक रहें, थोड़ा बुखार, थोड़ा लूज मोशन, हर एक में एंटीबायोटिक, पेन किलर ना लें। हाँ, बहुत जरूरी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा, आपने कहा कि लिवर के लिए कौन सा फूड अच्छा है, मैं पहले बता चुका हूँ, SMEs फूड बहुत अच्छा है, पर सीजनल फूड खाइए और ओरिजिनल फूड खाइए।
1: जी, और बहुत बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा सेल्फ मेडिकेशन बहुत आम है भारतवर्ष में, वैसे तो शायद दुनिया भर में होगा, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो जरा सा भी कुछ होता है तो लोग चले जाते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, या उन्हें लगता है पिछली बार ये दी गई थी तो वही पुराना पर्चा निकाल लेते हैं और उसी को दे देते हैं, और कई बार तो वो खुद जो लिया है वही बच्चों को भी दे देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कितनी हार्मफुल हो सकती है लिवर के लिए?
0: देखिए, मेरा इसमें क्लियर थिंकिंग है कि जैसे आप नई गाड़ी गाड़ी खरीदते हैं उसकी 5 या 10 साल की वारंटी होती है, अगर आप पैदा हुए हैं तो 40 साल तक तो वारंटी में ही रहते हैं, 40 साल

0: दवाई खानी नहीं, उसके बाद में खानी है जब जरूरत हो आपको। पर अगर आप अपनी पूरी सर्विस बराबर गाड़ी की कराते रहेंगे, मतलब हेल्थ को चेकअप कराते रहेंगे, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर द काउंटर या अपनी मर्जी से दवाई खाना बिल्कुल ठीक नहीं, उसकी जगह अच्छा खाना खाएं। दवाई खाना आसान है क्योंकि एक छोटी सी गोली है, पर वो आदत पड़ जाती है। सारा सिर दर्द हो, गोली खा लो। आई वुड से सिर दर्द हो रहा है तो रेस्ट कर लो, गोली ना खाओ।
1: जी, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं जिसमें लोग बहुत बड़े बड़े हमें क्वेश्चंस लिखकर भेज रहे हैं, पूरे अपनी रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं कुछ लोग, और सिम्टम्स बहुत सारे लिखकर भेज रहे हैं, तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका मैसेज नहीं ले पा रही हूँ, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ। इन्होंने भी काफी लंबा लिखा है, मीरा सिंह सिलचर आसाम से, कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए लिवर में प्रॉब्लम होती है क्या?
0: लिवर के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लिवर में अगर फैट है तो कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। याद रखिए, महिला के लिए, भारतीय महिला के लिए एलडीएल, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, पहले इसका लेवल 100 तक होता था, अब मैं कहूंगा कि 50 तक लाएं। टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक और कंपाउंड है एलडीएल, उसका ध्यान रखें। अगर हाई है उसको डाइट से, एक्सरसाइज से कम करें, नहीं है तो जरूर दवाई लें।
1: और एक हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
2: गुड आफ्टरनून शालिनी मैडम जी।
1: जी, गुड आफ्टरनून जी,
2: गुड
1: बताएं
2: आफ्टरनून डॉक्टर साहब जी।
0: नमस्ते जी।
1: जी, अपना नाम बता के प्रश्न करें, समय कम है हमारे पास।
2: मैं रविंद्र कांत कॉल कर रहा से बोल रहा हूँ मैडम जी।
1: जी, जल्दी से पूछ लीजिए।
2: डॉक्टर साहब जी, मैंने 2 साल स्पाइन टीवी की दवाई खाई थी, इसका कोई लिवर पे असर पड़ेगा? इसके लिए व्हाट कैन आई डू फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?
0: स्पाइन टीबी ठीक हो गई आपकी तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुश्किल होती है उसका। अगर असर होना आता है तो जब दवाई लेते हैं तभी होता है। दवाई ले ली, आप ठीक हो गए, अब भूल जाइए, आगे टीबी ना हो इसके लिए ध्यान रखें और लिवर को बचाए रखें।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रश्न अभी दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि घड़ी मेरे सामने है और इतनी तेजी से भाग रही है, इधर मैसेजेस उधर कॉल्स, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आज छूट जाएंगी, तो आपको ये प्रॉमिस करके जाना है कि आप पुनः यहाँ आएंगे हमारे श्रोताओं के और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते रहेंगे। ये बताइए मुझे कि क्या बच्चों को भी लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि बड़ों में तो बहुत आ रहे हैं मेरे पास मैसेज कि हमें फैटी लिवर है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है।
0: देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर माता पिता का हेल्थ ज्यादा अच्छी है, मोटापा है, तो बच्चे में जरूर होंगे और वो दुख भोगना शुरू कर देता है पहले महीने से। अगर आपने बच्चे को ज्यादा रात को दूध पिलाया वो ठीक नहीं है, उसको भूखा रहना पहले महीने से शुरू कराना। 3 साल तक शुगर नहीं देनी है बच्चे को, कम से कम शुगर देनी है, उससे लिवर में फैट होती है। अगर बच्चे को आप 1 साल के, 6 महीने के बच्चे को 2 बार फ्रूट जूस कैंड देंगे, 1 साल की उम्र तक फैटी लिवर हो सकता है।
1: एक साल के बच्चे,
0: एक साल, अगर आप 6 महीने के बच्चे को 2 बार फ्रूट जूस देंगे जो टिंट जूस है, तो 1 साल के अंदर उसको फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। तो याद रखें, बचपन से बच्चे को खराब करना या अच्छा करना माँ बाप का जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। बच्चे को थोड़ी पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको जो दे दिया वो ले लिया। दूसरा, फैटी लिवर बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। मैं कहूंगा कि 15 साल के कम बच्चों के अंदर लगभग 15 से 20% में फैटी लिवर है, 18 साल के अंदर होते होते, और ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ना बच्चे दौड़ते हैं, ना उन्हें दौड़ने दिया जाता है, पीटी का टाइम होता है, माफी मांग लेते हैं, और खाना जो वो खाते हैं वो सोचते हैं, टीवी की तरफ देख रहे हैं, खाना मुंह में जा रहा है, बंद करें। 1 घंटा माता पिता को चाहिए बच्चों को अपने लिए रखना है, उनकी हेल्थ के लिए। एंड दी पेरेंट्स मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। अगर माँ बाप दौड़ेंगे बच्चा भी दौड़ेगा, वो बैठे रहेंगे बच्चा भी बैठा रहेगा।
1: जी, तो बहुत कुछ हमें बाय एग्जाम्पल बच्चों को सिखाना है।
0: और अगर बच्चा मोटा है, 10 साल का है और ओबीज है, तो उसका हार्ट 40 साल के व्यक्ति के बराबर हो जाता है।
1: अच्छा।
0: याद रखें कि अगर बच्चा मोटा है, ओबीज है, तो उसके हार्ट ने इतना काम कर लिया जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति, जिस नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट 40 साल का होगा तब उतना इतना काम किया। आप चाहते हैं कि आपके बच्चा 10 के बाद 30 35 साल में इधर उधर हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहते। याद रखिएगा इसको, ये बहुत लॉन्ग स्टडीज है, तो इसलिए बच्चों को पतला रखना आपकी जिम्मेदारी है। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर एजुकेशन।
1: ओके, तो हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसीलिए हम लेकर आते हैं रेडियो डॉक्टर, और इसीलिए ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसको रोज सुने। डॉक्टर साहब ने आज कह दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेजेस तो हैं हमारे पास, लेकिन मैं अभी आपसे ये भी नहीं पूछ पाई हूं कि कौन कौन सी लिवर की बीमारियां होती हैं, ये तो गिना दीजिए कम से कम।
0: देखिए लिवर में तीन चीजें सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं, एक मोटापा या फैट, दूसरा अल्कोहल, वो तो सबको पता है, और तीसरा वायरसेस।
1: ओके,
0: वायरसेस में हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस हैं, दोनों क्रॉनिक होते हैं, मतलब क्रॉनिक का कि बॉडी अपने आप उनको क्लियर नहीं कर सकती। हेपेटाइटिस सी की दवाइयां बहुत अच्छी हैं, अगर 3 महीने से 6 महीने तक दवाई ले आदमी तो हेपेटाइटिस सी क्लियर हो जाता है, पर अगर सिरोसिस हो गया है तो उसको हमेशा फॉलो अप करना है। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं, सस्ती दवाइयां सब नेशनल प्रोग्राम में। अल्कोहल जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, अगर किसी के लिवर में फैट है और उसने अल्कोहल लिया तो करेला और नीम चढ़ा, डबल नुकसान होता है। तो अल्कोहल को परहेज रखें, दोस्तों को बिल्कुल नहीं पूछें, दुश्मनों को भी दूर रखें। तीसरा है मोटापा या फैट जिसके बारे में कहा, फिर लिवर में कैंसर का होना बहुत तेजी। आज अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर जो है उसमें लिवर कैंसर है।
1: अच्छा।
0: और भारत में जो 3 कॉमन कॉज ऑफ डेथ है उसमें लिवर कैंसर है। फिर अगर आपको कैंसर से बचना है तो लिवर में इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। तो वन मैसेज क्लियरली इसकी ALT या SGPT नॉर्मल रखें, 30 से कम आदमी में, महिला में 19 से कम रखें। अगर आपका SGPT कम है, लिवर में सोजिश नहीं है, लिवर में फैट नहीं है, आपको कैंसर का रिस्क, कहीं के भी कैंसर का रिस्क कम होता है।
1: तो क्या महिलाओं में लिवर वीक होता है क्या?
0: नहीं, महिलाओं की अपर लिमिट 19 है।
1: अच्छा।
0: हालांकि भारत की सब लैब्स 40 रखती हैं, पर मैं कहूंगा 19 से ज्यादा SGPT ना रखें।
1: अलग अलग क्यों है पुरुषों महिलाओं में?
0: क्योंकि महिलाओं का बॉडी एरिया कम होता है।
1: अच्छा।
0: उनका वॉल्यूम बॉडी का, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन सब कम होता है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए उनके लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN की गाइडलाइंस है US की, 19 फॉर फीमेल्स, 30 फॉर मेल्स इज द अपर लिमिट। अगर इससे ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या मैं इसका इम्पोर्टेंस, अगर एक 25 साल का लड़का है और उसका SGPT 80 है, उसको 10 साल में 36 साल तक होएगा, हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाएगा।
1: ओके।
0: तो अगर आपको अपने लड़के लड़की की शादी करनी है तो याद रखिएगा कि जन्म पत्री से ज्यादा आप SGPT का टेस्ट करा ले, 30-40 रुपए में पैसा भी बचेगा, और उसके साथ ये मालूम पड़ जाएगा अगर SGPT 80 है, ही इज नॉट ए फिट गाय, उसको पहले फिट करना है।
1: और आजकल वैसे थोड़ा थोड़ा सा अवेयरनेस आई है लोगों की, क्योंकि वो ब्लड रिलेटेड डिजीजेस के बारे में जो बात कर रहे हैं, थैलेसीमिया और सारी चीजों पे, तो थोड़ा थोड़ा सा लोग अलर्ट अवेयर हुए हैं। हम भी कोशिश करते हैं, पर जैसे जीन पत्री जैसी कोई भी चीज आती है, जीन टेस्ट करके आता है, तो वो कितना आपको लगता है कराना चाहिए शादी से पहले?
0: जीन पत्री बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से जन्म पत्री से ज्यादा जरूरी जीन पत्री है, कि आपको विरासत में क्या मिला माता पिता से, कि साहब शुगर मिली, BP मिला, हार्ट डिजीज मिली, मेरी वाइफ को क्या मिला, इस तरह से दोनों का मिलकर ही तो बच्चा पैदा होगा। तो जिसके खानदान में ये सारी बीमारियां हैं, शादी जरूर करें, पर ध्यान रखें कि यार हम लोग थोड़े डिफेक्टिव पीस बन गए।
1: जी जी, लेकिन डिफेक्टिव पीस अगर बने हैं तो ठीक हो सकता है ना सर?
0: हो सकता है।
1: तो हमें ठीक करना है, और आज ये इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंच रही है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं, इस कार्यक्रम को बहुत शीघ्र आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन पाएंगे, उसे आप पुनः सुनिएगा, और जो चीजें अभी आप नहीं एक बार में ग्रेस्प कर पाए हैं आप उस कार्यक्रम में दोबारा सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो छूट रही है, और वो जैसे लिवर कैंसर की आपने बात की, लिवर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, और आप उसके स्पेशलिस्ट हैं, आपके इंस्टीट्यूट में किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: देखिए, लिवर अगर उस स्टेज तक चला जाए कि उसका रीजेनरेशन नहीं हो सकता, एक तो लिवर की एक ऐसी कैपेसिटी है, जैसे बाल कटाए 4 हफ्ते के अंदर वापस नए आते हैं, तो लिवर भी अगर डैमेज होता है तो जनरली 4 हफ्ते में वापस रिपेयर हो जाता है। पर अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा, शराब पीता ही गया बंदा, मोटा होता ही गया, खाता ही गया, तो जरूर उसका लिवर बैठ जाता है। ऐसे लिवर को जिसमें पीलिया हो जाए, पेट में पानी बन जाए, कैंसर हो जाए, ब्लड वॉमिटिंग हो जाए, बेहोशी आती रहे बार बार, इन लोगों को नया लिवर चाहिए होता है। ऐसे लोगों के लिए घर के रिश्तेदार नॉर्मली 90% उन्हीं का ट्रांसप्लांट में देना होता है। वाइफ्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़के देते नहीं है, लड़कियां ही देती हैं। और हाँ, डिजीज डोनर जो कि किसी की मृत्यु हो गई है वो अपना लिवर दे, ऐसा बहुत कम है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सब लोगों से कि मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन नहीं होता, मरने से पहले ही कर दें। आपका अगर जीन्स, आपका DNA आप चाहते हैं जिंदगी भर चलता रहे, तो आपका लिवर, आपकी किडनी किसी में लग गई, उसके पूरा खानदान में आपका डीएनए चलता रहेगा। तो आज ये 19 अप्रैल को ये भी शपथ लें कि मैं ऑर्गन डोनेट करूंगा जिससे और लोगों की जिंदगी बचे। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है हम लोगों के यहाँ भारत में।

0: करीब 5,000 एक साल में होते हैं, जरूरत है 2 लाख की। इमेजिन करिए कितने लोग मर जाते हैं बिना ट्रांसप्लांट के। आपके लिवर डोनेट करने से बहुत से लोग बच जाएंगे।
1: और ये लाइव भी डोनेट किया जा
0: बिल्कुल
1: सकता
0: लाइव ही होता है नॉर्मली, और लिवर का आप 60 पैसा दे दें 60%, तो आपका लिवर भी ग्रो कर जाएगा,
1: जी
0: जिसको मिलेगा उसकी जिंदगी बच जाएगी
1: जी। और आई थिंक डॉक्टर साहब यही एक ऑर्गन है जो रीग्रो कर सकता है,
0: बाल भी करते हैं और लिवर भी करता
1: जी।
0: है। आपने
1: जी।
0: लिवर दिया, 4 हफ्ते में नया तैयार है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उन्हें आपकी आवाज बहुत पसंद आ रही है, तो ऑडियो फ्रेंडली आप हैं। उन्होंने लिखा है, ये श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से, कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और बधाई कि आप यहाँ आए हैं, धन्यवाद आपको कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक उनकी समस्या भी इन्होंने की है पर मेंशन पर मेरे पास समय अब नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, पर धन्यवाद श्याम जी कि आपने प्रश्न किया। एक प्रश्न जो बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है युवा साथियों को मुझे बताना जरूरी है, इसलिए मैं वो समय चुरा रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों के बीच में से, कि आप एक इंस्टीट्यूट है, ये जो ILBS इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट जो लोगों को सिखाता है, पढ़ाता है, आप उसके चांसलर हैं, मुझे ये बताइए कि सर उसमें कैसे लोग एडमिट हो सकते हैं अगर वो चाहते हैं वहां से कुछ सीखना।
0: ये दिल्ली सरकार ने ये ILBS बनाया, मैं उसमें काम करता हूँ। उसमें 3 चीज़ें मेन हैं, एक ट्रेनिंग या स्किल्स है जिसमें हम लोग लड़कों को, स्टूडेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर के डिजीज़ के बारे में पढ़ाते हैं, अगर दूसरा है अस्पताल, और तीसरा रिसर्च। मैं सोचता हूँ रिसर्च भी ठीक ठीक हो जाती है क्योंकि रिसर्च इज़ ए रिलीजन देयर। अब मरीज को भर्ती होने के लिए अगर उसको बीमार है, हम साल में करीब 1,50,000 60,000 से ज़्यादा मरीज लिवर के देखते हैं, करीब 11,000 इमरजेंसी। हर आदमी को वहाँ पे कोशिश की जाती है कि वो ठीक रहे, और हाँ ज़्यादा बीमार हो तो भर्ती कर लिया जाए, और पूरा उसकी वेबसाइट है, आप ऑनलाइन उसके अंदर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कोशिश करते हैं अगली बार अच्छा करें।
1: तो बहुत सारी जानकारियां यहां पर हम दे चुके हैं लेकिन बहुत सारी अभी बाकी हैं, और सभी को धन्यवाद देना और माफी भी मांग रही हूं मैं क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हमें लिख चुके हैं, फोन लाइन पर भी थे पर हम सबको शामिल नहीं कर पाए। धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सुना और शायद आप में कुछ बदलाव आए और हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाए। धन्यवाद तो सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब को जाता है जो समय निकाल कर आए हैं हमारे साथ रहे। प्रोफेसर डॉक्टर शिव सरीन, आप जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज न्यू दिल्ली के फाउंडर, डायरेक्टर और चांसलर हैं। आपको धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज दी है। चलते चलते शॉर्ट में कुछ कहेंगे, आज कोई मैसेज रहेगा आपका?
0: कि शालिनी यू आर यूनिक।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया, और मैं चाहूंगा कि हर महीने की 19 को भूलिएगा नहीं, आपका लिवर आपका सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रांग फ्रेंड रहेगा। स्ट्रांग हैबिट्स रखिएगा, एक दिन की हैबिट नहीं, स्ट्रांग हैबिट्स, स्ट्रांग लिवर, स्ट्रांग बॉडी एंड शतायु भवे।
1: थैंक यू सो मच, तो धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू शालिनी, थैंक यू ऑल।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम विधानसभा के 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
2: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से गणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार मुश्किल की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनैतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद यह लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। उधर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से शाम 7:30 बजे से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. High blood pressure का ही दूसरा नाम hypertension है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में मौजूद रक्त नसों में लगातार दौड़ता रहता है और इसी रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा और पोषण के लिए जरूरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स आदि पहुंचते हैं। ब्लड प्रेशर उस दबाव को कहते हैं जो रक्त प्रवाह की जगह से नसों की दीवारों पर पड़ती है। आमतौर पर यह ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि हृदय कितनी गति

से रक्त को पंप करता रहता है और रक्त को नसों में प्रवाहित होने में कितने अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार 130/80 mmHg से ज्यादा रक्त का दबाव हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है। हाइपरटेंशन के कारण भारत में हर साल लगभग 2.5 लाख लोग मरते हैं, जबकि विश्व भर में ये आंकड़ा करोड़ों लोगों का है। खास बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों के बावजूद खराब जीवन शैली और अस्वस्थ खान पान के चलते इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, मगर इसका सबसे ज्यादा खतरा हृदय यानी दिल को होता है। जब हृदय को संकरी या सख्त हो चुका रक्त वाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सीने में दर्द होता है। ऐसे में अगर खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हाइपरटेंशन के कारणों के अनुसार देखें तो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप दो तरह का होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ज्यादातर युवाओं को होता है और इसका कोई खास कारण नहीं होता है, बल्कि लगातार अनियमित जीवन शैली की वजह से ये धीरे धीरे समय के साथ हो जाता है। इस तरह के ब्लड प्रेशर का कारण बहुत आम होता है, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, नींद की कमी, अत्यधिक गुस्सा, भोजन का अधिक सेवन करना, तनाव, तैलीय पदार्थ और अस्वस्थ खान पान। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है जो शरीर में किसी रोग के कारण या किसी स्थिति के कारण हो जाता है। आमतौर पर सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण ऐसे हैं जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, किडनी का कोई रोग, एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड की समस्या, अनुवंशिक कारणों से नसों में कोई खराबी, गर्भ निरोधक दवाइयों का अधिक सेवन, सर्दी जुकाम और दर्द की दवाइयों का अधिक सेवन, शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि का नशा करने से भी होता है। उच्च रक्तचाप के प्रारंभिक लक्षण में रोगी को सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रहने लगता है। कई बार इस तरह के परेशानी को वो नजरअंदाज कर देता है जो आगे चलकर गंभीर समस्या बन जाती है। आमतौर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं दोस्तों जो आज मैं आपको लम्हे प्रोग्राम में बताने जाने वाला हूँ। तनाव होना, सिर में दर्द, सांसों का तेज चलना और कई बार सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द का समस्या, आंखों से दिखने में परिवर्तन होना जैसे धुंधला दिखाना, पेशाब के साथ खून निकलना, सिर चकराना, थकान और सुस्ती लगना, नाक से खून निकलना, नींद ना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना। कई बार कुछ लोगों में उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई भी लक्षण नजर नहीं आता, उन्हें इस बारे में चेकअप के बाद ही जानकारी होती है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखाई न देना किडनी और हार्ट के लिए घातक हो सकता है, इसीलिए अगर आपको लगातार थकान या आलस जैसे सामान्य समस्या भी है तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर जांच करवाएं। प्रत्येक व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में दो माप शामिल होती है, पहली सिस्टोलिक और दूसरी डायस्टोलिक। इसे उच्चतम रीडिंग और निम्नत रीडिंग भी कहा जाता है। मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच तनाव मुक्तता में अलग अलग माप होती है। आराम के समय सामान्य रक्तचाप में उच्चतम रीडिंग यानी सिस्टोलिक 100 से 140 तक और डायस्टोलिक यानी निचले रीडिंग 60 से 90 के बीच होती है। अगर कई दिन तक किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140/90 बना रहता है तब उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। अगर आप उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है तो आपको इससे संबंधित कई खतरे हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण दिल के दौरे और दिल संबंधित बीमारियों को होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा इस समस्या से ग्रस्त लोगों को कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की भी जांच करानी चाहिए। उच्च रक्तचाप के कारण कई और बीमारियां होने की संभावना भी रहती है। हाई ब्लड प्रेशर में रोगी की याददाश्त पर असर हो सकती है, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। इसमें रोगी के मस्तिष्क में खून की आपूर्ति कम हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति घटती जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की रक्त वाहिकाएं संकरी या मोटी हो सकती है। इसके कारण आंखों की रोशनी कम होने लगती है, उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। यह हृदय को रक्त पहुंचाने वाले धमनियों को सख्त अथवा मोटा कर सकते हैं, जिससे
उनके

चौड़ाई कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है और एंजाइना, हार्ट डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का अंदेशा काफी बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है। वास्तव में जिस व्यक्ति को एक्यूट हार्ट अटैक आया हो उन्हें पहले से हाइपरटेंशन होता है जो चोरी से अचानक सामने आता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। हाइपरटेंशन से दिल के मांसपेशियां असामान्य रूप से मोटी हो जाती है जिसे पाए नलिया अतिवृत्त कहा जाता है जो भविष्य में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण मौत होने का बड़ा कारक होता है। उच्च रक्तचाप हृदय पर काफी दबाव डालता है। इससे हृदय को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। इससे दिल का आकार लगातार बढ़ता रहता है और बाद में ये कमजोर होने लगता है। यही समस्या आगे चलकर हार्ट फेलियर का कारण बनती है। सब ऑप्टिमल यानि उच्चतम रक्तचाप स्थानिक हृदयघात के 50% मामले के लिए उत्तरदायी होती है। सिस्टोलिक रक्तचाप में 20 mmHg अथवा डायस्टोलिक रक्तचाप में 10 mmHg के बढ़ावा रक्तचाप से होने वाली मौत का खतरा दोगुना कर देता है। हाइपरटेंशन के सही इलाज से इस बीमारी के व्यापक गंभीर परिणाम से बचे जा सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी से हार्ट अटैक के मामले 20-25% तक कम लाई जा सकती है। वही हार्ट फेलियर के मामले में असौतन 50% से भी अधिक तक कम किए जा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के कारण बच्चे का विकास बाधित हो सकता है। बच्चे के लिए जरूरी विटामिन और प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसका असर होने वाले बच्चे के वजन पर भी पड़ता है। हाइपरटेंशन के कारण गर्भनाल को नुकसान हो सकता है। कुछ मामलों में गर्भनाल गर्भाशय से अलग हो जाता है। इसके कारण बच्चे की ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। कई बार ये काम मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोग के इलाज के लिए जो दवाइयां उपलब्ध होती है उन दवाइयों के सेवन से ब्लड प्रेशर उल्टा बढ़ने लगता है। इसीलिए ऐसे मामले में किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें। कई बार ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए दोनों तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी रोग के इलाज के भी और जीवन शैली में बदलाव के भी। ऐसी स्थिति में चिकित्सक आपको उचित सलाह दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी आज के लम्हे प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। रिपीट, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: वाणी आकाशवाणी
1: और सोलफुल ट्रैक के साथ आज आपकी दोस्त गीतिका अनियाल आपका इस्तकबाल करती है प्रोग्राम रेनबो जीनियस में। हम दुनिया में कितना कुछ भी क्यों न जान लें, लेकिन हमेशा कुछ अधूरा रह जाता है, और वह अधूरा इसलिए रह जाता है क्योंकि जिंदगी की तरफ हमारी जो चाह है उसे पाने की, ज्यादा से ज्यादा पाने की, वो हमें हमेशा अधूरा छोड़ देती है। लेकिन इस अधूरेपन में भी ना कुछ बात है, कुछ खास बात है। इस अधूरेपन की वजह से ही उससे मोहब्बत, जिंदगी से मोहब्बत और भी ज्यादा हो जाती है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम रेनबो जीनियस।

0: में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। और अब वो घड़ी आ गई जब आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप दें मेरे हर सवाल का सही सही जवाब, यानी कि 5 सही जवाब देने के बाद आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। तो बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए अपनी इस दोस्त इस नाचीज गीतिका उनियाल को, और सुनने के साथ साथ कहते भी रहिए, यानी कि सवालों के सही सही जवाब दीजिए। हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 2342-1080, और इन नंबर्स पर कॉल मिलाकर सही सवालों का सही जवाब देकर आप बनेंगे बॉलीवुड सरताज। दिल्ली के बाहर के हमारे जो श्रोता हैं उन्हें एसटीडी कोड लगाना होगा 011, यानी कि 011। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, हमारे जो इस वक्त कॉलर जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो आज किस तरह से जवाब देने वाले हैं और उनके जवाब हमारे पूछे गए सवालों के सही होते हैं या नहीं। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मेरा नाम यज्ञ है, मैं सुहाना मोहाली पंजाब से बात कर रहा हूँ।
0: और आप क्या करते हैं?
1: मैं 9th class में पढ़ता हूँ।
0: वाह क्या बात है, 9th class से पढ़ते हैं, इसका मतलब आप ब्रिलियंट हैं, पढ़ाई में बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं।
1: हाँ जी मैम।
0: जी अपना नाम एक बार फिर बताएं हमें।
1: यज्ञ।
0: यज्ञ, तो नाम आपका बहुत प्यारा है। तो यज्ञ आपके लिए पहला सवाल हमारी ओर से ये है कि लोह पुरुष किसे कहा जाता है?
1: हाँ जी,
0: लोह पुरुष, आयरन मैन।
1: आयरन मैन,
0: हाँ आयरन मैन किसे कहा जाता है? सो सॉरी, नो प्रॉब्लम यज्ञ, आप खूब सारी पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिएगा और एक दिन आप रेनबो जीनियस जरूर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो भाई हम यही चाहते हैं कि आप खूब सारी तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद आप निश्चित रूप से हमें कॉल कर सकते हैं और बन सकते हैं बॉलीवुड नहीं

0: नहीं भाई नहीं, बॉलीवुड की अगर आप जानकारी रखते हैं और बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब आप देंगे तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पे। हेलो, लगता है कहीं गायब हो गए हैं हमारे ये दोस्त। खैर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल हमें दोबारा कॉल मिलाएं और हम आपसे सवाल पूछेंगे जिसके जरिए आप बन सकते हैं हमारे आज के रेनबो जीनियस। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पे। हेलो हेलो दोस्त, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, अपना नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। आप हाँ, बहुत धीमी आपकी आवाज है। आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जी, हाँ अपना नाम बताएं।
1: संजय बात कर रहा हूँ।
0: जी संजय बात कर रहे हैं। तो संजय, क्या आपसे हम सवाल पूछें? आप रेडी हैं? हेलो, हाँ जी। तो पहला सवाल जो हमने अपने पिछले श्रोता से पूछा था कि लोह पुरुष यानी कि आयरन मैन किसे कहा जाता है?
1: मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है, जो हमारे फर्स्ट गृह मंत्री थे।
0: जी बहुत बढ़िया। अब आप ये बताएं कि भारत का पहला अखबार, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था?
1: भारत का पहला
0: अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या है?
1: न्यूज़पेपर
0: जी
1: ये तो मैम ये बंगाल का था ये, क्या तो
0: जी, उसके पास है। आप बोलिए बोलिए।
1: बंगाल, एक बंगाल का पेपर था पूरा, हिंदुस्तान टाइम।
0: नहीं, आपका सवाल, जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब आपने गलत दिया। आप निकट पहुंच गए थे अपने आंसर के। खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और आपने प्रयास।
1: मैम जवाब बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि आपका ऐसे में आ नहीं रहा है।
0: अच्छा आ नहीं रहा है, तो अब आप कहते हैं, अनुरोध करते हैं तो आपको बता देते हैं। जवाब है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट भारत का पहला अखबार था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आप यूं ही प्रयास करते रहें और प्रयास करते करते दिन सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों आप यूं ही कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। हेलो दोस्त, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इन दोस्त तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। खैर कोई बात नहीं, कोशिशों का सिलसिला यहाँ पर बरकरार रहेगा और हम और आप खूब सारी बातें करेंगे। हेलो जी, यहाँ पर हमारी फिर बात नहीं हो पाई है और जान लेते हैं हमारे, हम यहाँ पर संपर्क नहीं साध पा रहे हैं हमारे लिसनर्स के साथ। तो जो हमें कॉल कर रहे हैं, हम मित्रों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप कोशिश करते रहें और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था। हेलो, हमारी सारी कॉल्स आज ड्रॉप हो रही हैं, क्या बात है। और हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, प्रयास ही सफल होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आप सभी के लिए अगला ट्रैक हमारी ओर से पहुंचता हुआ आप तक।

0: चलते रहना ही तो जीवन का दस्तूर है। मंजिल मिलना एक बात है, लेकिन मंजिल तय करना उससे भी बड़ी बात है। हमारे बहुत से कॉलर्स हैं जो इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि भीड़ में से बाहर निकल अपने लिए एक मुकाम हासिल कर सके, और मुकाम हासिल करने के लिए कोशिशें करनी जरूरी है। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कौन जुड़ चुका है, आइए इनसे बात करते हैं। बात करने के साथ साथ इनसे हम सवाल पूछेंगे, और निश्चित रूप से हम जान पाएंगे कि ये जनाब जो हमारे से टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं,
1: हेलो,
0: क्या आज बन पाएंगे रेनबो जीनियस। हेलो, अपना नाम बताएं और बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं।
1: दीपिका मैम, आवाज बहुत कम आ रही है।
0: अब आ रही है मेरी आवाज आप तक?
1: जी जी जी, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: अमित तिवारी नाम है मेरा, और मैं हापुर यूपी से बात कर रहा हूँ। मैं निखिल दिव्यांग मैम।
0: जी जी अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैडम बहुत ज्यादा कम आवाज आ रही है आपकी।
0: अब देखिए, अब मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है?
1: ये पहुंच तो रही है, पर उतनी नहीं जिसमें मैं आपसे बात कर पाऊँ।
0: मुझ तक आपकी आवाज एकदम प्रॉपर एकदम सटीक आ रही है।
1: हाँ नहीं, आपकी थोड़ी कम आ रही है, चलो बोलिए थोड़ा सा समझेंगे।
0: जी आप हमें ये बताएं, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
1: राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
0: हाँ जी,
1: नहीं पता मैम, सॉरी।
0: नहीं पता, कोई बात नहीं, अमित आप हमारे साथ जुड़े हैं।
1: आपसे बात होगी वही मेरे लिए बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: मैंने प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा।
0: जी आपने प्रयास किया, सबसे पहली बात की आपका जो पेशेंस था, आपने इंतजार किया कि आपका नंबर आएगा और आप बात करेंगे, और उसके बाद सारा क्रेडिट हमें दे दिया।
1: भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो
0: जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा गुण आप जानते हैं क्या है, कि आप जीवन में जो कुछ भी अर्जित करें ना, किसी भी बड़े मुकाम पर पहुंचें, उसका सारा श्रेय अपने आसपास के लोगों को दे दीजिए। एक तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और आपका बड़ापन उसमें नजर आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अमित, और आप जीवन में सफल रहें, यही हमारी कामना है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, और कोशिशें कामयाब होती हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं।
2: जी गीतिका उनियाल जी।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुँच रही है, बताएं।
2: मैं राज बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: बिहार से बोल रहा हूँ।
0: जी जी राज, बताइए क्या करते हैं आप?
2: बस ऐसे ही छोटा मोटा काम कर रहा हूँ।
0: काम कोई छोटा मोटा नहीं होता मेरे दोस्त, आप शिद्दत से जिंदगी को प्यार से जी रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। और

0: आप समय निकाल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो आप काम ढूंढ रहे हैं, है ना? अच्छा, हम सवाल पूछें आपसे
1: सवाल पूछिए।
0: जी। तो सबसे पहले सवाल आपसे, जैसे पिछले दोस्त से मैंने पूछा था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की,
1: आवाज बहुत कम आ रही है गीतिका जी।
0: जी आप तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है, मैं ढूंढने की
1: जी
0: कोशिश।
1: जी आप बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत मुश्किल से कॉल लगती है।
0: जी, तो आप हमें ये बताएं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
1: रामकृष्ण मिशन की ऑप्शन देंगे तो बता देंगे, सामने सामने
0: ऑप्शन
1: में आ रहा।
0: ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन के बिना काम नहीं चलेगा।
1: नहीं ना, ऑप्शन बोलिए ना, हम वो बता देंगे आपको।
0: अच्छा, रामकृष्ण मिशन। एक तो चलिए दो ऑप्शन, दो ही ऑप्शन देती हूँ आपको। एक तो है परमहंस योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद।
1: स्वामी विवेकानंद जी।
0: चलिए ठीक है, सही जवाब है। ये बताएं
1: सही
0: कि
1: है ना?
0: जी, सही जवाब है। अब हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, याद
1: नहीं
0: रखिएगा।
1: नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: हाँ, अच्छा ये बताएं कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
1: स्वामी
0: कुछ नजदीक है?
1: जी शुरू से है, वो नाम बोल रहे हैं स्वामी, सॉरी।
0: पूरा जवाब देंगे दोस्त, तभी आपके लिए मैं अगला क्वेश्चन
1: हाँ,
0: करूंगी।
1: स्वामी स्वामी से उसका शुरू होता है, और वैसे भी यूपीएससी बीपीएससी सब में ऑप्शन दिया जाता है मैडम।
0: देखिए ये वो कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन दोस्त मैं तो चाहती हूँ कि आप सही सही जवाब खुद बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा।
1: हाँ, एक ऑप्शन दे दीजिए, स्वामी स्वामी से शुरू होता है
0: देखिए
1: उनका।
0: आप नजदीक हैं, आप नजदीक हैं।
1: स्वामी विवेकानंद ऐसे कुछ है, सॉरी।
0: चलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, पर मैं यही कहूंगी दोस्त आपने कोशिश की, प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जैसा कि हमने पहले भी
1: जी जी
0: कहा
1: जी ये
0: था।
1: लाइन बहुत अच्छा है, भले ही हम नहीं जीत पाते हैं लेकिन सीखने को बहुत मिलता
0: जी, सीखने को बहुत मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है
1: जी।
0: कि हम
1: और जितने भी सवाल होते हैं ना तो उसको नोट कर लेते हैं, बाद में इसका अध्ययन भी करते हैं।
0: जी, और सबसे बड़ी बात दुनिया में आज पता है क्या है? एक दूसरे के साथ संवाद करना, हम संवाद करना
1: जी
0: भूल
1: जी जी
0: गए।
1: जी जी बिल्कुल, आकाशवाणी को 90 साल हो गया है,
0: 90 साल
1: और
0: होने वाले हैं, इस पर भी एक प्रश्न पूछा जाएगा हमारे दोस्तों से, तो आप पहले ही तैयार हो जाएं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे इस वक्त दे दिया है। बिल्कुल, आकाशवाणी अपने पूरे 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और
1: जी
0: हम
1: जी जी
0: बहुत
1: प्रसार
0: सौभाग्य,
1: भारती के लिरिक्स प्रसून जोशी जी बने हैं।
0: आपने मेरा एक और सवाल मैंने इसका
1: आपने फेसबुक पे भी, आप फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं
0: जी
1: आपका।
0: जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका दिल से राजजी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं यही कहती हूँ कि जिंदगी हमें ना हर बार ऑप्शंस नहीं देती, इसीलिए जो मौका हमें दिया जाता है उसे झटक करके लपक लेना चाहिए। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन इंतजार करते करते हमारे ये दोस्त जो हैं वो थक गए। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं कि कभी तो सुबह आएगी और कभी तो वो घड़ी आएगी जब हमारे मन मुताबिक होगा, बिल्कुल मन मुताबिक होगा वो सब जो हम चाहते हैं। ये अगला ट्रैक हमारी ओर से आप सबके लिए।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस, जहां हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं इसलिए आप हमारे सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। हेलो हेलो दोस्त, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि मैक्सिम दोस्त ये कहते हैं कि आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपकी दिल की आवाज, आपके घर पर जो लोग हैं उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है। दोस्त एक बार, हाँ जी जी जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: जी उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और क्या आपसे सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया जाए?
1: जी
0: जी, आप हमें बताइए, हाल ही में यानी कि 2025 में इंटरनेशनल सैटेलाइट स्पेस में यानी कि ISS में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
1: सुधांशु
0: शुक्ला जी। अगला सवाल आपसे ये है कि आप हमें बताएं कि किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2024 जीता था?
1: ये T20 का भारत में जीता है।
0: जी बहुत बढ़िया। अगला सवाल, भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है?
1: ज्ञानेश कुमार।
0: वेरी गुड, तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की?
1: जी
0: बहुत बढ़िया। अच्छा आप हमें बताएं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
1: रिपीट करेंगे, समझ नहीं आया क्या?
0: सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
1: बेंगलोर।
0: जी बेंगलोर, वेरी गुड। अब थोड़ा सवाल पेचीदा हो जाए दोस्त, क्या कहते हैं आप?
1: बिल्कुल हो जाएगी
0: जी। जिसने ज्ञान को अर्जित किया है उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इस बात से तो आप भी वाकिफ हैं। तो दोस्त पेचीदा सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछूंगी, हाँ पर एक सवाल आपसे ये है कि आप हमें ये बताएं, भारत की पहली महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
1: किरण बेदी।
0: वाह क्या बात है, तो सबसे पहले खुद के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज।
1: जी धन्यवाद।
0: तो मैं बजा देती हूँ, आप कैसे बजाएंगे जनाब, आप तो विनर हैं हमारे आज के। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त आपको आज के प्रोग्राम के, आज आप पहले रेनबो जीनियस हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। किस चीज की तैयारी करते हैं आप, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
1: अभी तो मैडम हरियाणा SSC की तैयारी चल रही है।
0: वाह क्या बात है, तो हमारी ओर से आपको अग्रमी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामना, आप विजय हो, विजय रथ पर आप हमेशा विराजमान हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको हम यहाँ बधाइयां देना चाहते हैं।
1: धन्यवाद
0: जी, जुड़ चुके

0: ये हमारे अगले कॉलर पे हर कोई बनना चाहता है रेनबो जीनियस, और ये चाहत ये ललक हमें कभी कभी जिंदगी की उस मुकाम पर लेकर जाती
1: हेलो।
0: है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता, हमने भी नहीं सोचा था कि कौन अब हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आपका प्यार आपको ही
1: नमस्कार
0: आ गया
1: मैम।
0: है। नमस्कार, अपना नाम बताएं और बताएं आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से
1: जी
0: बोल रहे हैं।
1: रामधारी बात कर रहा हूँ।
0: राम बिहारी जी?
1: जी
0: जी
1: हिसार हरियाणा से। जी
0: जी बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आप सबसे पहले हमें ये बताएं, रेड प्लैनेट, लाल ग्रह
1: जी
0: किसको कहा जाता है, कौन से ग्रह को क्या कहा
1: ये
0: जाता है?
1: मार्स को कहा जाता है, मंगल ग्रह को।
0: वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि मिजोरम की कैपिटल क्या है?
1: आइजोल।
0: हाँ, अगला सवाल आपसे, आप हमें बताएं कि विंग्स ऑफ फायर इसके ऑथर कौन है?
1: रिंग ऑफ फायर
0: विंग्स ऑफ फायर, हाँ
1: जी बुक है ये मैम,
0: हाँ ये किताब का नाम है
1: विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है मैम।
0: जी। तीन सवाल आप सही दे चुके हैं अब तक। अब आप हमें बताएं, सिटी ऑफ ड्रीम्स किसे कहा जाता है?
1: सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया ये कहा जाता है मुंबई, मुंबई को सपनों का शहर।
0: वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घाना बर्ड सैंक्चुरी कहाँ स्थित है?
1: कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क
0: घाना घाना बर्ड सैंक्चुरी, हाँ
1: घाना भरतपुर राजस्थान में मैम।
0: वेरी गुड, शाबाश। तो आपके लिए जोरदार तालियां, आप बन गए हैं हमारे आज के रेनबो जीनियस। अच्छा ये
1: जी
0: बताइए कि आप आकाशवाणी सुनते हैं?
1: मैम बहुत लंबे अरसे से मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
0: क्या बात है, तो आप ये भी जानते होंगे कि ये सवाल आपके रेनबो जीनियस बनने से अलग का है। आज आपको
1: जी
0: मैं चार चांद लगाना चाहती हूँ अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे। तो आप ये
1: जी
0: बताएं कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं,
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या आप जानते हैं कि वो तारीख क्या है जिस दिन ये 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे?
1: आई थिंक ये है 1936 था, 23 जुलाई।
0: नहीं, खैर कोई बात नहीं दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेनबो जीनियस बनने के लिए। और आप जब जीनियस बनते हैं तो दिल मेरा खुश होता है, मुझे लगता है कि मेरा काम यहाँ सार्थक हो गया। बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए
1: थैंक
0: और
1: यू, थैंक यू
0: आज
1: सो मच मैम।
0: रेनबो जीनियस बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोस्त यूं ही प्रयास करते रहें, और प्रयास करने के बाद जब आप आगे चलकर किसी मुकाम पर पहुंचेंगे तो आप जरूर ये कहिएगा कि आकाशवाणी सुनते थे और आकाशवाणी में हिस्सा भी, यानी कि रेनबो जीनियस प्रोग्राम में आपने हिस्सा भी कई मर्तबा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां तमाम दोस्तों को जिन्होंने आज रेनबो जीनियस का खिताब प्राप्त किया है। और सबसे अच्छा खिताब दुनिया में कौन सा होता है? सबसे अच्छा खिताब मेरे मायने में एक अच्छा नागरिक होने का और एक अच्छा इंसान होने का होता है। अगर लोग आपसे मिलते हैं और ये कहते हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, आपसे मिलकर हमेशा ही सुखद अनुभूति होती है, तो यकीन मानिए आप सबसे अच्छे हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जूनियर्स, जहां हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल जिसके जरिए आप बन सकते हैं हमारे आज के जीनियस। तो देखते हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कौन जुड़ गया है या जुड़ गई है, ये तो देखने के बाद ही महसूस होगा, यानी कि कॉल बात करने पर ही पता चलेगा। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं और आप बताएं कि आप कहां से बोल रहे हैं।
3: जी, मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं।
2: जी आकाश, आप अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दें क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है। एको की वजह से क्या होता है?
3: आपकी आवाज ना बहुत धीमी आ रही है आज।
2: आज तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, आज तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एकदम अंदर से बात करूँ आपके साथ, क्योंकि जितने आप ऊर्जावान हैं उतनी ज्यादा मैं ऊर्जावान हूँ। बताइए कि आप तक मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है?
3: हाँ, अब क्लियर है।
2: क्लियर है ना?
3: ऑडिबल है।
2: ऑडिबल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब सवाल आपसे पूछा जाए यहाँ पर, अगर आपकी इजाजत हो तो।
3: हाँ जी, हाँ जी मैम, पूछा जाए।
2: अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है?
3: बैडमिंटन में लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब जीरो होता है स्कोर अपोनेंट का।
2: जी अच्छा, नेक्स्ट आप हमें बताएं कि, अच्छा आप मुझे बताएं कि क्या टेनिस में भी ऐसा होता है?
3: टेनिस का तो नहीं पता, हम बैडमिंटन का पता है।
2: हमने तो सुना है कि टेनिस में होता है।
3: बैडमिंटन में होता है मैम।
2: अच्छा जी, लगता है मुझे खेल सीख कर आना पड़ेगा पहले, तब तभी मैं आपसे सवाल पूछ पाऊंगी। चलिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप और हम दोनों ही विरोधाभास में हैं, तो हम आपसे अगला सवाल पूछ

0: सिटी ऑफ जॉय,
1: ये कोलकाता को कहा जाता है मैम।
0: चलिए इसको हम आपका पहला सवाल जवाब मानते हैं। अगला आप मुझे ये बताएं कि इग्नू की फुल फॉर्म क्या है?
1: मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना जरा।
0: इग्नू, इग्नू की फुल फॉर्म बता दें आप।
1: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी।
0: वेरी गुड, ये आपका सही जवाब हम तक आया। अच्छा अब आप हमें ये बताएं कि नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है?
1: नेशनल
0: यूथ डे,
1: ये 12 फरवरी 12 जनवरी को मनाया जाता है।
0: जी, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन इस दिन होता है,
1: जी
0: जन्म
1: मैम।
0: दिवस मनाया जाता है। आपने एकदम ठीक कहा। ये आपका तीसरा तीसरा सवाल ना हमने कर चुके हैं। अब चौथा सवाल है कि मधुबनी फोक पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है?
1: ये मिथिला रीजन से आती है, बिहार के जो
0: वेरी गुड,
1: राज्य में है।
0: शाबाश। अच्छा अब आप हमें बताएं BARC का फुल फॉर्म क्या है?
1: मैम एक बार रिपीट करना।
0: BARC इसका फुल फॉर्म क्या है?
1: बार्क,
0: हाँ जी, बार्क।
1: भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में, महाराष्ट्र में, सॉरी
0: जी,
1: बॉम्बे में।
0: जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हमारे आज के रेनबो जीनियस आप बन गए हैं। जिस तरह से मैंने पिछले श्रोता से पूछा था, आपसे पूछती हूँ। आकाशवाणी सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं?
1: जी मैम। हाँ रेगुलरली तो नहीं सुन पाते, लेकिन संडे का जो ये शो है ये स्पेशली खास रहता है।
0: क्योंकि इसमें सवाल पूछे जाते हैं। और आप कुछ तैयारी कर रहे
1: हाँ
0: हैं आकाश?
1: हाँ जी मैं तैयारी कर रहा हूँ।
0: किसी से तैयारी कर रहे हैं आप?
1: मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ।
0: वेरी गुड। तो एक टीचर को तो कहते हैं ना कि बहुत सारा पढ़ना होता है, तभी अपने स्टूडेंट्स
1: हाँ
0: की नॉलेज को वो
1: यस
0: अपग्रेड कर सकते हैं। हम वो आपको बहुत बहुत
1: मैम
0: शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप पर आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप आकाशवाणी सुनते हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि आकाशवाणी पूरे अपने 90 वर्ष कर रहा है, यानी
1: जी
0: कि
1: मैम ये 8 जून 1936 को स्थापना हुई थी इसकी।
0: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे मेरे आज के सुपरस्टार यानी कि जिनको मैं चार चांद लगाना चाहती थी, मेरे आज के शो के चार चांद हैं आप, क्योंकि आपको
1: जी
0: इस बारे में
1: मैम
0: जानकारी,
1: धन्यवाद।
0: इस बारे में पहले से पता था। जानते थे इस बारे में या फिर क्योंकि
1: नहीं
0: आप
1: मैम ये फिर जैसे कि आपके एक श्रोता जुड़े थे कि फेसबुक में लगातार पोस्ट किया जा रहा है
0: हाँ
1: सोशल
0: हाँ
1: मीडिया पे आकाशवाणी
0: हाँ हाँ हाँ
1: के, तो इससे
0: जी
1: नॉलेज मिलती है।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही। और हाल ही में प्रसून जोशी, जाने माने फिल्म रिसिस्ट, जिनके आपने बहुत से नगमे सुने होंगे, प्रसून जोशी वो भी चेयरमैन बने हैं प्रसार भारती के।
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी हाँ पहले जी
0: यूं ही प्रसार भारती और प्रसार भारती के अंग हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी। यूं ही फलते फूलते रहें, आप जैसे श्रोता नित्य प्रति हमसे जुड़ते रहें। और क्योंकि आप टीचिंग में जाएंगे तो आगे चल के आप भी अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आप
1: जी मैं
0: आकाशवाणी
1: तो
0: सुनिए।
1: बताता हूँ मैम, मैं तो
0: जी जी
1: बताता हूँ कि संडे को
0: क्या आप
1: 4 बजे।
0: हमारा
1: हाँ
0: प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंडिया सुनते
1: हाँ
0: हैं?
1: मैं प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप भी कॉल मिला रहे करें, लेकिन
0: जी
1: आजकल
0: क्या आप
1: की
0: गुड
1: एग्जाम
0: मॉर्निंग
1: की
0: इंडिया सुनते,
1: इतना
0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर
1: जी
0: सुनते हैं?
1: मैम सुबह इतना टाइम जल्दी नहीं मिल पाता तो
0: जी तो
1: भागा दौड़
0: आप
1: के
0: अपने
1: आते।
0: स्टूडेंट्स को ये भी कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुने, सैटरडे संडे के दिन भी सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी
1: जी
0: बहुत
1: मैम
0: सारी ज्ञानवर्धक बातें की जाती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। तो दोस्त आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप यूं ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। और सबसे बड़ी बड़ी बात आपके लिए ये कहना चाहूंगी कि आप हमेशा सच्चे मार्गदर्शक बने, सबको रास्ता दिखाएं और दूसरों के लिए रास्ता बने। मंजिल दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन रास्ता बनने वाले जो खुद रास्ता बन जाते हैं किसी के लिए वो कम। तो आपको बहुत बहुत
1: जी
0: शुभकामनाएं, और हम यही कहेंगे कि आपके हाथों में बागडोर है देश की,
1: जी
0: युवाओं।
1: मैम धन्यवाद धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ पर आपकी दोस्त गीतिका आपसे इजाजत लेती है और ये कहती है कि बहुत मजा आया हमें हमारे रेनबो जीनियस आज मिले हैं। और यकीन मानिए आपसे मोहब्बत जो है ना वो बेपनाह है, और क्योंकि बेपनाह मोहब्बत जो होती है ना उसे कभी कभी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे बस जब भी जहां मिलते हैं, जिस मोड़ पर मिलते हैं, ये कहा जाता है तुम आज ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए कल भी इम्पोर्टेंट थे, और आने वाले समय में भी तुम हो और तुम ही रहोगे। फिलहाल हमारे लिए बस आप ही हैं और आप ही रहेंगे। गीतिका यहां से लेती है इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात। शाहिद आ चुके हैं स्टूडियो में और आपके लेकर आए हैं सिटी लाइट्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293

0: मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई द्वारा विकसित मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश अधिक उत्पादन करेंगे। अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल निक एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 18वें ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उधर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से शाम 7:30 से होगा। आज पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और अब समय है आपके फेवरेट इवनिंग शो सिटी लाइट्स का। तो सिटी की बहुत सारी आपकी काम की अपडेट्स और एक्साइटिंग बैक टू बैक म्यूजिक भी रहेगा मेरे साथ।

102.6 देश का नंबर वन रेडियो है ये रेनबो प्रोग्राम सिटी लाइट्स। आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज है बहुत ही खास दिन। 3 मई है आज और आज के दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है। फ्री जर्नलिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रेस की आजादी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फिर से समझने का, एक बार फिर से उनको समझने का, जानने का दिन है। आज दुनिया भर में इसके स्टेटस को इवैल्यूएट करना, मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन जर्नलिस्ट को उनकी डेडिकेटेड करेजियस ड्यूटी के लिए ऑनर करना, याद करना, उनको सम्मानित करना जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान गंवा दी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र, मानवाधिकारों, जवाबदेही और शांति के लिए बेहद जरूरी है। फ्री एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर पीस। आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद, ये है देश का नंबर वन रेडियो 102.6 आपका अपना रेनबो। आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम दिल से दिल तक। Let the bass

ये गर्मा गर्म ट्रैक गर्म मसाला से सोनू निगम की आवाज, आप सुने मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। एमसीडी ने एक बड़े फैसले में दिल्ली के 48 गांवों को अर्बनाइज करने के डीडीए के प्रपोजल को अब मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उन 48 विलेजेस का प्लान डेवलपमेंट किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी बेसिक एमिनिटीज का अब होगा एक्सपेंशन। डीडीए ने फरवरी में ये प्रपोजल कॉरपोरेशन को भेजा था। एमसीडी के मुताबिक जिन 48 गांवों को शहरीकरण की मंजूरी दी गई है उनमें आउटर नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। और यहां आने वाले समय में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जानी है। आपको बताता हूं कि वो कौन से गांव हैं जिन्हें शहरीकृत यानी अर्बनाइज करने का प्लान है। ये गांव है पल्ला, सिंघोला, बाकोली, हमीदपुर, ताजपुर कलां, कादीपुर, मुंगेशपुर, निजामपुर, औचंदी, शाहपुर गढ़ी, रसीदपुर, ततेसर, झटीकरा, कंगनहेरी, दुलतपुर, राजपुर कलां, घुम्बनहेड़ा, रावता, ठांसा, खेड़ा, ईसापुर, बाकरगढ़, गालिबपुर, मुंडेला कलां खुर्द, सुरखपुर, छावला, बिंदापुर, डाबरी, असालतपुर, खवाद, खेला खानपुर, जफराबाद, बड़ूसराय, दोराला, राघवपुर, शिकारपुर, नानकहेड़ी और सभावपुर, जगतपुर, बदरपुर खादर, खानपुर खनाल और चिल्ला इनमें शामिल हैं। तो इन गांव की किस्मत बदल जाएगी और यहां पर सड़क, बिजली, पानी और सीवर की बेसिक एमिनिटीज भी पहुंच जाएंगी बहुत जल्द। देश का नंबर 1 रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सैटेलाइट्स, आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

केके की शानदार आवाज, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद, प्रोग्राम सिटी लाइट्स। और सिटी की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में मौजूद शहर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एरियाज में शामिल है शांतिवन और राजघाट क्रॉसिंग के बीच की रिंग रोड। अभी शांतिवन और राजघाट के बीच की जो रोड है, इन दोनों क्रॉसिंग के बीच की रिंग रोड को किया जाएगा ब्यूटीफाई। इसका ब्यूटिफिकेशन प्लान आ गया है। इस प्लान के तहत पीडब्ल्यूडी राजघाट एरिया की सड़क का रिनोवेशन करेगी, जिसमें पहले से बेहतर लाइटिंग होगी और स्टनिंग स्ट्रीट लाइट्स यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही ग्रीनरी और बागवानी भी इसका अहम हिस्सा है, इसके रिनोवेशन का, इसके रीडेवलपमेंट का, और इसको ब्यूटीफाई

का। हालांकि राजघाट के अपोजिट बेला रोड पर जो सामने बंजर पड़ा था ग्राउंड, उसका बड़ा हिस्सा एक खूबसूरत पार्क में ऑलरेडी तब्दील किया जा चुका है, डेवलप हो चुका है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक इस इनिशिएटिव का मकसद है नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस वाले इस एरिया को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, क्योंकि राजघाट भारत आने वाले फॉरेन डिग्निटरीज की विजिट के दौरान अक्सर देखा जाता है और यहां पर विजिटर्स की काफी बड़ी तादाद आती है।

सिटी लाइफ में कर लेते हैं बात थोड़ी सी मौसम के बारे में भी। हालांकि मौसम जिस तरीके से चल रहा है लगातार कभी गर्मी और कभी थोड़ी सी कम गर्मी, तो लग रहा है कि अभी आने वाले दिन भी थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं। थर्सडे को चली आंधी और बारिश के मौसम ने एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल दिया। लोगों को लू और जबरदस्त गर्मी से राहत मिल गई और सैटरडे शाम मौसम विभाग ने अलर्ट दिया कि आज यानी संडे के मौसम में फिर से एक बार करवट ली जाएगी। हालांकि अभी तो ठीक ठाक सी धूप है, हालांकि मौसम में उतनी गर्मी तो नहीं है, हवा में ठंडक है थोड़ी सी, लेकिन वो बात भी नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि मौसम फिर से करवट लेगा और इस बार 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा रहने वाला है। यानी कि आने वाले 3 दिन मौसम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। इसमें बादल गरजने, बिजली चमकने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के अलावा लाइट रेन भी प्रेडिक्टेड है। तो जाहिर है जब ये सब मौसम में बदलाव आएगा तो फिर इसका असर टेम्परेचर पर भी पड़ेगा और वो भी गिरेगा। मैक्स टेम्परेचर भी और मिनिमम टेम्परेचर भी, फिलहाल जो 41 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था मैक्सिमम, वो भी गिर करके थोड़ा सा नीचे आ चुका है। और अगर ओवरऑल फोरकास्ट की बात करें तो ये पूरा हफ्ता गर्मी के तेवर से बचाने वाला रहेगा जो शुरू हो रहा है। तो आप भी राहत की ठंडी सांस लें एंड एंजॉय द प्लेजेंट चेंज ऑफ वेदर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के आदेश के अनुसार दिल्ली में अब कोई भी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल पेरेंट्स या गार्जियंस को एक महीने से ज्यादा की स्कूल फीस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। डीओई की तरफ से आया है ये नया ऐलान किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ऐसा पेरेंट्स के ही जरिए की गई बैक टू बैक कंप्लेंट्स के कारण किया गया है, क्योंकि इस तरह से उन पर अनड्यू फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, खास तौर पर जो लोग लो या मिडिल इनकम ग्रुप्स के में आते हैं या उन लो या मिडिल इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। लेकिन यहां साथ ही डीओई ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी पेरेंट्स या गार्जियंस बच्चों के अगर वो चाहते हैं कि एक महीने से ज्यादा की फीस खुद से ही जमा करना चाहते हैं तो उनको कोई एतराज नहीं है, वो जमा कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो नहीं चाहते, एक महीने की फीस से ज्यादा उनसे नहीं मांगी जा सकती। 102.6 आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और एक एक्साइटिंग ट्रैक स्पेशली फॉर यू।

अब यहां से मुझे है जाना, क्योंकि चांद ने है आना। चंद्रानी मुखर्जी होंगी अगला प्रोग्राम लेकर के मैसेज मसाला मिक्स आपके बीच। तो आप एंजॉय करें और अपने अपने मसालेदार मैसेजेस उनको भेजें। और यहां पर शाहिद को देविदा, टेक केयर, बाय बाय, और सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की

0: सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और आज की शाम आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं क्योंकि आज की शाम हम आपको हीरो बनाने वाले हैं। आज का टॉपिक थोड़ा फिल्मी है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा फनी भी है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी पर अगर कोई फिल्म बने तो उसमें आपका हीरो या हीरोइन कौन होंगे या कौन होंगी? क्या वो होंगे शाहरुख खान जैसे रोमांटिक किंग या दीपिका पादुकोण जैसी ग्रेसफुल क्वीन? मैसेज कीजिए और हमें बताइए कि आपकी लाइफ की फिल्म का स्टार कौन होगा। फ्रेंड्स, आपको अपने दिल की बात बतानी है 9868107070 पर, 9868107070 पर। आकाशवाणी रेनबो पर आवाज की दुनिया का चांद मुखर्जी आपके साथ है और चांद मुखर्जी को ही बतानी है आपको अपने दिल की बात और किसी को बताइएगा मत चुपके से।

0: दोस्तों, में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी में कोई अच्छा काम करेंगे और करते रहेंगे, और उनके ऊपर अगर लाइफ में फिल्म बनेगी या आपके लाइफ में कोई फिल्म बनती है, अगर आज जो हमने जाना चाहा है मैसेज मसाला मिक्स में, वो ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई फिल्म बनती है तो आप बतौर हीरो या बतौर हीरोइन किसे अपने अपोजिट में देखना चाहेंगे। यही एक छोटा सा प्यारा सा इमोशनल सा क्यूट सा क्वेश्चन आज हमने आपसे जाना चाहा है। एक टॉपिक प्यारा सा रखा है, इस टॉपिक पे आप बता सकते हैं 9868107070 पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपको सुनाएंगे एक बेहतरीन सा ट्रैक, और उसके बाद आपके मैसेजेस में आएंगे। क्योंकि दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में कि कोई उनके लाइफ की जो हीरोइन हो या उनके लाइफ का जो हीरो हो वो डांसर हो, या फिर वो एक्टर हो, या फिर वो डॉक्टर हो, या मतलब कुछ भी। या लेकिन हम चाहते हैं कि फिल्मों की हीरो की बात कर रहे हैं, फिल्मों के हीरो की, तो वो आप किसको चुनना चाहेंगे या किसको चुनना चाहेंगी हमें बता सकते हैं 9868107070। ब्रेक, उसके बाद गाना, और उसके बाद आपके मैसेजेस चांद मुखर्जी के साथ।
1: जब कोई

0: दोस्तों यूं तो जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलें परेशानियां दुख हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी देर आप हमारे साथ रहें उतनी देर आप सारे दुख सारे गम सारी परेशानियां भूल जाएं और बस सुनते रहें चांद को और उसी के साथ उसके साथ ख्वाबों की दुनिया में खो जाएं। और ऐसे ही ख्वाब नहीं, कभी हकीकत में भी ये तब्दील हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो आज हमने आपसे जानना चाहा है कि अगर आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बनती है तो एज अ हीरो या एज अ हीरोइन आप किसे सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस आए हमारे पास, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसे। लिखते हैं कि अगर मेरी जिंदगी पर फिल्म बनेगी तो हीरो कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि एक आम इंसान होगा जो गिरकर भी हर बार उठता है, हालात से लड़ता है और अपनी सपनों को जिंदा रखता है। हीरो के लिए मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुनूंगा क्योंकि वो सादगी, संघर्ष और हकीकत को बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। और हीरोइन के लिए विद्या बालन क्योंकि वो मजबूत, समझदार और भावनाओं को बखूबी से पर्दे पर उतारती हैं। कहानी कोई परियों की नहीं होगी बल्कि हकीकत, क्योंकि नाम जन्म बाबा अपना नाम तो आपने लिखा ही नहीं, आपने नाम तो लिखा ही नहीं अपना, तो चलिए कोई बात नहीं। ये इन्होंने मैसेज भेजा है हमें, जहाँ से भी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, कहाँ से आया है ये मैसेज, लिखते हैं कि अपना नाम लिखा है, बहुत सारे नाम आए हैं हमारे पास, हितेंद्र दास, महेश, मनीष दास, वर्षा दास, शेफाली दास, मधाब दास। और एड्रेस इन्होंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि स्टेट आसाम से, इतनी दूर से मैसेज किया आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज किया है हमें बहुत सारे लोगों ने, अगला मैसेज में हम आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी मूवी का हीरो एक फॉर्मर हो, ना कि SRK और दीपिका, क्योंकि उनके हार्डवर्क से हम कुछ अच्छा खा पाते हैं। क्या बात है, जूही कुर्मी जी ने ऐसा लिखा है गोलाघाट आसाम से। जी बहुत अच्छी बात लिखी आपने। मनोज बंसल, हंसते रहो रेडियो क्लब हांसी हरियाणा से, नमस्कार जी। मैं माधुरी दीक्षित या डिम्पल कपाड़िया जी के साथ काम करना चाहूंगा। भाई वाह, बड़े अच्छे विचार हैं आपके, मतलब लेकिन वो भी आपके साथ करेंगी, ये तो मतलब दोनों में से लड़ाई ना हो जाएगी, कौन करना चाहेगा आपके साथ काम, है ना। अगला मैसेज हमारे पास आया है, मेरे ऊपर फिल्म बनाई जाए तो साजन फिल्म के संजय दत्त मेरे किरदार में होंगे, रंजीत कुमार मंडल, अररिया बिहार से, ऐसा लिखते हैं। क्या बात है रंजीत जी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, मेरे लाइफ पर कोई फिल्म बनती है तो अपने उस किरदार के लिए दिलीप कुमार साहब को लेना चाहता, लेकिन दिलीप कुमार जी के नहीं होने पर बिग बी बच्चन जी भी चलेंगे। क्या बात है, हीरा मड़ी साहब, दंतरेती, भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़ से, ऐसा लिखते हैं। बड़े अल्लाह अच्छे विचार हैं आपके। अगला मैसेज हमारे पास आया है अनिल शर्मा अंकल, सरिता विहार, अच्छा उन्होंने लिखा है, अच्छा अंकल जी प्रणाम। लिखते हैं, मुझे यदि फिल्म बनाने का मौका मिले तो मैं हीरो और मेरी पत्नी हीरोइन का किरदार बखूबी निभाएंगे। फिल्म की खुराफाती कहानी में इश्क प्यार का तड़का और डायलॉग खुद लिखूंगा। गुजारिश है, अच्छा इन्होंने गुजारिश की है कि मोहम्मद सरफराज आलम जी जो कविताकार हैं उनकी तारीफ मेरी तरफ से बोल दीजिएगा, अच्छा लगेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि देखिए जब हम किसी की हौसला अफजाई करते हैं ना तो वो खुद ब खुद जिंदगी में उसको और ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। चलिए एक प्यारा सा ट्रैक आपके लिए सुनाते हैं और इसके बाद फिर जुड़ जाएंगे हम दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन उससे पहले मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपको वो गाना सुनाएंगे, उसके बाद आपके मैसेजेस आएंगे। सुनते रहिए बस रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद। दोस्तों आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है जीरो।

0: आप कौन सी फिल्म अपनी जब बनाएंगे, अगर आपके नाम से कोई फिल्म बनती है, आपके ऊपर कोई फिल्म बनती है, तो आप अपने फिल्म में किस एज ए हीरो या एज ए हीरोइन लेना चाहेंगे? यही आज हमने जानना चाहा है आपसे मैसेज मसाला मिक्स में. अभी आपके मैसेजेस हम लेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर हो जाएंगे आपके पास. सुंदरी आकाशवाणी रेनबो.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर.
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात. रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए.
0: दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब आपको टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है और सच में आप चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ की फिल्म बने तो आप इसे एज अ हीरो ले, इसे एज अ हीरोइन ले. फिलहाल हमारे पास मैसेज आया है विकास जी का, लिखते हैं, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, मेरे ऊपर फिल्म बनी तो धर्मेंद्र जी बनेंगे हीरो जी. अगर बनती, अगर वो होते तो वो ज़रूर खुश होते सुनकर कि आप उन्हें लेना चाह रहे हैं एज अ हीरो अपनी तरफ से. अगला मैसेज हमारे पास आया, मेरी प्यारी पूर्णिमा का चांद, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग डियर, मेरी लाइफ पे पिक्चर बनी तो उसकी स्टोरी मेरे सन इन लॉ ही लिखेंगे एंड रोल भी उन्हें ही करना होगा क्योंकि वो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी दो. अच्छा, क्या बात है, वो बहुत ही आगे सक्सेसफुल हो रहे हैं. इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैसेज किया. मिसेज धर्म भाटिया जी ने रोहतक से लिखा है कि वो जो उनके सन इन लॉ हैं वो बहुत सारी पिक्चरों में काम कर रहे हैं और आगे भी उनको सक्सेस मिले, यही हमारी दिल से दुआ है. अगला मैसेज हम ले लेते हैं. अगला मैसेज है कि सुने हैं, अच्छा लिखते हैं, जान जी कैसे हैं, आपको सुनते हैं कुछ शो में, बट मैसेज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. मुझ पर फिल्म बनी तो उसमें हीरो अजय देवगन होंगे, सांवले रंग में गजब लगते हैं, काजोल के साथ जोड़ी भी अच्छी लगती है. डॉली जी ने हमें मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉली जी. अगला मैसेज हमारे पास आया है, मैं अपने अपोजिट में रोहित सराफ को पसंद करूँगी, कोई क्यूट सी स्टोरी हो जिसमें बचपना बहुत हो. अच्छा जी, ये अच्छी बात लिखी आपने, नाम नाम नहीं लिखा अपना.

0: अच्छा, इनका धर्म, धर्म जी ने हमें लिखा है छत्तीसगढ़ से। मेरा मैसेज पढ़ लीजिए, आप ही का मैसेज पढ़ रहे हैं जी, आप ही का मैसेज पढ़ रहे हैं। इनका सरिता नाम है, इनका सरिता धली। अच्छा जी, इनका नाम देखिए, हमने ऊपर मैसेज में ढूंढा है आपका, आपने नीचे नाम नहीं लिखा था। अगला मैसेज हमारे पास आया है कि मेरी फिल्म का हीरो होगा वक्त और हीरोइन होगी आंधी। फिल्म का नाम होगा फिल्म का नाम होगा वक्त का तकाजा। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली जी ने लिखा है जी। बहुत बहुत आपके मतलब खतरनाक विचार हैं, बहुत ही तूफानी पिक्चर बनेगी आपके ऊपर। जान जी, सत श्री अकाल। सनी देओल पाजी मेरी फिल्म की हीरो होंगे क्योंकि हम दोनों एकदम सिंपल मैन हैं, लेकिन हमसे कोई पंगा लेता है तो ये 2.5 किलो का हाथ बन जाता है हम दोनों का। हैप्पी बर्थडे, सेम डे जी है जी, 19 अक्टूबर को। प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से ऐसा लिखते हैं जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त थी हमारे देश के हीरो के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। प्रियंका चोपड़ा, अगला मैसेज आया है पूजा जी का फ्रॉम कर्नाटक से, लिखती हैं कि प्रियंका चोपड़ा होंगी मेरी फिल्म की हीरोइन ताकि मेरी लाइफ स्टोरी इंटरनेशनल रिलीज हो। क्या बात है, कितने दूर का सोच लिया आपने, और वो कॉन्फिडेंट फेमिनिस्ट हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूजा जी, आपको बहुत बहुत हम कहना चाहेंगे कि ऐसा आपकी जो सोच है वो आगे चल के डेवलप हो जाए और बिल्कुल ये मूर्त रूप ले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। नमस्कार, मेरे लिए धर्मेंद्र जी एक हीरो हैं, सदाबहार जमीन पर जुड़े हुए इंसान, रियल रील हो या रियल लाइफ के भी हीरो। रवि जोशी ने मेरठ से हमें लिखा है। रवि जोशी जी, बिल्कुल सही बात है, धर्मेंद्र जी एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने बहुत ही, जिनके लिए कहा जाता है कि वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे, लेकिन अब हम एक ज़मीन से जुड़ी हुई बात करना चाहते हैं आपसे। कुछ ज़रूरी संदेश आप तक तो पहुँचाएंगे और उसके बाद प्यारा सा ट्रैक आएगा आपके रेडियो सेट्स पर आकाशवाणी की तरफ से, आकाशवाणी रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मैसेज मसाला मिक्स जान के साथ।

0: इसीलिए तो कहता हूं यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो।
1: दोस्तों वैसे तो अपनी जिंदगी में हर कोई एक हीरो होता है, हर कोई एक हीरोइन होती है, क्योंकि हम सबको जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है कभी ना कभी। विजय कुमार जी हमें मैसेज लिखते हैं, विजय कुमार नामदेव जी दिल्ली से लिखते हैं कि अगर उनकी लाइफ पर फिल्म बनती है तो वो जरूर गोविंदा को ही अपने किरदार में देखना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करते हैं और ये उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमने ये जानना चाहा था कि आप हीरोइन किसको लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपने मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली। हाउ आर यू ऑन टुडेज टॉपिक? आई वुड लाइक टू से दैट इफ अ फिल्म इज मेड ऑन मी, आई वुड माई सेल्फ लाइक टू बिकम अ हीरो एंड कीप दीपिका पादुकोण एज अ हीरोइन बिकॉज शी इज माई फेवरेट एक्ट्रेस एंड एक्टिंग अलॉन्ग विथ हर विल बी सो मच फन। दैट इज रियली वेरी नाइस, बिकॉज अगर आप इसको केवल इमेजिन ही करते हो ना तो आपको जिंदगी में एक पॉजिटिव खुशी जरूर मिलती है ना। सुदर्शन मुखीजी, अनिता मुखीजी, सिमरन मुखीजी लिखते हैं कि ये फैमिली बेस्ड फिल्म होगी इनकी अगर फिल्म बनती है तो। इन्होंने शांतिनगर सोनीपत से लिखा है। और अगला मैसेज हमारे पास संजीव जी का आया पटियाला से, अगर लाइफ में फिल्म बने तो मैं हीरो होना चाहूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी को मैं ही बेहतर समझता हूं, और हीरोइन होंगी माधुरी जी या रेखा जी। क्या बात है, मेरी जिंदगी पर अगर मूवी बनती है तो प्रियंका चोपड़ा और कीर्ति सेनन होंगी। एग्जैक्टली, और क्योंकि जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ से इन्होंने लिखा है और नाम है इनका उपदेश शर्मा जी ने हमें मैसेज किया। अगला मैसेज हमारे पास आया है किशन वंजानी रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, लिखते हैं कि मेरे फिल्म नहीं हो तो मैं राजेश खन्ना जैसे हीरो बनना ज़रूर चाहूँगा। अरे क्या बात है, सब अपने दिल की बातें लिख रहे हैं। अगर मेरी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, हीरोइन माधुरी दीक्षित, इतने सारे ऑप्शन आपके पास, करिश्मा कपूर, रवि टंडन, मेरी ज़िंदगी कि हर संघर्ष मोहब्बत और हिम्मत की झलक। आदरणीय वरिष्ठ श्रोता एवं मशहूर कवि श्रेयनी शर्मा जी को धन्यवाद भी दिया है इन्होंने, जो कि आज दर्शना बाजार से कि इन्होंने उनकी तारीफ की है सरफराज आलम जी ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप बड़े ही ध्यान से प्रोग्राम सुन रहे थे, इसका मतलब यही निकलता है। मैं नीता अमरावती से, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, गाने भी अच्छे लग रहे हैं और गाने सुना दो क्योंकि अच्छा लिखते हैं। मुझे तो चिड़ियों के लिए गाना सुना दो, अभी गर्मी बहुत है और मेरे यहाँ चिड़ियाँ बहुत आती हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत आनंद होता है, मैं उनको दाना पानी सब देती हूँ। क्या बात है नीता जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अगला मैसेज हमारे पास, जय भारत, अगर मेरे जीवन के ऊपर फिल्म बने तो हीरो के रूप में मैं शाहिद कपूर को और हीरोइन के रूप में काजोल को। शाहिद कपूर और काजोल, अच्छा देखना चाहूँगा। थैंक्स अ मिलियन, इकबाल राय गुलाटी और कुरुक्षेत्र से इन्होंने मैसेज किया है। अब दोस्तों हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, बिल्कुल इसलिए मैसेज जो आपने किए हैं बहुत सारे हैं मैसेज हमारे पास, लेकिन अफसोस हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें ब्रेक भी लेना है और आपसे थोड़ा सा ये भी बताना है, आपको गाना भी सुनाना है और आपको ये भी बताना है कि आपने मैसेजेस जो किए हैं हमें उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी को। और जिनके मैसेज आज रह गए कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम हमारे पास हम रोज़ लेके आते हैं आपके लिए, तो आप किसी भी दिन हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे आप नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे दिन होंगे जिनमें दूसरे टॉपिक्स लेके दूसरे एंकर्स आएंगे और आपसे बात करेंगे। और चलते चलते एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे अगर हमारी लाइफ पे फिल्म बनती है तो क्या होगा, लेकिन उसके लिए आपको सुनते रहना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, आते हैं।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की

0: रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: दोस्तों, अगर हमारी लाइफ पे कोई फिल्म बनती है तो हमारी बड़ी तमन्ना है कि उसमें 30-35 कैरेक्टर सारे के सारे हमें करने को मिले और हम सब कुछ, मतलब अपना जितना हमारे अंदर जोश है वो सब हम करके आप सबको दिखा दें। और उसके बाद बोले, यार लड़की लगती तो टैलेंटेड थी, आवाज से सच में टैलेंटेड है, और ऐसी हमारी चाहत है। और दोस्तों, बस 1 घंटे के बाद पूरे 1 घंटे के लिए आपसे चांद मुखर्जी की मुलाकात होगी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, जाना आपको कहीं नहीं है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक

कराईकाल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

दोस्तों अगर प्यार हो जाए तो बिना पायल के घुंघरू जरूर बच सकते हैं, लेकिन चाह कर भी बिना मोबाइल के आप रेडियो अगर आपके पास नहीं है तो ऑन न्यूज ऑन एयर ऐप के बिना आप आकाशवाणी रेनबो नहीं सुन सकते। आकाशवाणी रेनबो सुनने के लिए आपको न्यूज ऑन एयर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर डेली रेनबो लगाना पड़ेगा अगर आप दूसरे के मोबाइल से सुन रहे हैं। तो मोबाइल तो आजकल सबके पास है, तो अगर आपके पास मोबाइल है तो न्यूज ऑन एयर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और फिर सुनिए और रहिए जान के साथ।

0: अपन का भी स्टाइल नया नया है और अपन के साथ रहने के लिए आपको भी मोबाइल के साथ रहना ही पड़ेगा और हमारे साथ रहने के लिए आपको आकाशवाणी रेनबो के साथ रहना पड़ेगा चांद के साथ रहने के लिए। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम हाजिर हो जाएंगे म्यूजिक मस्ती के साथ आकाशवाणी रेनबो पर और कहीं नहीं।
1: जब कोई राह नजर न आए ना साथ पाए मध्य

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

टाइम म्यूजिक मस्ती में चांद मुखर्जी के साथ आज की शाम है आप आकाशवाणी रेनबो पर।

दोस्तों मैं पूरी उम्मीद है और पूरा एतबार है कि आज की शाम आपकी बहुत खूबसूरत रही होगी चांद के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमें जरूर बताएंगे कि आज आपको कैसा लगा। तो आपसे मुलाकात होगी फिर।

दोस्तों गुमशुदा जरूर होने वाले हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर आपसे कुछ दिनों बाद। शायद इस महीने मुलाकात ना हो, लेकिन होगी जरूर आपसे। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के किसी ना किसी प्रोग्राम में, तो क्या आपका जान जाए। बाय।

जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुनते हैं वो थोड़ा सा चेंज किया है। जी हाँ, 90s के एरा से ही ये म्यूजिक लिया है, रोजा मूवी से ये म्यूजिक लिया गया है जैसे कि आप सभी जानते हैं। और वाकई इसकी फील भी अमेजिंग है, 90s के दौर पे ले जाती है इसकी फील और हमें बताती है कि 90s का ये एरा हमारी लाइफ में कितनी यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो आज भी ये क्रम इसी तरह जारी रहेगा आपके साथ, कहीं नहीं जाना है आपको, जुड़े रहना है मेरे साथ, यादों की इस खूबसूरत कारवां को आगे बढ़ाएंगे मंदम गति से। और आप मुझे

वाल दोस्तों, जुनूनियत किसी भी चीज़ की हो सकती है, इश्क की हो सकती है, दोस्ती की हो सकती है और अपने काम की भी हो सकती है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ दो ही वजहों से ज़िंदगी में आया है, प्यार और मोहब्बत या दोस्ती निभाने के लिए। ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ऐसे मकसद चुनते हैं लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, जिनसे ज़िंदगी जीने का एक नया सबक हासिल होता है। ऐसे ही सबक जो हासिल करते हैं वो ज़िंदगी में एक नया मकाम हासिल करते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को याद किया जाता है और शायद ऐसे ही लोगों को याद करने के लिए ऐसे लोग बनाए गए हैं। यादों का शो चल रहा है लगातार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे लिसनर्स भी, खूबसूरत यादें लगातार वो इस कारवा में सहेज रहे हैं, तो भाई उनका भी जो योगदान है उसको ज़रूर हम शामिल करेंगे। हमारे साथ कौन कौन हमारे लिसनर जुड़े हैं फ़िलहाल, उनको इस शो में शामिल कर लेते हैं। आदाब, वालेकुम आदाब, हम भी आपको सुन रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, फैज़ी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, यानी इनकी पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ चुकी है। सौरभ अनिजा हमेशा की तरह गाज़ियाबाद से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। मुंबई से उमर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए आपका भी वेलकम है हमारे शो में। और इसी के साथ हमारे साथ हैं, हेलो सबीहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज तो आपने हैट्रिक लगा दी है लगातार 3 दिन। वी आर ग्लैड टू हैव यू, प्लीज़ ऐसे ही गाने सुनाते रहिए। जी हाँ जनाब, ऐसे ही गाने आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। जयंत जी हैं हमारे साथ पटना से और इसी तरह का म्यूज़िक लगातार आप तक पहुँचता रहेगा। अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं पंकज जी। गुड इवनिंग सबीहा जी, वेलकम बैक। जी हाँ, आपका भी स्वागत है, आपकी याद आती रही। कार्यक्रम आप हमेशा की तरह अच्छा प्रस्तुत कर रही हैं और गाने भी इन्हें पसंद आ रहे हैं, तो ये सिलसिला, ये क्रम इसी तरह जारी रहेगा आपके साथ। यादों की खूबसूरत एहसास चुनने का ये सिलसिला, बने रहिए इसी तरह मेरे साथ और सुनते रहिए अपना डेली डोज म्यूजिकल प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और यादों को सहेज कर आँखें बंद कर अपने आप को, तमाम जितनी भी आपकी स्ट्रेस हैं, आपकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं लाइफ की, उनको कहीं गुम कर दीजिए। 90s के इस खूबसूरत म्यूज़िक का आनंद उठाइए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। भाई मैं तो चुनकर लाई हूँ 90s के वो खूबसूरत गाने जो एक वक्त में सुपर सुपर हिट रहे हैं और आज भी जो उनकी लोकप्रियता है वो बरकरार है। तो क्या कहते हैं इस अगले गाने के बारे में, सुनकर बताइएगा ज़रूर, क्या आज भी आपको ये सुनने में उतना ही मज़ा आता है जैसे एक वक्त में हमें आया करता था।

जी हाँ, आप लगातार आनंदित हो रहे हैं 90s के इस खूबसूरत संगीत के साथ, और ऐसा संगीत जो हम सब की यादों में समाया हुआ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाने से या किसी ना किसी मूवी या फिल्म से हम सब की बचपन की, जवानी की, सब तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी कोई गाना सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो अक्सर याद आ जाता है कि हाँ भाई, हम उस एज में थे या वो लम्हा था जब ये फिल्म या ये जब गाना आया था, और हमारी आंखों के सामने हमारा पूरा अतीत, हमारा पूरा पास्ट झिल मिलाने लगता है, और ऐसे ही में इकट्ठी हो जाती हैं बहुत खूबसूरत यादें। और 90s का जो म्यूज़िक था वो भी ऐसा ही था। अभी जो आप गाना सुन रहे थे, साधना सरगम और अभिजीत की आवाज़ में था। क्या खूब लाजवाब गाने इस तरह के सिंगर ने गाए 90s के, जैसे कि मैं कहती हूँ कुमार शानू, सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक ही नहीं बल्कि साधना सरगम, अभिजीत, SB बाल सुब्रमण्यम, ये सब वो गायक या गायिका हैं जिन्होंने 90s को अपने संगीत से संवारा है और खूबसूरत यादों का कारवां आज हमारे सामने खड़ा किया है। जी हाँ, ये यादों का कारवां ही तो है जो हम सुन रहे हैं। हमें याद आ रहा है हमारा बचपन, हमारी वो एज जब हम इन गानों को सुना करते थे, कभी छत पर अकेले लेटे हुए या परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी स्कूल फंक्शंस में भी। कभी कभी कुछ इस तरह के भी गाने आए हैं जो कि बच्चे जिन पर डांस करते थे, यानी जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे वो भी इन पर प्रसारित किए जाते थे, प्रस्तुत किए जाते थे। तो तमाम तरह की यादें इन 90s के गानों से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल जुड़े हुए हैं हमारे लिसनर्स, कौन कौन, उनके बारे में भी ज़रा यहाँ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विजय कुमार नामदेव जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबीहा नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप हमेशा स्वस्थ रहें यही दुआ दे रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच सर, आपकी बेस्ट विशेस के लिए। हमारे साथ हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से आदरणीय सबीहा नकवी जी, इनकी जो हिंदी है बहुत ही अच्छी और शुद्ध होती है। सादर प्रणाम, कार्यक्रम में आकर आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी मधुर वाणी, मोहक बातें, मन भावन गीत अच्छे लग रहे हैं, मन को छूने वाले हैं, दिल से बधाई। थैंक यू सो मच सर, आपकी बेस्ट विशेस के लिए। इसी तरह की विशेस की हमें तलाश रहती है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेटा कैलाश से ओम प्रकाश जी, कह रहे गुड इवनिंग आरजे सबीहा नकवी लव गुरु जी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हूँ सर। मोहब्बत वो नहीं जो लफ्ज़ों में बयां हो सके, खामोशी में भी समझ आ जाए वो मोहब्बत है। वाह, बहुत गहरी और बहुत डीप बात आपने की है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, आपका मैसेज बस शामिल ही करने वाली थी। ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, गाँव शेरडा, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान से, और 90s की दस्तक के गाने हमें सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, और आपके गाने फरमाइश भी लाइव गाने सुन रहे हैं जी। अच्छा, ओके, आपने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ तो तेज़ बारिश हो रही है, आपके पास मौसम कैसा है? नाम है इनका मंटू शर्मा, और हमारे साथ है हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो मंटू जी, आपको बता दूं कि फ़िलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा मौसम जो है वो बता रहा है। वेदर रिपोर्ट में भी यही देखा गया है कि शायद आजकल में यहाँ भी ज़्यादा तो नहीं झमझमाती हुई शायद बरसात हमें देखने के लिए मिले, लेकिन फिलहाल यहाँ मौसम, अभी स्टूडियो में जहाँ तक मैं हूँ, मुझे बाहर का तो हाल नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ कोई बारिश नहीं हुई जब तक मैं स्टूडियो में आई थी, लेकिन फिलहाल मौसम का जो फील है वो हम ले सकते हैं। आपने बारिश का जिक्र किया तो 90s का एक गाना मुझे याद आ गया जो कि बारिश पे ही है, बहुत खूबसूरत गाना है। हालांकि फिल्म अगर आपने देखी होगी तो याद आ जाएगा आपको, इस फिल्म के गाने भी बहुत सुपरहिट हुए थे, एक पेयर इसमें था, वो पेयर भी आपको याद आ जाएगा जब आप गाना सुनेंगे देखकर। फिलहाल ये 90s का गाना आपके लिए।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।

वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका डेली ओल्ड म्यूजिकल शो जिसका नाम है आपकी याद आती रही। मैं हूं आपके साथ आपकी दिल की आवाज़ आरजे सविया नकवी। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का वटे वाला वेलकम है जी। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ये दलील ये मौजूदगी बता रही है आपके मैसेजेस के साथ। 90s का इरा चल रहा है, खूबसूरत बातों का क्रम आपकी याद आती रही के ज़रिए से आप पहुंच रहे हैं मुझ तक और मैं पहुंच रही हूं आप तक। जी हां, अब हमारे साथ काफ़ी देर से वैसे तो जुड़े हुए हैं लेकिन मैसेज अभी शामिल हो रहा है। और अनुभव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नालंदा बिहार से। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, हम सुन भी रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। 90s के गाने जो आप चला रही हैं वो भी बेहद पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपका नाम बहुत यूनिक है, थैंक यू सो मच। ये कह रहे हैं प्रदीप सलूजा जी, जनकपुरी न्यू दिल्ली से हमारे साथ हैं। वेलकम बैक सभी, हाँ थैंक यू सो मच। तुसी कैसे हो? मैं बिल्कुल ग्रेट हूँ, ये आप पूछ रहे हैं प्रदीप सलूजा जी। मास्टर राधे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सभी नकवी जी, आप कैसी हैं? सॉन्ग सेलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, थैंक यू सो मच, नाइस प्रेजेंटेशन। अंजुम सैफी, महविश खान, अजहान खान अमरोहा से, हेलो सभीहा नकवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हम पूरी फैमिली के साथ आपका शो एंजॉय कर रहे हैं। हमारा नाम भी बोल दीजिए। जी हाँ, आपका नाम भी बोल दिया। नाइस प्रेजेंटेशन एंड नाइस सॉन्ग्स, बेस्ट एंजॉय। हमारे साथ जुड़े हुए एक बार राजस्थान से मंडू शर्मा जी, चलिए आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और इसी तरह अपना साथ और खूबसूरत यादों का कारवा हमारे साथ इस शो में जोड़ते रहिए। आपका योगदान और आपकी मौजूदगी शो को बनाती है अपने आप में बहुत खास, बेहद खास। फिलहाल एक खास गाना 90s के धड़ोके से चुराया हुआ आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगा। अभी बात कर रहे थे हम कुछ सिंगर्स की जिसमें नाम लिया था एसवी बाल सुब्रमण्यम का, तो इनका भी एक बड़ा मशहूर गाना है, कौन सा, ये आपको सुनकर याद आ जाएगा अपने वही पुराने गोल्डन डेज़।

शुक्रिया मेहरबानी करम कि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जनाब। यादों के इस खूबसूरत सफर जिसका नाम है आपकी याद आती रही। किसी के नाम अपनी पूरी जिंदगानी करने के लिए आपको चाहिए कि अपनी शख्सियत को भी ऐसा बनाएं कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाए। जी हाँ, अपनी शख्सियत में अगर आप कुछ ऐसे गुण या कुछ ऐसी खासियत या कुछ ऐसी विशेषताएं पैदा कर लेंगे जो सामने वाले को आपके अलावा किसी और के अंदर नहीं नजर आए, तो सच मानिए कि कोई कभी आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता। जी हाँ, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर लानी है, जैसे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनना है किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको समझना चाहता हो और जिससे आप समझना चाहते हो।

थोड़ा सा सब्र से यानी पेशेंस से काम लेना है, अपने अंदर सब्र को पेशेंस को लाना है, ताकि दूसरा इंसान आपके साथ रहने पर मजबूर हो जाए कि भाई इसके पास जाने से एक ज़हनी सुकून मिलता है, एक जो कह सकते हैं कि स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो क्यों ना इसी से दोस्ती की जाए और इसी के साथ रहा जाए। वहीं अपने मिजाज को थोड़ा सा नर्म बनाना है, यानी पोलाइट लहजा रखना है आपको। अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर आप वर्कआउट कर लेंगे ना दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी दोस्ती से कोई भी दूर जा पाएगा। और फिर मोहब्बत क्या है, वो तो आपको खुद ब खुद मिल ही जाएगी, या तो कोई आपको ढूंढ लेगा या फिर आप किसी को ढूंढ लेंगे। और जब ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा कोई, तो यूं ही घर गृहस्थी और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी चलती रहेगी। फिलहाल चल रहा है हमारा शो और कुछ और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। सम नाइस सॉन्ग्स, दिस इज़ माई फेवरेट शो, ये कौन कह रहे हैं? असीम राजपाल हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े ये आपने नहीं बताया। और हमारे साथ दानिश भी जुड़ चुके हैं खतौली से, जी हाँ, और ये भी हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, इन 90s के गाने भाई सभी को पसंद आते हैं, तो आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे अच्छा लगा कि चलिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। और हमारे प्रदीप सलूजा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, जनकपुरी में बरसात तो नहीं हो रही लेकिन ज़बरदस्त हिट सॉन्ग्स की बरसात ज़रूर हो रही है। थैंक्स आरजे सभिया हिट सॉन्ग्स प्ले करने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये 90s का गाना आपका इंतज़ार कर रहा है, उम्मीद है कि 90s के एरा से चुराया गया ये गाना आपको उन्हीं यादों में लाकर खड़ा कर देगा जहाँ से आप चले थे। जी हाँ, थोड़ा सा पैपी है सॉन्ग तो मज़ा आएगा, क्योंकि 90s में हर तरह का फ्लेवर हमें देखने के लिए मिला था। मेलोडियस सॉन्ग तो थे ही, रोमांटिक थे, साथ ही साथ कुछ इस तरह के भी डांसिंग नंबर रहे जिन्होंने उस इरा में क्या बल्कि आज के इरा में भी अपनी जगह बनाई हुई है।

जी हाँ, और काम का जो है अपना समय निर्धारित है भाई, ये आंखें चार भी कर लीजिएगा और जिंदगी में इंतजार भी कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो समय है आपके पास, अभी जो जोश है, उसका सही इस्तेमाल करें अपने गोल को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए महत्वाकांक्षी बनिए और मेहनत करिए। इतनी मेहनत करिए दोस्तों कि आप एक ऐसे मंजिल पर पहुँच सकें जहाँ से आप दूसरों की भी मदद कर सकें। अपने आप को कुछ ऐसा बनाइए जो दूसरों के भी काम आ सके। अक्सर हम जब किसी अच्छे मकाम पे, किसी ऊंचे पद पर, किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हम भी एक लंबा स्ट्रगल झेल के आए हैं। जब हमसे दूसरे उम्मीद की निगाहों से हमारी ओर देखते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, तो पता नहीं क्यों एक अजब सा गुरूर, एक अलग सा घमंड हमारे अंदर आ जाता है, जो कि बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। याद कीजिए उस वक्त को, उस दौर को, जब आप भी एक ऐसी ही नीची सीढ़ी से ऊपरी सीढ़ी तक आपने रास्ता तय किया था। इसीलिए अपना वक्त, अपने समय, अपना स्ट्रगल पीरियड ज़रूर याद रखें, और जब किसी एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छे मकाम पर पहुँचें तो अपने से जो नीचे लोग हैं, जो अभी तक उस पहुँच तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनको भी मदद दें, उनकी भी मदद करें, उन्हें उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए उनका साथी बने। छोटे छोटे जो सलाह मशवरे हैं मैं देती रहती हूँ, और इन्हीं यादों को देखिए, सहेज के रखेंगे वो लोग जिनकी आप मदद कर पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ये कुछ लिसनर, इनका जिक्र करना जरूरी बनता है। गुड इवनिंग सबिहा, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम और गीत हमेशा की तरह बेहद पसंद आ रहे हैं। नाइस प्रेजेंटेशन किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस तरह जुड़ने के लिए। आपकी याद आती रही, मैं आपको प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज है। गुन्नौर से आदिल कमर तजदीक अली फर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ, अच्छा इनका मैसेज रह गया था और ज़रूर नाम लेंगे इनका, पुनीत ऋषिकेश उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छे और खूबसूरत गाने आप 90s के चला रही हैं, क्यों ना ऐसा करें कि 24 घंटे यही प्ले करें ऐसा तो नहीं हो सकता सर, 24 घंटे अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग म्यूज़िक, अलग अलग शो हमारे पास हैं, आप सब सुनिए, आपको उन सभी शोज़ में, उन सभी म्यूज़िक्स में एक अलग फ्लेवर देखने के लिए जरूर मिलेगा। हमारे साथ हमारी एक और लिसनर है तुम्पा जी, अगर मैं नाम ठीक ले रही हूँ, तो जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सबिहा मैम फॉर द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, प्लीज कन्वे माय मैसेज टू आकाश। ओके भाई, ये आकाश जो है वो शायद यहाँ कोई आर्ज है, उनको अपना

मैसेज पहुंचाती रहती हैं, लेकिन मैम मैं उनको जानती नहीं हूं, तो मैं उनको पर्सनली तो आपका मैसेज नहीं भेज सकती, लेकिन अगर वो मुझे सुन रहे हों इत्तेफाकन तो वो आपका मैसेज ज़रूर सुन रहे होंगे। खैर, आपने हमारे शो में अपना योगदान दिया, उसके लिए थैंक यू। फिलहाल कम से कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनाने का प्रयत्न करती हुई आपकी आरजे सभिया नकवी लगातार बनी हुई है आपके साथ। और क्या कहती हूँ मैं आपसे और आप मुझसे, ये 90s के खूबसूरत गानों के जरिए से एक दूसरे को बता सकते हैं हम। चलिए एक और गाना आपके लिए, फिलहाल इसी तरह एंजॉय करते रहिए आपकी शो और इस चैनल को।

जी हाँ दोस्तों, कम से कम नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब आएंगी। तो एक तो अभी आ रही हूँ ब्रेक के बाद, जी हाँ 11 बजे आपसे मिलूंगी। जो रंगे महफिल प्रोग्राम के ख़ास तौर पे फ़ैन हैं या पसंद करते हैं या बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक 11 बजे। आज बहुत ही लाजवाब किस्म के गाने, नगमे, खूबसूरत शाहकार आपके लिए चुने हैं, तो ज़रूर सुनिएगा, बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। और फिलहाल जो बने हुए थे हमारे साथ उनका भी जिक्र करना ज़रूर बनता है। मैम, अच्छा इन्होंने अभी शायद ट्यून इन किया है तो नाम मुझसे पूछ रही हैं, कौन है आप? अच्छा, सुनीता नेगी हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ से जुड़ी ये नहीं बताया। मैम आपका नाम क्या है? गज़ब प्रेजेंटेशन, ऑसम सॉन्ग सेलेक्शन, ऑसम वॉइस एंड खूबसूरत मोटिवेशनल पॉजिटिव थॉट्स, थैंक यू सो मच मैम इतनी तारीफ़ के लिए। और मेरा नाम है, मैं हूँ आपके साथ आपकी दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी। जी हाँ, मुझे लगता है इतनी बार अपना नाम दोहरा देती हूँ अब तो आप भी समझ गए होंगे। दानिश, मैं बता चुकी हूँ कि अब तो एक घंटे बाद ही हम मिलने वाले हैं और अगले प्रोग्राम में हम मिलेंगे। जी हाँ, याद आ गया, याद करने के लिए थोड़ा सा पॉज लिया था मैंने। हम 5 तारीख को मिल रहे हैं और प्रोग्राम ये नहीं रहेगा, प्रोग्राम रहेगा आप सभी का फेवरेट, जिसमें हम करेंगे डायरेक्ट दिल से दिल तक की बात। मैसेज मसाला मिक्स में हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह 5 तारीख को। हाँ, 5 तारीख को मिल रहे हैं हम, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। इकबाल राय गुलाटी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं, थैंक यू। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और अब फिलहाल बस ये आखिरी गाना आपके लिए, उसके बाद हम मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए एक छोटा सा खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतदान केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह फैसला लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में भी मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल ना हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध सहित आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव कम करने को तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 6वें ओवर में 1 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्से में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र।

0: तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर

कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ हुजूर, मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और किसी की गुंजाइश भी नहीं है, और किसी का साथ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि जब आपका साथ मैसर है तो फिर किसी और के साथ की ख्वाहिश खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और ख्वाहिशें तो क्या हैं जनाब, ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। एक ख्वाहिश इंसान की पूरी होती है तो दूसरी ही उस वक्त नए तरीके से अपना सर उठाने लगती है। लेकिन ख्वाहिशों को कम करना या ख्वाहिशों को अपने में समेट लेना, यही एक इंसान की पहचान है। ख्वाहिशें ज़रूर करें और ख्वाहिशों को करना कभी छोड़े भी नहीं, यही तो ज़िंदगी जीने की राह दिखाती हैं। लेकिन अगर ख्वाहिशें आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की बदमजगी पैदा करती हैं या रुकावट पैदा करती हैं, तो वही ख्वाहिशों को समेट लेना चाहिए। और अगर कोई परवाह करे या कोई ध्यान रखे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमेशा की तरह सौरभ अनेजा गाज़ियाबाद से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और इंतहा परवाह के साथ जुड़ चुके हैं, और कह रहे हैं कि दोस्त मुझे लगता है कि आज आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है सौरभ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मिजाज इंसान का उसकी आवाज़ से पता चल जाता है या किस तरह से

क्या दिल में तासुरात उठते हैं ये भी आवाज़ से पहचान जाते हैं। एक अच्छे दोस्त की पहचान है कि आपने पहचाना। हाँ, थोड़ी बहुत नासाज तो सभी की तबीयत लगी रहती है, तो मौसम का भी तकाजा है, और आपने पहचाना ये जानकर खुशी हुई। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये जानकर भी खुशी है, और बज़्म रंगी महफिल का दौर चल रहा है, लगातार बातों का दौर चल रहा है, तो ये जो दौर है ये इसी तरह चलता रहेगा। और फिलहाल एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि मेरी उल्फत को दौलत की नज़र से ना देख फराज, मेरी उल्फत को दौलत की नज़र से ना देख फराज, वफा परस्त अक्सर गरीब होते हैं।

जी हुजूर, इतनी कम ख्वाहिशात के साथ जब इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे और इतने कम में खुश हो जाए तो ऐसे इंसान को भला कौन भुला सकता है, ये तो हमेशा याद रहता है। अक्सर मोहब्बत में ऐसा होता है कि कुछ लोग मोहब्बत में दौलत को तरजीह देते हैं तो कुछ लोग एहसास और जज्बात को, पाकीज़ा मोहब्बत को और दौलत को मोहब्बत के दरमियाँ आने भी नहीं देना चाहिए। ऐसी मोहब्बत जो दौलत पर मयसर हो, मुझे लगता है कि उसकी जो उम्र है काफ़ी कम होती है। ऐसी उम्र और ऐसी मोहब्बत जल्दी ही लड़खड़ा जाती है और वो ता ज़िंदगी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। जब आपकी मोहब्बत या आपकी ज़िंदगी ख्वाहिशों पे मयसर होने लगे या सिर्फ आपका जो रिश्ता है या आपका जो मोहब्बत है वो सिर्फ लेन देन पर हो जाए तो ऐसी मोहब्बत कहाँ ही परवान चढ़ पाएगी दोस्तों। ऐसी मोहब्बत तो बस जल्दी ही लड़खड़ा जाएगी और आप बीच मझदार में डूब जाएंगे। खैर, खुदा ना खास्ता ऐसा हो आपके साथ और सच्चे रिश्तों के साथ, पाकीज़ा एहसास के साथ किसी भी रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और हमेशा कहती हूँ कि अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें तो खुदा भी आपके साथ रहता है और आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मेरी तो यही दुआ है। फ़िलहाल दुआओं के साथ नवाज रहे हैं कुछ लिसनर्स हमें। नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग्स भी अच्छे आप प्ले कर रही हैं, आवाज़ भी अच्छी है, थैंक यू सो मच। वीरू बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहाँ से जुड़े हैं ये आपने जिक्र नहीं किया। हेलो सिर्फ लिखा है आपने और सर गलत लिखा, मैम लिखते तो अच्छा लगता। मंटू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंगे महफिल कभी कभी गालों पर कभी कभी मुस्कुरा लो, ये दौर है ये पल कभी लौट कर नहीं आते, आज है वो पल खुशी से सजा लो, जो खो गया है वो लौट कर नहीं आते। बहुत खूब जनाब, आपने अच्छी और ख़ूबसूरत जो बातें हैं हम तक पहुंचाई और हम भी आप तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ जनाब, एक और धड़कनों को छेड़ने वाला और ख़ूबसूरत रंग भरने वाला अगला शाहकार आपकी ज़िंदगी में क्या झंझनाहट पैदा करता है ये आपको पता चलेगा इस खूबसूरत तराने के बाद।

मुबतला इश्क में जब इंसान होता है तो धड़कन किसकी है ये कब पता चलता है। ऐसा लगता है कि आपका दिल उनके सीने में धड़क रहा है और उनका दिल आपके सीने में धड़क रहा है, यहाँ तक कि सांसों की पहचान भी होना मुश्किल हो जाती है। मोहब्बत में कोई भी दूरी, कोई भी रुकावट कोई इंसान नहीं बिल्कुल भी पसंद करता अपनी ज़िंदगी में, और हर कोई चाहता है कि जो रुकावटें हैं वो उनसे दूर रहें। जी हाँ, इश्क में किसी के लिए तलबगार रहना, इश्क में किसी के लिए तड़पना, ये भी इश्क की एक अलग अलामत है और इसमें भी अपने एक अलग मज़ा आता है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान चाहे कितना भी सख्त मिजाज क्यों ना हो लेकिन मोहब्बत के आगे वो मजबूर हो ही जाता है। फिलहाल तो मजबूर हम हैं आपकी मोहब्बत के आगे। जी हाँ, मोहब्बत जो अपने मैसेजेस के ज़रिए से आप हम तक पहुँचाते हैं और हम आपके मैसेजेस पढ़कर दिल का सुकून पाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं जयंत जी जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट कब आइएगा प्लीज़ बता के जाइएगा। जी हाँ, आपकी इत्तला के लिए फरमा दूँ जनाब कि अब नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह 5 तारीख के दिन, यानी मैसेज मसाला मिक्स में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और उसमें भी हम डायरेक्ट दिल से दिल तक में जुड़ेंगे। और दानिश हमारे साथ खतौली से जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह उनका खूबसूरत मैसेज हमारे पास आ चुका है। सभी मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको हमारा शो, हमारा जो ये गानों का या नगमे तराने जो भी आप नाम देना चाहें ये पसंद आ रहा है, इसके लिए बेहद शुक्रिया। मंटू शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद मसरूफ़ भी हैं, थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, यानी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर थोड़े कम मैसेजेस आ रहे हैं, यानी मुझे लग रहा है कि वो थोड़े मसरूफ़ हैं। हाँ, इंसान की मसरूफियात हो सकती है, और मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत करम करते हैं, हमारे शो को एक नया रंग दे देते हैं, खूबसूरती बख्श देते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ आ रहे हैं या हैं तो इसके लिए ज़रा नवाजिश है आपकी। और सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोग्राम में मज़ा आ रहा है, शुक्रिया जनाब। और चलिए, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। चलिए जनाब, जैसे कि बज़्म रंगे महफिल आप जानते हैं कि शेर व शायरी के नाम रहता है, तो एक और शेर आपकी नज़र करना चाहती हूँ। ये उन लोगों के लिए खुसूसन हो सकता है जो कि थोड़े सख्त मिजाज होते हैं और लेकिन मोहब्बत के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, और किसी को जब अपना मान लिया तो मान लिया, फिर सारी जो अना है उसको ताक पे रख कर कैसे मोहब्बत में ख़ुद को डुबोया जाता है। ये गौर फरमाइए कि किस कदर तुझको चाहा कभी गौर तो कर, कि किस कदर तुझको चाहा कभी गौर तो कर, इतना तो मैं खुद का तलबगार नहीं, वो तो तुम हो जिससे इतनी उल्फत है मुझे, वो तो तुम हो जिससे इतनी उल्फत है मुझे, वरना मैं वो खुद गर्ज हूँ जिसे खुद से भी प्यार नहीं। मोहब्बत में आजमाना किसे कहते हैं, आइए आपको बताते हैं।

जी हाँ हुजूर, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खुद को आजमाने से बिल्कुल ना रोकिए, मुकद्दर को आजमाने से कतई ना रोकिए, कोशिश करते रहें। कब कहाँ आपकी जीत हो जाए, आपको फतेह हासिल हो जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नाउमीदी हमेशा अपनी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखाइए और अपने अंदर एक नई और ख़ूबसूरत पॉजिटिविटी को जगह दें और मुकद्दर को और ख़ुद को और दूसरे इंसान को ज़रूर आजमाएं। इसमें शायद कहीं ना कहीं आपको शुरुआती दौर पर थोड़े से मरहलों का सामना करना पड़े, लेकिन यकीन एक दिन आप सारे मरहलों से बाहर आ जाते हैं। चलिए, हमारे साथ भी हमारे जो लिसनर्स हैं वो लगातार जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा था कि आज शायद मसरूफ लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी से दर्ज करा दिया है कि नहीं भाई सबीहा, हमारे लिए कोई मसरूफियात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, मंटू शर्मा जी का एक सवाल है, और क्योंकि इनकी फोन की बैटरी लो होने वाली है, मुझसे गुजारिश की है कि प्लीज जल्दी से बता दें। तो पूछ रहे हैं जो ये मैसेज मसाला मिक्स है कब आता है, तो ये आता है हर रोज शाम 6 बजे। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, जिसमें मैं आने वाली हूँ। और अब हमारे साथ कौन जुड़े हैं? जी हाँ, कल हमने मैसेज किया था लेकिन शायद लेट हो गए। जी हाँ मैडम, आप थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैं पुष्पा हूँ और आप मुझे जानती हैं अहमदाबाद से। जी मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप विकास की मदर हैं और मुझे पता है कि आप मदर और जो आपके बेटे हैं विकास, वो रेगुलर सुनते हैं प्रोग्राम मेरा और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ थैंक यू सो मच कि आप मुझे हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देती हैं और विकास भी हमेशा से प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी हम मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम और के लिए सॉन्ग्स चुन चुन कर ला रही हैं, शायरी और मोटिवेट कर रही है, दिल को छूने वाली बातें कर रही हैं, थोड़ी तसल्ली मिलती है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं मैम। थैंक यू सो मच, आप सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच आपकी बेस्ट विशेस के लिए, और यही तो काम है हमारा कि आपकी ज़िंदगी में हम आपको कहीं ना कहीं आपके जो जिंदगी के मसले मसाइल हैं उनसे दूर ला सकें। उमेर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबीहा, हम आपके प्रोग्राम खामोशी से सुनने में मसरूफ है। अच्छा, और ये वक्त हमने आपके लिए नाम किया है, यानी मेरे नाम मुकर्रर किया है। अच्छा, मुझे लगा कि आप सब मसरूफ हैं इसलिए मैसेजेस थोड़े कम आ रहे थे। कभी कभी होता है ऐसा, इंसान की अपनी बहुत सारी ज़ाती मसरूफियात भी हो सकती हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। सबीहा जी नमस्कार, मैं विकास चौधरी भरतपुर से, प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग्स भी आप अच्छे प्ले कर रही हैं, ज़रा नवाजिश के लिए शुक्रिया जनाब। इसी तरह जुड़े रहिए मुझे और अपने आप को, बने रहिए बज़्मे रंगे महफिल की रौनक, और इस खूबसूरत अगली गज़ल को आप सुनकर ज़रूर कहीं ना कहीं लुत्फ़अंदोज़ तो होंगे और खो जाएंगे उन मीठी और खूबसूरत यादों में जो कि आप सब ने एक वक्त पर ज़रूर गुजारी होंगी।

जी हाँ जनाब, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाती है जिसको देखने के बाद आप अपनी सोच बदल लेते हैं, या यूँ कहूँ कि जिससे मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में तमाम तर तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, मिजाज में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है और लगता है कि भाई हम क्या थे पहले और क्या से क्या हो गए। ये तब

लिए अच्छी हो सकती है और अच्छी ही होनी चाहिए। बुरी तब्दीली की तो खैर हम बात भी नहीं कर रहे, इंसान तो ऐसे ही मिले, आप ऐसे ही इंसान से दोस्ती करें जिससे आपके अंदर अच्छी तब्दीलियाँ आए ताकि ज़िंदगी और बेहतरीन रंग निखारे। और अगर बुरी तब्दीली वाले इंसान से अगर हम खुदा ना खास्ता मिल लेंगे तो ऐसे में तो बहुत गलत हो जाएगा आपके लिए भी। जी हाँ, इसीलिए इंसान ऐसा चुने अपने लिए भी, ऐसे शख्स का चुनाव करें जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी शख्सियत में एक अच्छी खूबसूरत निखार लाने में आपकी मददगार हासिल हो सके। तो चलिए कुछ और मैसेजेस हमारे पास पहुँचे हैं, क्योंकि भाई अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका साथ देना और उनके मैसेज लेना भी बीच बीच में ज़रूरी सा है। हेलो सबीहा नकवी, गुड इवनिंग। उमेश हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी अरबिया से, आप कैसी हैं? वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जॉइंट लेट टुडे ड्यू टू लेट अराइवल फ्रॉम ऑफिस, एनीवे गुड म्यूज़िकल प्रोग्राम। ज़र्रा नवाजिश जनाब, क्या आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है? सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। रिस्पेक्टेड सबीहा नकवी जी, हैप्पी एंड हेल्दी संडे, गुड इवनिंग एंड नाइट गुड। अच्छा, ओके, वी आर द लिसनिंग योर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड नाइट्स प्लेलिस्ट। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी बेहतरीन बेस्ट विशेस के लिए और आपकी हौसला अफजाई के लिए। इसी के साथ हमारा शुक्रिया अदा कर रही हैं यहाँ जो अभी हमारे साथ जुड़ी थी, पुष्पा जी। अच्छा हाँ, कितने बजे शुरू होता है ये प्रोग्राम? जी पुष्पा जी, ये तो रोज़ाना प्रोग्राम शुरू होता है 11:05 पर रात, और लेकिन अलग अलग जो आरजे दोस्त हैं वो उसको पेश करते हैं। आज मेरी बारी थी तो आज मैं आई हूँ, कल कोई और आरजे दोस्त आपके साथ ज़रूर रहेंगे, तो उन्हें भी सुनना ना भूलें। और समझ आएगा हर किसी को सुनकर के, हर किसी का लबो लहजा अलग होता है, हर किसी को प्रोग्राम पेश करने का तरीक़ा बहुत अच्छा रहता है और आप पर मैसर करता है कि आपको कौन पसंद आ रहा है। फ़िलहाल चलिए एक बहुत खूबसूरत सा जो शेर है वो आपको नज़र करना चाहती हूँ, और ये कहीं ना कहीं मेरी बातों और मुझी जो खूबसूरत बातों को आप कहते हैं, गज़लों को कहते हैं, शेर व शायरी को कहते हैं, उस पर ही जुड़ा हुआ है कि मेरी गज़लों को इतनी शिद्दत से ना पढ़ा कीजिए जनाब, मेरी गज़लों को इतनी शिद्दत से ना पढ़ा कीजिए जनाब, कुछ याद रह गया तो भुला भी ना पाओगी।

जनाब, ऐसी दुआ तो वही कर सकता है जिसने शिद्दत से मोहब्बत की हो या कर रहा हो। जी हाँ, किसी और को अपने महबूब की ज़िंदगी में तसव्वुर करना अपने आप में एक बहुत तकलीफ़ देह बात है। और जो शिद्दत से मोहब्बत करते हैं या शिद्दत से रिश्ते निभाते हैं, वो अपनी मोहब्बत में किसी की भी साझेदारी बर्दाश्त नहीं करते। और शायद सिर्फ एक मोहब्बत ही रिश्ता ऐसा है जिसमें किसी की भी साझेदारी या किसी का भी दखल अंदाजी इंसान को बर्दाश्त नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि उसकी मोहब्बत, उसका महबूब, उसका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत को बांटना बहुत मुश्किल है, खासकर महबूब की मोहब्बत को बांटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सारी मोहब्बतें तो और रिश्ते तो बट ही जाते हैं। जैसे कि माँ बाप के लिए औलाद की मोहब्बत, हर औलाद के लिए अपनी जो मोहब्बत है माँ बाप की, वो एक सी ही रहती है। भाई बहनों में भी जो मोहब्बत है, वो भी अपने अपनी अलग अलग भाई बहनों में अलग अलग तरह की मोहब्बत रहती है, यानी बढ़ती ज़रूर है। दोस्त भी एक नहीं होता, दोस्त भी आपके कई सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये शौहर बीवी कहें या पार्टनर्स की मोहब्बत कहें, ये मोहब्बत ऐसी होती है जिसमें साझेदारी कतई कोई बर्दाश्त नहीं करता, और अपने महबूब के लिए तो कतई नहीं। खैर, ये मोहब्बत की शिद्दत पर भी मयसर करता है कि किस शिद्दत से आपने किसी मोहब्बत को चाहा है। फिलहाल तो चाहत की अगर बात की है, तो एक खूबसूरत शेर आपकी नजर करना चाहती हूँ कि दिल धड़कता है तो डर सा लगने लगता है, दिल धड़कता है तो डर सा लगने लगता है, कोई सुन ना ले मेरी धड़कनों में नाम उसका।

जी हाँ हुजूर, इसी ख्वाहिशात के साथ बस आपसे अब लेनी है इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर से होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आपको वादा निभाना है और इसी तरह हमारे साथ बने रहना है, लेकिन आपसे कहूँगी वही एक ख़ास बात कि अपना रखिएगा एकदम खासम खास ख्याल, क्योंकि आप ही किसी के लिए बेहद ख़ास। खूबसूरत रात के इस ढलते हुए पहर में अपनी इस मेज़बान दोस्त सबिया नकवी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात करेंगे आपसे। और फिलहाल अगर इस प्रोग्राम के मुतालिक आपकी कोई राय है तो आप दे सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम बिंदास बोल में, जी हाँ, जिसका वक्त आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरती से जानते हैं। तो इस प्रोग्राम के मुताबिक अपनी राय, अपना फीडबैक देना ना भूलें। जाते जाते ये आखिरी शाहकार आप सबके हवाले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्म निरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सीएपीएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया के लिए मतगणना केंद्र के अंदर ड्रोन, मोबाइल फोन और ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फैल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसकी संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था।

सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गुजरात टाइटंस की ओर से जैसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जीना तो शिद्दत है, जीना शिद्दत के साथ ही जीना चाहिए और ज़रूर जीना चाहिए। ऊपर वाले ने जब ये ज़िंदगी हमें नवाजी है और कुछ सोच कर ही नवाजी है, तो क्यों भाई ना जीने की बात करें। जिएं और खुल कर जिएं, हंस कर जिएं, खुश होकर जिएं। ज़िंदगी में चुनौतियां तो आती ही हैं। हम में से बहुत कम, मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे लोग जिन्होंने चैलेंजेस फेस नहीं किए या चुनौतियां नहीं देखी। हर दिन हर मिनट में कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आता है, तो उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि वो नया पॉजिटिव हो, खुशनुमा हो। लेकिन अगर कहीं कुछ इधर उधर हो भी जाता है, तो हमें अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ उससे निपटने की पूरी चाक चौबंद तैयारी करनी चाहिए, बल्कि तैयारी रखनी चाहिए, तभी आप खुश भी रह पाएंगे। और खुश रहना ज़िंदगी का दूसरा नाम है। खुशहाल ज़िंदगी खुदा तक पहुंचने का, ऊपर वाले तक पहुंचने का, उससे बात करने का एक आसान जरिया माना गया है। आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बहुत लोगों के लिए, खुद अपने लिए समेत काफ़ी लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं, और मिसाल बनने की कोशिश करते रहने चाहिए। ये पहला संदेश मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से इस प्रोग्राम में, जो करवट बदलते ही, कैलेंडर बदलते ही अभी अभी कुछ मिनट पहले दाखिल हुआ, और इसका नाम है 0 आवर शो। क्योंकि इधर तो 00 होते हैं और उधर बस न्यूमेरिक डिजिट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो अभी का 00 के बाद 13 लगा हुआ है, यानी 12:13 मध्य रात्रि के हुए हैं। दिन बदल चुका है कैलेंडर के हिसाब से, और प्रोग्राम सबसे पहला इस दिन का था।

0: दाखिल हो चुका है जीरो और शो के बतौर, और मैं हूं आपका दोस्त रजत। इस वक्त आप सभी का तहे दिल स्वागत करते हुए, मैसेजेस पर स्वागत करते हुए, आपके रेडियो सेट्स पर स्वागत करते हुए, और अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है हमारी न्यूज़ ऑन एयर तो उस ऐप पर भी आप सभी का स्वागत करते हुए, देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से आए हमारे सामयिन के लिए, हमारे श्रोता मित्रों के लिए आप सभी का तहे दिल स्वागत और शुभकामनाएं आने वाले दिन की। इस जीरो और शो को थोड़ा सा सबरंग बनाने की कोशिश करेंगे, हर एक के मूड में जाने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं। फिलहाल ये जो सवाल है ये सबसे पहले मुझसे पूछा अफशा खानम जी ने धामपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने मुझे वेलकम किया, मेरी तरफ से भी आपका वेलकम अफशा जी। इसके बाद बल्कि इनसे पहले हमें मिले थे राजकुमार साहब, इन्होंने चौंकाते हुए लिखा कि गर्मी में सावन, हालांकि ये बात समझ गए हमारी, और उसके बाद इन्होंने कहा नमस्कार अजय जी, आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं महेश कुमार जी मुकिमपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आपका भी स्वागत। प्रेजेंटेशन तो सर आपकी इनायत है गुड रहने की, लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हमेशा आप सभी की जो मौजूदगी है वो दिलो दिमाग पर बहुत अच्छा सा, बहुत सकारात्मक सा प्रभाव डालती है। एक और हमारे मित्र बहुत दूर से ये पूछते हैं कैसे हैं, मुझे पूछना चाहिए धर्मेंद्र भाई कैसे हैं आप, इतने दूर हैं और बहुत कम आपका यहाँ घर वापस आना होता होगा, लेकिन आप इस तरह के संदेश भेज देते हैं, हमें याद कर लेते हैं, हमारे प्रोग्राम सुन लेते हैं, हमारा भी दिन बन जाता है। ये आगे लिखते हैं, लंबे वक्त के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है सर, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है आप लोगों से मुलाकात के बाद। तो खैर आप अपना ध्यान रखिए, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाइए और कुछ दिल की बात हो हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी अगर कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कह दें। हम 102.6 पर जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो के नाम से, और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर तो हम हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप हमें करना चाहते हैं और नंबर अगर आपके पास किसी भी वजह से नहीं है तो मैं बता दूं 9868107070 हमारा नंबर है। तो प्रोग्राम में एक बार पुनः अभिवादन आप सभी का, अपना ध्यान रखें और प्रोग्राम सुनते रहें।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दो

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आरिफ रब्बानी साहब हापुड़ से हमारे साथ शामिल हुए। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े आज, अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन बातें बहुत सारी लिखी, अपने दिल की काफ़ी गहराइयों तक पहुंचकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे साझा की। इतना भरोसा आप करते हैं हमारे साथ, हम पर बनाए रखें इस भरोसे को। आकाशवाणी रेनबो पर आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी बनी रहे और इसी तरह से आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिलता रहे। सभी दोस्त जो मैसेजेस के ज़रिए शामिल हुए और हो ही रहे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। ये शो का आखिरी गाना, इसके बाद हेमा होंगी आपके साथ सुहानी रात में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रजत को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के सात देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल सात देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थयात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सुहानी रात। यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक

0: गम और खुशी जीवन की दो हसीन दास्तान है। एक एक मुहाने से शुरू होती है और दूसरे मुहाने तक पहुंचते पहुंचते बहुत तरह के एक्सपीरियंस, काफ़ी तरह के किस्म के तजुर्बे हमें दे जाते हैं। दूसरी जो दास्तान है खुशी की, उसका नहीं पता होता कि वो कब आती है, कब जाती है, कितने दिन वो टिकती है आपके साथ। लेकिन तजुर्बे ये भी देकर जाती है, पर जो पहली दास्तान है ना गम की, दुखों की, चुनौतियों की, वो हमें चुनौतियों का, दुखों का सामना करने का सबक देती है, उन चुनौतियों का संघर्ष के साथ, हौसले के साथ स्वागत करना और उनसे जूझना सिखाती है। तो जो ये दास्तानें हैं, इन दोनों को अपनी किताबों में बंद करके मत रखिए, बल्कि उस किताब के हर पन्ने को खोलकर इन्हें वहाँ जगह दीजिए, ताकि जब आपको इनमें से किसी भी हरफे की ज़रूरत पड़े ज़िंदगी में, आप चुपचाप से उठाकर अपने बाजुओं में रख सकें और उसे मन की, हृदय की ताकत बनाकर आगे चलें। हर जो लम्हा होता है वो जीवन में जीने का तो सुख देता ही है, लेकिन हमें जीवन में लड़ना, आगे चढ़ना और बढ़ना सिखाता है। तो ज़रूरी है कि खुशी या गम दोनों से ही सीखें। खुशी भी इस कदर हमें मदहोश ना कर दे अपने हैंगओवर में, अपने खुमारी में, कि फिर हम नए सबक लेना भूल जाएं, जब उसके बाद जिसकी बारी आती है, यानी दुख की, गम की। हमें गम के दौरान, दुखों के दौरान, कष्ट और संकट के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम खुशी के लम्हों को भी सिखा सकते हैं। तो क्यों ना एक तहरीर ऐसी लिखी जाए जो अपने आप में मिसाल बने। हमें किसी से सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम खुद इतने काबिल बन जाएं कि हमने सुख दुख के जो भंवरे थे, उनसे कुछ कुछ बूंदें अपने लिए बारी बारी से निकाल के रखी थी, तो हम किसी को कुछ ना कुछ देकर जा सकें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए प्रेरणा का सबक बने। कोशिश तो ऐसा व्यक्तित्व बनने की जानी चाहिए, और ऐसा कुछ करने की चाहिए कोशिश कि वो आपसे भुलाए ना बने। देखिए, अब ये अंदाज था कार्यक्रम के टाइटल तक पहुंचने का, या फिर ये एक खास संदेश, आप जैसे इसे लेना चाहें। पॉजिटिविटी तो यही है कि हमें इसे सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए, एक सबक, एक लेसन की तरह लेके चलना चाहिए, जो जीवन में कहीं भी, किसी भी मुहाने पर, किसी भी सिरे पर हमारे काम आ सके। तो आप सभी को शुभकामनाएं आने वाले दिन की, इसी दिन की जो अब शुरू हो चुका है, और भुलाए ना बने का ये अंक, जो इस प्रोग्राम का, आज के दिन का पहला हिस्सा, पहला किस्सा बनने जा रहा है। आइए इसका शान शान करते हैं स्वागत, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम मौजूद हैं, आप भी हमें मिलिए 9868107070। इसके अलावा एक नंबर है हमारे पास, जहां आप व्हाट्सएप पर हमेशा की तरह हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। तो आपका तहे दिल स्वागत इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है भुलाए ना बने, मेरे यानी रजत के साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं।

जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद रहने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उछला है प्रातः के 3:06 और ये समय है हमारे अगले प्रोग्राम यानी मिडनाइट मेलोडीज का। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम की बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24

0: जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का
1: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं लिया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और आंधी तथा तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वक्त जो है वो है सुबह के 4:12 और सेकंड्स की रफ्तार भी 17 तक पहुंच गई है और शुरू हो चुका है वक्त के साथ साथ हमारा भी नियमित शो सारेगामा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा जैसा कि हम बताते ही रहते हैं कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप है हमारी, आप उसको डाउनलोड करके देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से हमें सुन सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल सारे गामा में मैं हूं आपके साथ रजत और सब रंग गानों की ये गुलिस्तान लेकर मैं आपके साथ हूं और वक्त जो बहुत तेज़ी से अगले दिन को सुबह की तरफ भेजने में लगा है उसे अगले दिन में दिन के उजाले के साथ साथ कन्वर्ट करने में लगा है, हम भी उसका स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल तो तेज़ बारिश ने दिल्ली NCR को इस वक्त ढका हुआ है और गर्मी का जो सितम था पिछले कुछ दिनों से लगता है कि उसमें कुछ कटौती ज़रूर देखने को मिलेगी और फिर से हम एक लुभावने मौसम का अंदाज देखने को पा सकते हैं। और बधाइयाँ आपको कि मौसम हम सब के लिए खुशियाँ ही लेकर आए, गर्मियाँ भी ज़रूरी हैं, बरसात भी ज़रूरी है, सर्दी भी ज़रूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे लिए गम और खुशी कहीं ना कहीं दोनों ही ज़रूरी हैं। अभी बरसात तो बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है लेकिन गर्मी का ही है क्योंकि मौसम है और हर मौसम की अपनी उपयोगिता होती है, अपनी ज़रूरत होती है। इसीलिए जीवन के साथ जुड़े हमारे जो मौसम हैं, चाहे वो हमारे स्वभाव के साथ जुड़े हों या वो हमारे आसपास की दैनिक रूपरेखाओं से जुड़े हों, हमें उनका लुत्फ उठाना चाहिए और कुछ ना कुछ जीवन से समय से सीखना ही चाहिए। आपके साथ सारे गामों में मैं रजत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सभी का स्वागत।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 से 2 तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उधर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के जुनून का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया। नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर आपत्ति जताई। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।